लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म हरियाली और रास्ता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, पैसा हाथ की मैल है, पर फिर भी लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जरूरत के अनुसार पैसा जरूर कमाइए, पर उसके लिए पागल मत होइए। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म लावारिस से ये गीत।

नर्क की फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को आज्ञा दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। सुबह के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण।

10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स का। 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, इस कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10 पर।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उन्नत किसान। मनभावन कार्यक्रम का समय रहेगा 3:10।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि

0: मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Navindra Chandra Ramgulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius enhanced strategic partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. India categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. A sessions court in Bhiwandi has remanded the 3 accused arrested in Maharashtra teacher eligibility test paper leak case to police custody till the 6th of July. Investigators suspect the involvement of an interstate examination racket. Bhiwandi police told the court that the accused had allegedly travelled from Delhi to Bhiwandi to sell the leaked question paper for 1 crore 50 lakh rupees. Investigators had sought 10

सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। इस प्रकार आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर को इस बात की बेहतर समझ है कि हम में से प्रत्येक के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित। इसलिए हमें बिना किसी नाराजगी के या कोई सवाल उठाए बिना भगवान के फैसलों को स्वीकार करना चाहिए। स्वागत आप सभी का भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद ने कहा है कि अनेक व्यक्ति अपने भूलों की तो अनदेखी करते रहते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को बड़ी कठोरता से परखते हैं। हमें इस दृष्टिकोण को पलटकर दूसरों की कमियों को अनदेखा करके अपने त्रुटियों की कठोरतापूर्वक जांच करनी चाहिए।

6:27 अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
2: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात

मैं नहीं दूंगा तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का हल, फिर भी सुनूंगा तुम्हारे जज्बात और साथ बैठ निकालेंगे हल। मैं नहीं बदल सकता तुम्हारे अतीत के पल, पर अभी हूँ तुम्हारे साथ इस पल। मैं नहीं रोक सकता तुम्हारे कदमों को डगमगाने से, सिर्फ दे सकता हूँ अपना हाथ संभलने के लिए। साथ ही तो चाहिए होता है। गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। 7:11 और 46 सेकेंड। प्रोग्राम का पहला गीत सुनते हैं हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में।

मौसम के बारे में जान लेते हैं तो आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सूर्योदय हुआ 5:26 पर और सूर्यास्त का समय है 7:22।

7:23 FM गोल्ड पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे दें। 8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी। 10:30 पर कार्यक्रम होगा दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर घूमने चलेंगे गोवा महाराष्ट्र प्रोग्राम तस्वीर में। 1:10 पर आप सुनेंगे कलाकार बेमिसाल और 3:10 पर रिक्वेस्ट शो सुनेंगे आप और कार्यक्रम का नाम होगा मन भावन। फिलहाल सुनते हैं आया सावन झूम के फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

0: समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर अनुभव आपको कुछ नया और बेहतर सिखाता है।
1: धीरे चलो, धीरे चलो।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लिसनर्स, जस्ट एन आइडिया दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स। यू माइट बी बिजी विद एवरीडे चोर्स एंड लाइफ मे गेट हार्ड समटाइम्स, यू मे फील डिसहार्टन्ड, बट ऑलवेज रिमेंबर द सन विल ऑलवेज शाइन ब्राइट अपॉन अस नो मैटर वॉट, राइट? सो विद दैट लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम आज सवेरे। वी हैव लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स। टूडे इट्स 29th ऑफ जून 2026। वील एक्सप्लोर टूडेज हिस्ट्री इन ग्रेट डिटेल and we'll also pay our tributes in the ending segment of the program, so stay tuned with us till the very end. Let's start with the headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
3: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तर्कश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: In Gujarat, the 4th Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the 2-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. We have a report from our correspondent.
4: The 2-day summit will host over 30 seminars with 151 experts and delegates from partner countries including Japan, Singapore, UAE, Ukraine and Rwanda. Focused on central Gujarat's economic growth, the event will focus on future-ready sectors like semiconductors, logistics, green hydrogen, quantum technology, AI in agriculture, aerospace and defense. A grand exhibition with over 150 stalls showcasing regional MSMEs, advanced tech startups and major enterprises like Amul and GFS will be one of the main highlights of the event. Aparna Khut, Akashwani News, Vadodara.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे का जीवन विकास

0: पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
1: In our bilingual live phone-in program, Public Speak, at 9:30 p.m. tonight, we will bring an insightful discussion on growing small businesses and opportunities for entrepreneurs with Dr. Rajneesh, Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME, Government of India. During the program, listeners can ask questions on the subject. So to participate, listen intently. Simply dial the telephone numbers 011-233-10481. Alternatively, you can dial 23717117 9:30 p.m. onwards tonight.
0: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जल डमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच कोई भी गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ये FIH हॉकी प्रो लीग में हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
1: राइट, फर्स्ट लेट्स बिगिन विद चेन्नई। द डेथ टोल इन द अमोनिया गैस लीक राइजेस टू 16 टुडे। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट संडे एट अ सी फूड प्रोसेसिंग कंपनी एट तिरुवल्लूर नियर चेन्नई। द लेटेस्ट वॉज अ गेस्ट वर्कर कविता जुआंगा फ्रॉम ओडिशा। द गैस लीक आफ्टर 83 वर्कर्स सो फार 41 हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल्स व्हाइल 26 रिमेन अंडर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल ऑब्जर्वेशन। Among them, one patient is on ventilator support, 9 are on oxygen support through nasal support, and 16 are in stable condition, and of the 26 patients, 25 are women. Another update from Chennai.
0: Ji.
1: The Tamil Nadu police arrested a smuggler in narcotics, gold jewellery, vehicles and other incriminating materials. They were seized. 3 people were arrested on 28th of June for transporting narcotics on 20th June. Police seized 26.35 grams of methamphetamine, 2 LSD stamps, 5.59 grams of MDMA tablets, 15 ATM cards, 3 mobiles and the car used in the offence.
0: अब दिल्ली की खबर।
1: राइट,
0: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
1: वेल, वी विल नाउ हेड टू बेंगलुरु मनोज।
0: जी,
1: फर्स्ट अपडेट। Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has declared crackdown on outlets selling tobacco laced with banned intoxicating substances. He was addressing the audience at the Nasha Mukt Bharat Abhiyan launched as part of 31st Foundation Day of Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bengaluru yesterday. He noted that alarming reports are received by him that certain gutka and pan masala products sold in the state are mixed with drug-like substances. He asserted that his government will not hesitate to slap a blanket ban on the sale of all types of gutka, pan masalas and chewing tobacco across the state.

0: if narcotics are mixed with them. He opined that a drug-free Bharat is impossible without impenetrable borders, he opined that, from where he alleged the drugs are smuggled in. He cautioned students not to fall prey to the drugs as it may jeopardize their dreams of becoming doctors. He called upon them to shun peer pressure and learn to say no to drugs. He advised that for momentary pleasure, one can destroy their future. All right. Another update from Bengaluru.
1: GG.
0: In the DACSS Maharaja Trophy T20 tournament being held in Hubballi, coastal Bengaluru registered an emphatic 8-wicket victory over Shivamoga Yodhas yesterday. And due to rain, the match was reduced to 17 overs a side. It was T20, you see. Batting first, Shivamoga Yodhas managed only 113 runs for the loss of 8 in their allotted 17 overs. Coastal Bengaluru reached the target with comfort in just 12.4 overs, losing just 2 wickets. And this win helped Bengaluru take the second position in the points table below Bengaluru Blasters, who continue to dominate at the pitch.
1: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पालघर जिले के तारापुर में आदिवासी समुदायों में वन अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आपली जमीन आपल्या हक नामक कॉमिक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि कॉमिक का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने परिवारों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार सुरक्षित करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और कानूनी रिकॉर्ड को अद्यतन करके आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने उचित अधिकारों तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री गणेश नाइक और नितेश राणे, सांसद डॉक्टर हेमंत सवारा, विधायक राजेंद्र गावित और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र की एक और खबर। महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अनिवासी भारतीय मामलों और जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गावड़े ने कल कहा कि महाराष्ट्र में दंत चिकित्सा सेवाओं, दंत पर्यटन अनुसंधान तथा विकास और दंत उपकरण निर्माण के लिए वैश्विक निवेश केंद्र बनने की अपार क्षमता है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ओरल स्वास्थ्य देखभाल पर एक विशेष सत्र और गोलमेज सम्मेलन में श्री गावड़े ने कहा कि राज्य सरकार ओरल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करते हुए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र को ओरल स्वास्थ्य देखभाल और दंत पर्यटन के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा तथा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। राज्य सरकार 1 जुलाई को नेताजी इंडोर स्टेडियम में अन्नपूर्णा योजना के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 महिला लाभार्थी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगी। उसी दिन अन्नपूर्णा योजना के तहत धनराशि राज्य भर में 1,05,00,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। कुल लाभार्थियों में से 12,000 लाभार्थी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कुछ लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना के चेक सौंपेंगे। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना

0: रहा है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: सो मनोज, आई विल बी बिगिनिंग विद चेन्नई। सो चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्री सेल्सियस वाइल द मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius in Hyderabad. So this was all about the weather.
0: जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 29 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
1: Well, yes. Today it's 29th of June. We are taking you way back in time. In the year 1613 first, London's famous Globe Theatre, associated with William Shakespeare, was destroyed by fire during a performance of Henry VIII.
0: 1855 में आज ही के दिन ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक द डेली टेलीग्राफ का लंदन से पहली बार प्रकाशन हुआ।
1: In 1880, France annexed Tahiti, bringing the Pacific island under French colonial rule. In 1956, Federal Aid Highway Act of 1956 was signed by Dwight D. Eisenhower, launching the U.S. Interstate Highway System.
0: 1974 में आज ही के दिन इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की राष्ट्रपति का पदभार संभालकर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2005 में आज ही के दिन भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ।
1: In the year 2007, launch of the first iPhone took place in the United States, revolutionizing the smartphone industry.
0: 2007 में आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप श्रृंखला के दूसरे मैच के दौरान 15,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। और 2014 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती।
1: In 2020, the government of India banned 59 Chinese mobile apps. This includes TikTok, citing national security concerns.
0: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है माइकल मधुसूदन दत्त की। उनका जन्म 25 जनवरी 1824 को जसोर अविभाजित भारत में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और नाटककार थे। उनका हिंदू नाम मधुसूदन दत्त था, किंतु ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और एक ईसाई युवती से विवाह के बाद उनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त हो गया। माइकल मधुसूदन दत्त बंगाल में अपनी पीढ़ी के उन युवकों के प्रतिनिधि थे जो तत्कालीन हिंदू समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से क्षुब्ध थे। वे अतिशय भावुक व्यक्ति थे। ये भावुकता उनकी आरंभ की अंग्रेजी रचनाओं तथा बाद की बांग्ला रचनाओं में भी व्याप्त हुई। आपकी मुख्य रचनाएं शर्मिष्ठा, पद्मावती, कृष्ण कुमारी, तिलोत्तमा, मेघनाथ, वध काव्य, वज्रांगना, वीरांगना आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा नाटक मेघनाथ वध काव्य का के मंचन का कुछ अंश।
2: অতুলো জগতে দোহে বামাকুলোত্তমা প্রমিলা পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলি শয়ন মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে গাইল অলি পরিমল আসে গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চসারে বাজেন রাক্ষস বাদ্য
1: Well, right, Michael Madhusudan Dutt, the rebel who wrote poetry like thunder and lived life like a storm. Well, Bengal's first true literary rock star, the man who broke rules, broke traditions and rebuilt Bengali literature from the ashes. From sonnets to epics, from heartbreak to heroism, he turned every line into history.
0: Ji. आज पुण्यतिथि है दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की। उनका जन्म 31 जुलाई 1907 को गोवा में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गणित के अतिरिक्त भारत के इतिहास

0: इतिहास और संस्कृति में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा है। दामोदर धर्मानंद जी ने 16 वर्षों तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग आशुतोष मुखर्जी एंड वेल वी आर पेइंग हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू हिम, हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हायर एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग एंड द एडवांसमेंट ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप कंटिन्यूज टू इंस्पायर जेनरेशंस। हिज लेगेसी रिमेन्स डीपली कनेक्टेड विद द स्पिरिट ऑफ एकेडमिक एक्सलेंस एंड कल्चरल रिनेसांस इन बंगाल एंड बियॉन्ड। आई वाज टेलिंग यू अबाउट सर आशुतोष मुखर्जी।
0: आज पुण्यतिथि है केजी सुब्रमण्यम की। उनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल में हुआ था। वे भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल रहे थे। वर्ष 2012 में केजी सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण तथा 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग singer and actress Rosemary Clooney. She came to prominence in the early 1950s with the song Come On My House, which was followed by other pop numbers as well. We are listening to her song Sway. Make me

0: I can hear the sound of violins long before.
1: आज पुण्यतिथि है मेहता लज्जा राम शर्मा की। उनका जन्म 1863 को हुआ था। वे हिंदी भाषा के पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 13 उपन्यास हैं। पाठकों की दृष्टि में वे एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लज्जा राम मेहता ने हिंदू को न केवल लोकप्रिय बनाया, बल्कि उसमें मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण भी किया।
2: वेल टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पायनियरिंग स्टैटिस्टिशियन, साइंटिस्ट एंड प्लानर हु मेड अ लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। वेल, ही फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इंट्रोड्यूस्ड द महालनोबिस डिस्टेंस। दिस इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। It is observed to create awareness and mark the birth anniversary of Prashant Chandra Mahalanobis, one of the country's greatest statisticians and widely regarded as the father of Indian statistics. He also played a key role in India's economic planning after independence. And well, we are also remembering his vision, his dedication and remarkable contributions. His legacy continues to inspire statisticians, researchers and students also, Manoj. And he is widely remembered as the father of Indian statistics, I told you. And this day, National Statistics Day, it is observed to create awareness about the importance of statistics in policy making, in governance, economic planning and national development as well. So in today's data-driven world, statistics helps governments make informed decisions and monitor development, improve public services as well, and address social and economic challenges effectively. And all the credit goes to this pioneer, Prashant Chandra Mahalanobis.
1: Ji, आज जन्मदिन है कार्तिक राजा का। वे एक भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। वे मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। साथ ही 2001 की जैकी श्रॉफ मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म ग्रहण के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया है। उन्होंने फिल्म पांडियन से एक फिल्म संगीतकार के तौर पर शुरुआत की और वे मुख्य रूप से 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म ग्रहण का एक गीत।
3: कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल

0: आज जयंती है शैल चतुर्वेदी की। उनका जन्म 29 जून 1936 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के एक हिंदी कवि, व्यंग्यकार, हास्य कलाकार, गीतकार और अभिनेता थे। वे 70 और 80 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरीज में चरित्र अभिनेता के तौर पर काम किया। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता और उनके द्वारा लिखा गया भजन।
1: बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पी रही हूँ तो पानी ही दूंगी, दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है, मैं तुम्हारे लूंगी।

आज जयंती है रासीपुरम सुब्रमण्यम अय्यर मनोहर की। उनका जन्म 29 जून 1925 को नमक्कल में हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हीरो, विलेन और कॉमेडी किरदारों जैसी कई तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
5: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
6: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
7: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

0: लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112317107 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय

0: वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें ये एजाज दिया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक दस्ते ने शिरकत की। भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की है, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। एक खसूसी इशारे के तौर पर आईएनएस तरकश और आईएनएस अक्षक को पोर्ट विक्टोरिया पर लंगरअंदाज किया गया है, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस तारीखी मौके पर सेशल्स के आवाम को भारत की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी की दावत पर हफ्ते के रोज सेशल्स पहुंचे थे। वजीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरक तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहर हिंद खित्ते में एक अहम समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जुनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरक अहद का भी इरादा होता है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और मॉरिशस के दरमियान मौजूदा तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत की जानिब से दिए गए खसूसी मुआशी पैकेज के निफाज में हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी मुकदम की पॉलिसी के तहत भारत मॉरिशस की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अहमियत से इत्तेफाक किया और आलमी खित्ते जनूब के तई अपने मुश्तरक अहद से भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सेशल्स का माहौलियाती तहफ्फुज़ और मुस्तकिल तरक्की के मैदान में आला तरीन क़यादत पर गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के हाथों दिया गया है, जिसके तहत मुस्तकिल तरक्की और जनाब मोदी के माहौल के लिए साजगार तसव्वुर का एतराफ किया गया है। जनाब मोदी ने इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद सेशल्स के अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहिक हो गया था और आबनए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। यह ऐलान आबनए हुरमुज के आसपास कई हमलों के बाद किया गया है। अमरीका ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि उसने तिजारती जहाजों पर हमला करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसके बाद उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए। दोनों ही मुल्कों की तरफ से मजीद कशीदगी पैदा हो जाने के तई नए सिरे से खबरदार किया गया है। एक अमरीकी अफसर ने बताया कि अब दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हमले करने से बाज रहेंगे और मुजाकरात के दौरान इन जहाजों की बिला रूकावट आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अदा करेंगी। वो दिफाई अफवाज

0: मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शिमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जदोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दी वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अदा किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनक्किद की गई थी। गुजरात के वडोदरा शहर में आज जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में 4th दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा, जिसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खित्ते में सनअती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज्यादा सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहिरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई एमएसएमईज, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और जीएसएफसी वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन 3 मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्विस हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए टीईटी सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेनदेन के बारे में जानना चाहती है और यह जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में 2 मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। टीईटी इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीम शान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मॉनसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरिजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहां जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहां दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशेबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज तर जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहां पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नशर करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉ रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
0: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

दूसरों की खुशी का ध्यान रखना बताता है कि आप अपने संबंधों को महत्व देते हैं, लेकिन जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, तब तक आप किसी को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए सोचिए आपको खुशी किस बात से मिलती है। म्यूजिकल दिल्ली सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, नमस्कार। 8:46 और 23 सेकंड।

अभी आपने सुना साजन फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में ये सॉन्ग। आठ बजकर 52 मिनट और 30 सेकेंड, आइए अब सुनते हैं दीवाना फिल्म से अगला गीत। प्रोग्राम है म्यूजिकल दिल लगी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: संयुक्त राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने भारत के विजन महासागर, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता के तहत भारत मॉरिशस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। अमरीका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे और बातचीत आगे बढ़ सके। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3238 लोग घायल हुए हैं और 3142 परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बचाव दल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम और माहे में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi attended

गुड मॉर्निंग दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। चलिए आज एक काम करते हैं, जरा आंखें बंद करके सोचिए, हर नई सुबह असल में भगवान का भेजा हुआ खत है। उस खत में बड़े प्यार से लिखा है, मेरे बच्चे तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, कल जो छूट गया आज उसे पूरा करने का, जो सपना टूटा था उसे फिर से बुनने का, जो गलती हुई थी उसे सुधारने का। तो दोस्तों शिकायतें छोड़िए, आज की सुबह को थाम लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हम तो यही कामना करते हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, और ये सफर है म्यूजिकल दिल लगी का। तो आइए शुरू करते हैं म्यूजिकल दिल लगी।

दोस्तों, जीवन जीते तो हम सभी अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, अपने परिवार के प्रति अपना भरपूर प्यार लुटाते हैं, पर हमारे बाद भी हमारा परिवार किसी तकलीफ का सामना ना करे, ये भी हम सब चाहते हैं। और इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी और है जो हमें जरूरी निभानी चाहिए अपने जीते जी। और जब हम इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो फिर हमारा परिवार हमारे बाद भी तकलीफों से दूर रहता है और हमेशा खुशहाल रहता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ का बीमा करें, यानी जीवन बीमा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो इसी वजह से, इसी सोच को लेकर बनाई गई है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही किफायती और बहुत ही जरूरी जीवन बीमा योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब और सामान्य वर्ग के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना। और अगर मैं इस योजना से जुड़ी बातें बताऊं आपको, तो इसमें बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से यदि मृत्यु होती है तो उसके परिवार यानी नॉमिनी को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 436 रुपए हर वर्ष का प्रीमियम देना होता है और इस योजना में 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसे हर साल रिन्यू यानी नवीनीकरण किया जाता है और इसका कवरेज 55 वर्ष की उम्र तक मिलता है। बीमा कवर हर साल 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और प्रीमियम की रकम हर साल मई महीने में सीधे आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाती है, यानी खुद से कट जाती है। और इस योजना में शामिल होना बहुत आसान है। आप अपने बैंक या डाकघर में जाकर जहां आपका बचत खाता है, ये फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसका मतलब है बीमित व्यक्ति के पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी हादसा होने पर या मृत्यु होने पर परिवार को पूरी बीमा राशि प्राप्त होती है। योजना की विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म के लिए आप इंडिया पोस्ट या जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये तो हो गई काम की बात और अब थोड़ी मनोरंजन की बात। तो अब कौन सा गीत सुनाऊं ये सोच रही हूं, लेकिन गीत तो मेरे पास बहुत सारे, एक से एक चुनकर लाई हूं मैं। फिलहाल ये गीत आपके लिए है।

दोस्तों, और अब बात आज के दिन की। आज है 29 जून और आज का दिन एक वजह से खास है क्योंकि इसे इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के तौर पर भी जाना जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। हर साल 29 जून को मनाया जाता है इसे, और इसका उद्देश्य है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी ट्रॉपिक्स की असाधारण विविधता और उपलब्धियों का जश्न मनाना और इन क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और गरीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 29 जून 2014 को स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स के रिपोर्ट जारी करके की गई थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो पृथ्वी की सतह के लगभग 40% हिस्से को कवर करते हैं ये क्षेत्र, और यहां दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता मौजूद है और इन क्षेत्रों में दुनिया की एक बड़ी आबादी रहती है। ये दिन खास तौर से इन देशों के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। तो भाई, आप भी सतत विकास में जुड़ सकते हैं और अपने आसपास को यानी अपनी जलवायु को सही रखने में, अच्छा रखने में मदद कर सकते हैं, वनों की कटाई को रोक सकते हैं और गरीबी को दूर करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो सकते हैं। कैसे करना है ये तो आप जानते ही हैं। कम से कम एक पेड़ तो आप रोज लगा ही सकते हैं, और अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में पौधे तो लगा ही सकते हैं, ताकि आपका पर्यावरण, आपके आसपास का माहौल हरा भरा रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे। वनों की कटाई को अगर आप कहीं होते हुए देखें या फिर कहीं पर पेड़ काटते हुए किसी को देखें तो आप उसे रोक सकते हैं, खुद पेड़ लगाने के लिए हिस्सा बन सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है जो आप दूसरों को दे सकते हैं तो वो यही है कि आप अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा माहौल, आसपास लोगों को जागरूकता दें, और फिर देखिएगा कितना आसान हो जाएगा ना जीवन जीना हम सभी के लिए। फिलहाल ये गीत आपके लिए मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में।

0: जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, कितना खूबसूरत संदेश देता है नई गीत। तो हम भी चलते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लेना भी कहीं ना कहीं हमारी रफ्तार को और ज्यादा तेज कर देता है, हमारी थकान को मिटा देता है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
0: वेलकम बैक, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। भाई ब्रेक हमारी रफ्तार बढ़ा देते हैं, हमारी थकान उतार देते हैं और हमें फिर से तरोताजा कर देते हैं। और हर मुसीबत में या हर मुश्किल में या जब भी आपको लगे कि आप जीवन में थक गए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। कुछ कदम और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत खुद ब खुद मिल जाएगी। वेल 9:39 और 7 सेकंड हो चुके हैं, तो फिलहाल इंतजार है आपको एक गीत का। ये रहा

दोस्तों कहते हैं जहाँ प्यार है वहाँ आधी टेंशन तो वैसे ही दूर रहती है। परिवार में जब एकता होती है तो उस परिवार की मजबूती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है रिश्तों से, अपनेपन से। तो ये प्यार बना रहे इसके लिए हर दिन रिश्तों को प्यार से

0: सोचना पड़ता है। थोड़े थोड़े एफर्ट्स हमेशा करने पड़ते हैं और परिवार में प्यार को जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत तो योगदान देना ही पड़ता है। आपको क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। साथ बैठकर खाना खाइए, टीवी बंद, फोन साइलेंट, दिन में एक बार पूरे परिवार के साथ खाना जरूरी है। ये सबसे बड़ी थेरेपी है। बच्चों से लेकर दादा दादी तक सबका हाल पता चल जाता है और जब आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, तो अपनेपन का जो माहौल बनता है उसके क्या कहने। एक दूसरे की तारीफ खुलकर कीजिए। माँ के हाथ के पराठे हो या पापा की मेहनत या बच्चों का छोटा सा ड्राइंग ही क्यों ना हो, शाबाश बोलने में कंजूसी मत करिए। तारीफ घर का ऑक्सीजन होती है और जब आप छोटी छोटी तारीफें करते हैं तो घर में जिंदगी दौड़ती रहती है। गुस्सा आए तो चुप हो जाइए, दूर मत होइए। लड़ाई में हर जगह ऐसा होता है ना कि हम जब भी लड़ते हैं तो नाराज होकर बैठ जाते हैं। लड़ाई हर घर में होती है पर नाराज होकर हफ्तों बाद बंद मत कीजिए। एक घंटे बाद चाय का कप आगे बढ़ा दीजिए, आधी सुलह तो वहीं हो जाती है। बुजुर्गों को वक्त दीजिए, दादी की पुरानी कहानी सुन लीजिए, बेटे का स्कूल का किस्सा सुन लीजिए। मोबाइल से ज्यादा कीमती है परिवार का टाइम। मेरा नहीं हमारा बोलिए, मेरा कमरा, मेरी गाड़ी, इन सब चीजों से दूर रहिए। हमारा घर, हमारी फैमिली, ये हम वाला जो एहसास है ना वो परिवार को जोड़े रखता है। और याद रखिए दोस्तों, परिवार ऑटो पायलट पर नहीं चलते, रोज थोड़ा प्यार, थोड़ी समझ, थोड़ा झुकना पड़ता है। घर में प्यार होगा तो बाहर की टेंशन अपने आप आधी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी, है ना।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

दोस्त एक बात पूछूं, आखिरी बार ठहाका लगाकर आपने कब हंसा था? बहुत सोचने के बाद याद आता होगा ना कि कब जोर से हंसे थे। अक्सर हम आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है उसमें हंसना भी भूल जाते हैं, ठहाका लगाना तो बहुत दूर की बात है। क्या आप जानते हैं कि 10 मिनट ठहाका लगाना 30 मिनट जिम करने के बराबर है? और ये मजाक नहीं है, साइंस है। जब आप खुलकर हंसते हैं तो पेट की 15 से ज्यादा मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, खून का दौरा बढ़ता है और एक बार हंसने से 10 से 15 कैलोरीज बर्न होती हैं। 10 मिनट हंस लिए तो समझ लीजिए 100 कैलोरीज आपने बर्न कर ली। हंसी दिमाग में एंडोर्फिन हार्मोन छोड़ती है और इसे खुशी का हार्मोन कहते हैं। तनाव, गुस्सा, दर्द सब कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बीपी कंट्रोल होता है। तो महंगी जिम की मेंबरशिप से पहले घर में हंसी का सेशन शुरू करिए, कॉमेडी देखिए, दोस्तों से गप्पे मारिए, फ्री की एक्सरसाइज है ये, आज से ही शुरू कीजिए। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। क्या जाता है, कुछ न कुछ मिलेगा ही।

0: आएगा आएगा आएगा।
1: ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। और क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया।
0: आएगा आएगा आएगा।

ये क्या हो गया।

तो दोस्तों म्यूजिकल दिल्लगी में तो अभी इतना ही, लेकिन इसके बाद आप सुनेंगे इस गीत के बाद हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण और वर्ल्ड न्यूज, और 10:30 बजे फिर से मिलूंगी लेकर दिल का मेल बॉक्स। आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है फिलहाल के लिए आपसे विदा। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

आईया करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन

0: चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशेल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
3: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। श्री गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं।
4: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े

0: उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए।
3: इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अभी भी दिन रात खोज और बचाव कार्य में लगे हैं। अधिकारी राहत कार्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार को देश के मध्य क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में आए दो विनाशकारी भूकंप के कारण पहले से ही डरी आबादी और अधिक परेशान हो गई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस मैच में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मंदुड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयरलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:31 और 9 सेकंड्स हो चुके हैं और ये वक्त है आपकी फरमाइशों का, यानी आपके अपने दिल के मेल बॉक्स का। तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं। और क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ईमेल्स होते हैं कि मैं सबकी फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ लकी श्रोता आज जरूर अपने

ये फरमाइश सुन पाएंगे। वेल, आपको कहां पर मैसेज करना है ये भी बता दूं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868867533 पर। फिर से बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com या व्हाट्सएप 9868867533 यानी 9868867533 पर। तो बस जल्दी से लिख भेजिए अपनी पसंद, अपनी फरमाइश, अपने फिल्म के नाम के साथ गीत के बोल लिखिएगा और अपना नाम, शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और फिर मुझे रवाना कर दीजिए इस दोनों एड्रेसेस पर। वेल, अब सबसे पहले तो मैं कुछ मेल्स, कुछ मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। किस किस ने हमें लिखा है, चलिए सुनते हैं जरा नाम कौन कौन है हमारे साथ जुड़े हुए। महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हैं और शकुंतला यादव, उग्रसेन यादव, गरिमा नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, मजनू कटीला से और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक और संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, माल्यान सरधना मेरठ से और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, पद्मा टोकीस, नेपानगर मध्य प्रदेश से, शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान अहमद और सुफियान नवाब ने हमें लिखा है बली मारान से और सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, आदिब हमें लिख रहे हैं, अदीब हमें लिख रहे हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, कितिका खुरवाल और भानु प्रकाश, नबी हसन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम यशरफ अब्बासी हमें मारहरा दरवाजा एटा से लिख रहे हैं, सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी और इशरत परवीन का हमें मैसेज मिला और हमें लिखा है संजिता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू ने खंडवा एमपी से, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजानिया ने सतवीर सिंह बिजानिया के साथ सिरसा हरियाणा से और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, अबान और पूरे परिवार ने मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से और ये मैसेज हमें किसने भेजा है, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या कुमारी ने, धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा भोपालगढ़ राजस्थान से हमें लिख रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। हाँ, एक चीज आपसे कहनी थी अनीता जी कि जब आप ध्यान से अगर कार्यक्रम को सुनेगी तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या कहा और आपने क्या सुना। हमने पिछली बार भी कहा था कि भाई व्हाट्सएप नहीं चल रहा था कुछ तकनीकी वजहों से और आप नाराज थी कि हमने आपका मैसेज नहीं पढ़ा। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना था उस दिन क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। वेल, आज दोनों चीजें चल रही हैं तो आप मैसेज कर सकती हैं और आपका मैसेज शामिल भी हो गया है। और ये जो नाराजगी सबकी रहती है ना कि मेरा गीत नहीं चलाया, तो आप सोच सकते हैं इतने सारे मैसेजेस होते हैं और टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो हम उसमें कितने गाने चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों की पसंद। तो इस बात को निराश मत होइए सोचकर कि आज आपका गाना नहीं बजा, किसी रोज जरूर आपको भी मौका मिलेगा। तो बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए। और हमारे पास दिग्दर्शन भाई मास्टर जीवीएम जैन का मलयान सरधना मेरठ से, फिर से वही सारे नाम लिखकर आपने हमें भेजा है और इसके साथ हॉली चौक उत्तम नगर से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन दीपांशु का मैसेज हमें मिला है। साथ में हमें मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज, अफरोज शेख का हमें मैसेज मिला है नेमुआ सुपौल बिहार से और गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश कुमार, प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षता का मैसेज, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह का ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज मिला, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं, ओम प्रकाश टेक चंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं और साथ में प्रवीण हागोणे, योगिता
कुमारी प्रियाली और पार्थ अगुणे।

0: और पूरे परिवार ने हमें अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है और भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने हमें लिखा। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रितेश पूरे संघई परिवार के साथ जिनेन्द्र हमें लिख रहे हैं परभणी से। और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल ने कदमा जमशेदपुर से हमें लिखा है। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का हमें मैसेज मिला। बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का हमें मैसेज मिला है। नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ ही ये मैसेज हमें सलार पहलगाम कश्मीर से मिला है, पीरजादा मिराजुद्दीन का। और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान का हमें मैसेज मिला। पंकज मोहड़ अमरावती से हमें लिख रहे हैं। अर्चना वर्मा, मास्टर अशोक वर्मा, जिला खरगोन सिनावत मध्य प्रदेश से, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र और शेख मूसा भाईजान के साथ, भाई राजकुमार बुड़ाना के साथ, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें लिख रहे हैं। शमसुल कमर राही, शाहीना, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान हमें गंजरुनवाड़ा से लिख रहे हैं। और राजकुमारी, अतर सिंह, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, आद्विक, समयपुर, दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं। और बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं, जरूर शामिल करने की कोशिश रहेगी। लेकिन फिलहाल जिस गीत को मैं शामिल कर रही हूं, इसकी फरमाइश हमें भेजी है गंगा सिंह रावत ने, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म सच्चा झूठा से रफी साहब। और
1: यूं ही तुम मुझसे बात,
0: ये आपके

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और आपकी पसंदों के गीत हमारे पास चल रहे हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन ने हमें मैसेज किया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशुरिधान और आपका मैसेज हमें मिला है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने हमें लिखा है मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज का मैसेज हमें मिला और हमें लिखा कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा ने, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा का हमें दतरेंगी भाटापारा से मैसेज मिला है, छत्तीसगढ़ से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता का मैसेज, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें लिख रहे हैं और महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें मैसेज मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। हमें लिखा एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट ने और सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से, कमलेश बबलेश पवार, रैनी पवार, मनीष पवार का हमें गांधी चौक बाड़मेर से, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज और डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी का मैसेज, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का मैसेज, अनवर साबरी, शब्बो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर और जरीफ का मैसेज, दाऊद सराय सहारनपुर से हमें मिला है और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने हमें जनकपुरी दिल्ली से लिखा है और साथ ही मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, अहद और मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत सादिया का हमें मैसेज मिला है, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से। साथ ही हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं। महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें लिखा है और हमारे पास बहुत सारे रिपीट मैसेजेस पहुंच रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का मैसेज बागपत यूपी से, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े और आश

0: मोहरकर का मैसेज। और हमारे पास वड़िंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का मैसेज, राम नरेश चेक का मैसेज हमें मिला है, करण चेक के साथ, रेखा चेक, अल्पेश यादव, सृष्टि यादव और संगम विहार हनुमान मंदिर से हमें लिख रहे हैं। साथ ही ये मैसेज शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, भागवत वर्मा का ततरेंगी से हमें लिखा है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का मैसेज। और गन्नौर से हमें लिखा है आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली ने। साथ में ये मैसेज हमारे पास सिद्धार्थ भाई जी का मैसेज पहुंचा है, कहां से नाम नहीं लिखा है जगह का, चले कोई बात नहीं। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का, डाबकी रोड अकोला से। साथ में ये बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक का मैसेज शज्जर हरियाणा से, और सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वयाल, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, सानवी, हर्षदा का मैसेज हमें कालेगांव जाफराबाद से मिला है। और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण का मैसेज संस्कृति पौरुष के साथ, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से। साथ में ये मैसेज हमारे पास शेरवानी स्कूल गंजुड़वाला से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का, और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ का हमारे पास फिर से ये मैसेज हो गया। ये लीजिए। तो भाई अभी इससे पहले कि मैं कुछ नए मैसेजेस को ढूंढूं, विजय प्रियंका त्वेषा पल्लवी एकता का मैसेज हमें मिला है। और इसके साथ साथ संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मैसेज। तो चलिए अब जल्दी से भगवती सिंह का मैसेज भी आ गया, पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से। और हमारे पास इतने सारे मैसेजेस हैं, लेकिन रिपीट मैसेज जब आप करते हैं तो मुझे ढूंढना पड़ता है। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन का मैसेज मुल्लापुर दाखा से, और श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ से हमें लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास सुरेश नारंग का आशा नारंग के साथ सहारनपुर से मैसेज पहुंचा। तो चलिए बाकी के मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने। ये रहा गोपी फिल्म से आप सबकी पसंद का गीत।
1: गुड मॉर्निंग, छोड़, गुड मॉर्निंग, छोड़ हाथ, गुड मॉर्निंग, वन टू थ्री फोर, अरे वन टू थ्री फोर, मैं कहती हूँ वन टू थ्री फोर, तुमके थप्पड़ रखे,
2: डाबरा का डाबरा,
3: डाबरा का डाबरा,
2: डाबरा का डाबरा,
1: अरे इधर डाबरा के
2: डाबरा,
1: अब बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला,
4: कॉफी, गेस व्हाट, वाटर सैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग फटा।

अब वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लेती हूँ। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है किसने राम शरण विश्वकर्मा ने। और हमारे पास मैसेज पहुंचा है गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल का। और ये मैसेज हमें लिखा है बहुत सारी तारीफ करके बबलेश पवार बाड़मेर से हमें लिख रहे हैं। साथ ही राजेंद्र जटोलिया, उषा, कृष्णा, पूजा और कोमल का हमें मैसेज मिला है दिल्ली नांगलोई से। और संतोष नामदेव का हमें मैसेज पहुंचा है सार्थक नामदेव के साथ समर्थ और शौर्य के साथ, कहां से, बघेरा दुर्ग से। और सुशील पठानिया, चंदा और अंजलि सचिन का मैसेज हमें नादौन हमीरपुर एचपी हिमाचल प्रदेश से हमें मिला है। अमित विश्वकर्मा देहरादून से हमें लिख रहे हैं। और साथ में जगदीश कुमार का हमें मैसेज मिला है राहुल और ऋतिका का नांगलोई से हमें लिखा है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल विलिस का मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का रिंगनी छत्तीसगढ़ से। राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार गांव फ्रांसी हिसार से हमें लिख रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया का दिशानी और निमित आहुजा के साथ मैसेज। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल और अविराज का मैसेज जिला फिरोजपुर पंजाब से। और ये मैसेज विठल करमदिया, शोभा करमदिया, थानला जिला झाबुआ एमपी से हमें लिख रहे हैं। दीपू, विक्की, पूना राम, यश, आराध्या, धूमधारा परिवार लिख रहे हैं रघुबीर नगर से। और बहुत सारे मैसेजेस हमें लगातार मिलते रहे इस कार्यक्रम में। पंजाब से हमें लिखा है किसने, राजेंद्र कुमार सचदेवा ने। और कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हमें लिख रहे हैं। साथ में हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त अब बहुत कम बचा है, तो सोच रही हूँ चलते चलते एक गीत आप तक पहुंचा दूं। और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है, हमें लिखा है पीरजादा मिराजुद्दीन ने कश्मीर से, सलार पहलगाम से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

तो भाई जिनके मैसेजेस रह गए वक्त की कमी की वजह से उनसे माफी, लेकिन फिलहाल इस सफर से लेनी होगी मुझे इजाजत। इसके बाद सुनेंगे आप हिंदी अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के उस पार मैं फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर, चलेंगे एक खूबसूरत जगह की सैर पर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है।

करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3238 लोग घायल हुए हैं और 3142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो भाई हमारे घुमक्कड़ दोस्त तैयार है ना तस्वीर में हमारे साथ चलने के लिए इस सफर पे। पता है आपको, जो लोग घूमते फिरते रहते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे आपको हमेशा स्माइल नजर आएगी। जैसे मैं मुझे तो घूमना बहुत पसंद है और जब भी मौका मिले मैं निकल जाती हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की सैर पर। आपसे भी यही कहूंगी कि अगर मौका नहीं मिल रहा है तो मौका निकालिए, ढूंढिए वो वक्त जब आप अपने लिए जी सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। जिंदगी में देखिए काम कभी नहीं रुकते और काम तो

हमेशा आपके पास लाइन लगाकर खड़े ही रहते हैं, कभी कोई काम तो कभी कोई काम। छोड़िए ना, थोड़ी देर के लिए वक्त निकालिए, कहीं बाहर जाइए, रिफ्रेश हो जाएंगे आप, परिवार के साथ वक्त मिलेगा आपको, दोस्तों के साथ वक्त मिलेगा आपको, और जिंदगी जीने का असली मजा तो तभी आता है ना जब हम फुर्सत के पलों में अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, है ना। तो आज आपको मैं कहाँ ले चल रही हूँ, वही जहाँ कई बार घूम के आई हूँ मैं भी। तो आज हम ले चल रहे हैं आपको गोवा। गोवा भारत का बहुत ही खूबसूरत शहर है और बीचेस के लिए बहुत फेमस है। अगर आप पानी की लहरों की सरसराहट को महसूस करना चाहते हैं तो आइए चलिए हमारे साथ गोवा के पर्यटन पर। लोग अक्सर अपनी छुट्टियां यहाँ बिताते हैं, यहाँ का माहौल बहुत ही अपना सा लगता है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ आपको हर उम्र के लोग दिखेंगे। गोवा राज्य को 1987 में स्थापित किया गया था। गोवा की राजधानी है पणजी, और अगर आप बात करें गोवा राज्य के सबसे बड़े शहर की तो ये है वास्को डी गामा। अगर आप गोवा जाकर एक बेहतरीन याद संजोना चाहते हैं तो अक्टूबर से जनवरी का समय जो है वो सबसे उचित है, यहां जाने के लिए बेस्ट है। इस दौरान देश विदेशों के जो पर्यटक हैं वो यहां पर भारी तादाद में उमड़ते हैं और यहां का नए साल का उत्सव विश्व भर में मशहूर है। इस समय अलग अलग जगहों से लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां लेकर आते हैं। इस वक्त आपको यहां कुछ चर्चित हस्तियां भी उत्सव मनाते नजर आ जाएंगी। मौसम भी सुहाना, बीचों की लहरें आपको मोहित कर देंगी, लेकिन गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर किसी स्पेसिफिक टाइम में जाने की जरूरत नहीं भी है। आप जब भी चले जाएं, गोवा हमेशा आपका वेलकम करता है और यहां की खूबसूरती, यहां के बीचेस, यहां का वातावरण आपका दिल जीत लेता है। साल के किसी भी महीने आप यहां पहुंच जाइए, गोवा आपको निराश नहीं करेगा। वैसे बारिशों के मौसम में भी अगर आप गोवा जाएं ना तो बारिश के टाइम पर यहाँ घूमने का एक अलग ही मजा है। अगर आपको बारिश में भीगना पसंद है तो आपको गोवा इस मौसम में भी जरूर जाना चाहिए। गोवा में ठहरने की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, हर बजट के होटल्स आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। और गोवा में घूमने के लिए क्या क्या है, देखने के लिए क्या क्या है, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर का है ये सफर। 11:13 ये हो गए पूरे 14 मिनट, और चलिए गीतों के साथ साथ करते हैं इस सफर में गोवा की सैर।

भाई गीत तो हमने छेड़ दिया, लेकिन अब सफर में आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको गोवा में बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर घुमाने वाली हूँ। हाँ, अब शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप गोवा में। पालोलेम बीच एक जगह है, यहाँ पर जा सकते हैं आप। ये बीच दक्षिण गोवा के काना कोना में स्थित है, जहाँ कतारों से लगे ताड़ के पेड़ और लकड़ी की झोपड़ियाँ बीच की सुंदरता को बरकरार रखने में पूरा सहयोग करती हैं। और ये बीच अपनी शांति और सुकून देने वाली लहरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक और चीज शांत है और वो है डिस्को। यहाँ पे आप सबको निजी हेडफोन दिए जाएंगे, आप इन्हें पहनिए और वहां मौजूद भीड़ के बीच खुद में ही जम के थिरकिए और अपनी नीरस भरी दुनिया को अलविदा कह दीजिए। सचमुच कितना मजेदार होगा ना ये अनुभव, जब आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा गीत पर नृत्य कर सकते हैं। बाघा बीच एक जगह है, यहाँ भी आप जा सकते हैं पैरासीलिंग और बनाना राइड के लिए। इसे जाना जाता है सबसे मशहूर बीच है ये, जो पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। बीच के पास काफी सारी झोपड़ियां हैं और फिशिंग बोट्स हैं, खासतौर से पैरासीलिंग और बनाना राइड्स जैसे पानी के खेल वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आपको यहाँ डॉल्फिन देखने का मौका भी मिल सकता है। लहरें बार बार आपके पैरों को छूकर गुजरेंगी तो आपको लगेगा जैसे वो लहरें अपनी कोई कीमती चीज आपके पास छोड़कर गई है। यानी कि आपको बहुत कुछ इस समुद्र के किनारे पर मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूधसागर वाटरफॉल की, तो दूध जैसे पानी से दिखने वाला ये जो वाटरफॉल है, ये भी अपने आप में खास है। जब आप गोवा जाते हैं, मंडोवी नदी पर स्थित है ये, भारत की चौथी सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है और ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में है। तो आप यहां आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही तेज गति से गिरता हुआ पानी भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि पानी एकदम दूध जैसा सफेद है। तो यहां पर आकर आपको बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलने वाले हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग भी आप यहां कर सकते हैं और ये गोवा पर्यटन में एक खास यादगार जगह आपके लिए हो सकती है। यहां आने का सबसे अच्छा जो समय है वो जून से सितंबर है, तो आपको यहां के नजारे बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे। अगर आप शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आप गोवा के मशहूर चर्च बॉम जीसस बेसिलिका चर्च में जा सकते हैं और ये चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है और ये चर्च अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये बात सच है कि गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है ये, पर अभी भी इसने पर्यटन का जो पर्यटकों का ध्यान है वो केंद्रित करना नहीं छोड़ा है। आज भी यहां पर लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। अगोड़ा किला है जो कि उम्दा तस्वीरों के लिए जाना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और ये गोवा के पर्यटन स्थल में से खास पर्यटन स्थलों में से एक आकर्षण है, जहां लोग लगभग हर मौसम में आना पसंद करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, तो आप यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह आपके लिए सचमुच बेस्ट है। इस वजह से आप चाहें तो सैटरडे नाइट मार्केट है यहां पर, जहां आप जाकर थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित है ये मार्केट, भारतीय और यूरोपियन लोगों में काफी फेमस है, लोकप्रिय है। अगर आप गोवा की यात्रा करने जा रहे हैं तो यहां पर जाना मत भूलिएगा। आप यहां मनचाहे तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर आपको तड़कते भड़कते कपड़ों से लेकर जूते, बैग, लेदर की चीजें, हस्तशिल्प, सजावटी लैंप, बहुत सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। यकीनन गोवा में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, और पार्टी के लिए रेस्टोरेंट्स, और बहुत ज्यादा कतार में खड़े हुए आपको यहां पर रेस्टोरेंट्स, बार्स अलग अलग दिखाई दे जाएंगे, तो आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। गोवा का जो

टूरिज्म है वो इसलिए भी है कि जीती जागती लाइफ जो आप कहीं और नहीं पा सकते वो यहाँ आपको मिलती है, आप में एक अलग एनर्जी भर देती है। बहुत सारी और भी प्लेसेस हैं जहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन इस गीत के बाद बताऊंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
1: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई, दिल्ली हाट जनकपुरी।

वेलकम बैक। 11:27 24 सेकेंड हो चुके हैं और आप हैं आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ घूम रही हैं तस्वीर के इस सफर में गोवा। और गोवा की सैर में मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या है गोवा में देखने के लिए, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं और आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप गोवा जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है मंगेश मंदिर। हाँ, और ये जो मंदिर है, अगर आप ये समझते हैं कि गोवा सिर्फ चर्चेस के लिए है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है जिसका नाम है ये मंगेश मंदिर। आध्यात्मिकता से भरा हुआ ये प्लेस आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। तो अगर आप धार्मिक स्वभाव के नहीं भी हैं तब भी आप यहाँ बिना किसी हिचकिचाहट के आ सकते हैं। यहाँ का ध्यान आकर्षित करने वाली जो चीजें हैं उनमें से यहाँ का 7 मंजिला दियों का टॉवर है जो आपको जरूर देखना चाहिए। एक अलग ही तरह का अनुभव आपको इसे देखकर मिलेगा। यकीनन ये गोवा पर्यटन स्थल आपके गोवा पर्यटन में जरूर शामिल होना चाहिए। तो भक्ति मिलीन अगर आप होना चाहते हैं तो ये जगह मंगेश मंदिर जरूर आपको देखना चाहिए। बहुत ही शानदार है, प्राचीन है और इसकी एक अलग ही मान्यता है। नेवल एविएशन म्यूजियम है जो भारत का एकमात्र नेवल म्यूजियम है, भारत का एकमात्र ऐसा म्यूजियम जहां पर आपको पूरे एशिया में प्रचलित ये म्यूजियम जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जहां पर आप सुरक्षा बलों से लगाव करने लगेंगे। अगर आपको लगाव है ऑलरेडी तो भी आपके लिए बहुत ही खास जगह है। आपका कर्तव्य बनता है कि एक बार आपको यहां पर जरूर जाना चाहिए। आपको यहां 7 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट, रॉकेट, बम, पैराशूट, पायलट की पोशाक, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और ये सब देखकर सचमुच आप गदगद हो जाएंगे क्योंकि भारत की जो नेवल एविएशन की जो खूबसूरती है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो टीटो नाइट क्लब जा सकते हैं। जो पार्टी पसंद करते हैं जो लोग, उनके लिए ये जगह खास है। गोवा यहाँ की नाइट क्लब के लिए जाना जाता है। इस जगह की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पर बहुत से क्लब्स हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। आपको बहुत ही खुलेआम यहाँ पर एक ऐसा वातावरण देखने को मिलेगा जहाँ आप डांस कर सकते हैं और आप दिल खोल कर यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी पसंद करने वाले लोगों के लिए प्लेस बेस्ट है। क्लब में हर तरफ हो रही हलचल जो है वो आपको अलग ही अनुभव देगी। चमचमाती लाइट, साउंड म्यूजिक, मस्ती में झूमते लोग, रेस्टोरेंट्स में खाना पीना, बहुत कुछ है यहाँ पर जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। खासकर यंगस्टर्स यहाँ पर जाते हैं और एक अलग नाइट लाइफ का मजा लेते हैं जो क्लबिंग पसंद करते हैं। इसके अलावा अंजना बीच आप जा सकते हैं। सबसे प्राचीन बीचेस में से एक है ये और ये बीच जो है वो गोवा में काफी प्रसिद्ध है। हिप्पी संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये बीच अरब सागर में ढलते सूरज को देखने के लिए सबसे सटीक जगह है। आप शांति से बैठकर हर चीज महसूस करते हुए इसे जरूर अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगे और आपको देखना भी चाहिए क्योंकि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर मैं आपको कहूं तो आपको ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई होगी। ताजा पानी, रेतीले किनारे और उत्तरी गोवा में ये खूबसूरत जगह है जहां आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। चेराओ द्वीप है जो प्रकृति की गोद में स्थित है। मंडोवी नदी पर स्थित ये द्वीप पंजी के करीब है और संस्कृत में इसका अर्थ है शानदार कीमती पत्थर। ये द्वीप अद्भुत पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के लिए लोकप्रिय है और यहां पर बर्ड सेंचुरी है जिसमें अलग अलग तरह के अनदेखे पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैनग्रोव वन भी है यहाँ पर जो आपको चिड़ियों का संगीत सुनने को मिलेगा जिसके सुनने के लिए आप यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो सचमुच आप इस जगह की याद को कभी भुला नहीं पाएंगे। चपोरा किला है जो सेल्फी प्रेमियों के लिए भी खास है। आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं। अपने इतिहास के लिए लोकप्रिय चपोरा किला गोवा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हाल के वर्षों में बॉलीवुड फिल्म की जो दिल चाहता की अगर मैं बात करूं तो इसकी शूटिंग भी यहां पर हुई थी। और इसके अलावा यहां से सभी दिशाओं में के जो नजारे हैं वो आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको देखने के लिए इस किले से खुला व्यू मिलता है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ऊपर से समुद्र के अद्भुत नजारों का भी एक अलग ही मजा ले सकते हैं।

और इसके अलावा यहां जाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। बहुत आसानी से ये बाय रोड कनेक्टेड है, तो आप यहां पर जा सकते हैं। वागा टोर बीच और अंजना बीच इसके आसपास है, तो ये जगह भी आपको जरूर देखनी चाहिए। चाहे तो आप तेरेखोल किला है, यहां भी जा सकते हैं, और ये भी तेरेखोल नदी पर स्थित है। गोवा के उत्तरी सिरे पर है, अरब सागर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर स्थित है, और ये भी अपने आप में बहुत खास है। रीस बोगोस किला है, इतिहास प्रेमियों के लिए 1515 में पुर्तगाली वायसराय अल्फोंसो डी नोरोन्हा ने इसका निर्माण करवाया था, और आपको ये जगह जो है ये भी आसानी से देखने के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। मराठों के साथ युद्ध कर रहे थे जब पुर्तगाली, तो उसका यहाँ पर इस किले में एक रक्षात्मक दीवार बनाकर एक खास तौर पर इसे कवर किया गया, और अपने आप में ये भी इतिहास को संजोए हुए है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो गोवा में यादगार हैं, देखने लायक हैं, जैसे कि कोरजुएम किला है या फिर काबो दे राम किला है। कई किले हैं जैसे कि जिन्हें आप देख सकते हैं। बहुत सारी चर्चेज हैं, से कैथेड्रल चर्च है, इसे भी देखना चाहिए। सबसे बड़ा एशियाई चर्च है ये, और ये भी काफी पुराना है, पुराने गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये भी अपने आप में एक खास जगह है। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, ये भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घंटी के लिए जानी जाती है, यहां पर आपको देखने के लिए वो भी मिलेगी। और ये जगह जो है वो ईसाइयों का पूजा स्थल है। मदर मैरी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहां पर, जिसे आप देख सकते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी घंटी यहां पर संरक्षित है, तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत से बीचेस हैं यहां पर। गोवा बीच की लिए ही जाना जाता है, तो कलंगुट बीच यहां आप जा सकते हैं, बागा बीच जा सकते हैं, अंजना बीच जा सकते हैं, और वगौटर बीच है जो कि आप देख सकते हैं। चपोरा किला, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये भी बीच के किनारे पर ही है, और बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जैसे कि महालक्ष्मी मंदिर है, ये भी गोवा का एक खास मंदिर है और इसे भी आपको जरूर देखना चाहिए। शांता दुर्गा मंदिर है जो अपने आप में खास है। इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शाहू जी महाराज ने करवाया था 1738 में, तो इसे भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए ये जाना जाता है। माँ पार्वती भी इस मंदिर में विराजित है, तो ये मंदिर भी आपकी इस यात्रा में एक और अनुभव जोड़ देगा। बहुत कुछ है जानने के लिए, बताऊंगी जरूर, लेकिन इस गीत के बाद।

अभी देखने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर हैं, चर्चेज हैं, बीचेस हैं और बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत कुछ है गोवा में घूमने के लिए। आप चाहें तो पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए यहाँ जा सकते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर आप यहाँ घूम सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पहुँचने की, तो भाई पहुँचना कैसे है, गोवा का चुनाव अनेक शहरों से, देशों से है, अच्छी कनेक्टिविटी है, आप चाहें तो गोवा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर यहां पहुंचना चाहें तो आपको क्या करना है, डबोलिम एयरपोर्ट है सबसे नजदीक, ये गोवा की राजधानी पणजी से 29 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पहुंचती हैं। ये एयरपोर्ट यूके और जर्मनी के को भी गोवा से जोड़ता है, तो आपको यहां पर अगर पहुंचना है तो दिल्ली से आप गोवा के लिए सीधे फ्लाइट ले सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, या फिर देश के किसी भी हिस्से से आप यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से पहुंचना चाहें तो मडगांव में स्थित जो जगह है, मडगांव और वास्कोडी गामा गोवा के मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन जो हैं वो अच्छी तरह से अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, भारत के अधिकतर राज्यों से यहां पर आप पहुंच सकते हैं, तो बाय ट्रेन भी आप गोवा आसानी से जा सकते हैं। गोवा का बस से अगर आप सफर करना चाहें तो फिर आपको क्या करना है, यहां का जो मेन बस स्टैंड है वो है कदम्बा, जो पणजी में स्थित है, और यहां से आपको बिना किसी परेशानी के बस की सर्विसेज आसानी से मिल जाती हैं। प्राइवेट टैक्सी भी आप कर सकते हैं आगे की यात्रा के लिए। गोवा में घूमने के लिए आपको अलग अलग टैक्सी स्टैंड्स मिल जाएंगे, अलग अलग जगह से आपको टैक्सी मिल जाएगी, आप बुक करके भी निकल सकते हैं। तो गोवा जो है वो हर तरीके से ईजी एक्सेस में है, इजीली यहां पर घूमने के लिए आपको कन्विंस मिल जाएगी। और चाहे तो आप यहां स्कूटी ले सकते हैं किराए पर, आप उस पर भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। गोवा में स्कूटी से घूमने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि मैं जब गई थी तो मैंने भी स्कूटी पर यहां की यात्रा की थी और सचमुच यहां की ठंडी हवाओं में स्कूटी चलाने का भी अपना ही एक मजा है। अगर मैं बात करूं यहां शॉपिंग की, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कहां आप शॉपिंग कर सकते हैं। गोवा की गिनती भले ही भारत के सबसे छोटे राज्य के रूप में होती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत राज्य है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। खास तौर से साउथ गोवा को इस देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक के रूप में गिना जाता है और यहाँ के खूबसूरत समुद्र तटों से लेकर रेस्टोरेंट्स तक, रिजॉर्ट्स तक, सभी कुछ बहुत ही लुभावना है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे जब ट्रैवलिंग की बात हो तो शॉपिंग के बिना सब कुछ अधूरा लगता है और इस लिहाज से साउथ गोवा आपको कभी निराश नहीं करेगा। साउथ गोवा में खरीदारी के लिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, कंटेम्प्रेरी से ऑफ बीट प्लेसेस अवेलेबल हैं यहां पर, आपको यहां पर बेहद किफायती दामों पर शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो पालोलेम बीच चले जाइए, यहां पर मार्केट है। गोवा में खरीदारी की जगहों की बात करें तो बीचेस के तट पर मौजूद मार्केट में पर्यटक बहुत पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं, काफी पसंद करते हैं यहां पर बीचेस पर लोग शॉपिंग करना। और पालोलेम बीच के तट के बाजार में एक अलग हिप्पी संस्कृति आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां हर शनिवार को एक अलग तरह का बाजार लगता है, जहां पर आप अपनी जरूरत की कई चीजें काफी सस्ते रेट्स पर ले सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा मोल भाव करना चाहते हैं तो आपको चीजें काफी कम दामों पर मिल जाएंगी। कोलवा बीच मार्केट है जहां आप जा सकते हैं। गोवा में अगर आप शॉपिंग कल्चर को बेस्ट तरीके से एक्सपीरियंस करने का सोच रहे हैं और किसी ऐसी जगह की तलाश में है, तो

आपको कोलबा बीच मार्केट को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। यहां से आप अपने करीबियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत कुछ खरीद सकते हैं। हालांकि अगर आप यहां शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कई बार शॉपकीपर्स आपको थोड़ी सी कीमत ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल भाव करना जानते हैं तो आप सही दाम पर चीज खरीद सकते हैं। जगह जगह चमकदार रोशनी से बना ये बाजार भी बहुत ही खूबसूरत है। मडगांव म्यूनिसिपल मार्केट है जहां आप जा सकते हैं, स्ट्रीट शॉपिंग के लिए अच्छी जगह है। और इस मार्केट में आप आर्ट क्राफ्ट से लेकर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तक की चीजें जो हैं वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको काजू, मछली, मसाले, रसोई के सामान, यादगार सुवेनियर्स, मिठाई, कपड़े, जूते, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें काफी अच्छे रेट्स पर, उचित दामों पर मिल जाएंगी। आप चाहे तो गोल्डन हार्ट एम्पोरियम है, अगर आप एक बुक लवर हैं तो यहां आप जा सकते हैं, यहां जरूर विजिट करिएगा। और इस जगह पर जाए बिना आपकी जो यात्रा है वो थोड़ी सी अधूरी है। ये पूरे गोवा में सबसे अच्छी किताबों की जगह है। यहां आपको फिक्शन से लेकर बच्चों की किताबों तक बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा, आप यहां भी जा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई गोवा में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे तौर पर मनाए जाते हैं और आपको इनको एक बार जरूर देखना चाहिए, तो इसकी बात भी मैं करूंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो भाई जब गीत इतने खूबसूरत हों तो साथ में गुनगुनाने का मन कर ही जाता है। वैसे मैं आपको बताने वाली थी कि गोवा में कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिनमें आपको जरूर जुड़ना चाहिए जाकर। तो गोवा कार्निवल का आप हिस्सा बन सकते हैं। ये मनाया जाता है फरवरी के महीने में। पहले 3 दिन और 3 रात तक बहुत ही धूम से इसे मनाते हैं। कार्निवल त्योहार जो है वो गोवा की हर गली नुक्कड़ और कोने पर नई ऊर्जा भर देता है और इसे 18वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों और औपनिवेशिक शासन के दौरान मनाया जाता था। गोवा का कार्निवल जो है वो खाने पीने के लिए, पेय पदार्थों के लिए, संगीत नृत्य और मस्ती के लिए जाना जाता है। उपवास और इसके अलावा 40 दिन की अवधि तक इसे आयोजित किया जाता है। दिन रंगीन और संगीतमय परेड के साथ गुजरता है। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित होता है ये और पूरे राज्य में एक अलग ही अनुभव आप यहां पर देखेंगे जब आप इस मौसम में यहां पर जाएंगे। और बाकी त्योहारों की तुलना में ये कहीं ज्यादा लोकप्रिय है यहां के लोगों के बीच में। लोग रात भर सड़कों पर पार्टी करते हुए नजर आते हैं। पणजी में फ्लोट परेड का आयोजन भी होता है और अपने आप में ये बहुत ही खास है, तो आपको इसका हिस्सा तो एक बार जरूर बनना चाहिए। गोवा में फेमस फेस्टिवल जो है वो क्रिसमस है। अगर गोवा में क्रिसमस का के मौके पर आप पहुंचते हैं तो बहुत ही धूमधाम से आप इसे देखेंगे, मनाया जाता है और ये एक अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट होता है यहाँ पर। इसके लिए आपको गोवा जो है वो सबसे बेस्ट मैं कहूँ अगर भारत में जगह है तो आप के लिए ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगी। अगर आप क्रिसमस के मौके पर गोवा जाते हैं तो सचमुच ये यादगार होगा आपके लिए। पुर्तगाली विरासत और कैथोलिक आबादी की मौजूदगी के साथ क्रिसमस बहुत ही खास होता है यहाँ, उत्साह के साथ मनाया जाता है और त्योहार ये जो मौका है मित्रों, परिवारजनों, समुदाय के लोगों के बीच सद्भावना के लिए जाना जाता है। क्रिसमस के मौके पर गोवा में चर्चेज और घरों को रंग बिरंगी रोशनी के साथ सजाया जाता है। बच्चे देर रात तक क्रिसमस कैरोल गाते हैं और सभी उम्र के लोग चर्चेज में जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार जो है वो मनाने के लिए यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। अगर मैं बात करूं गोवा में नए साल के जश्न की तो ये भी बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, भव्य तैयारी की जाती है। गोवा पार्टियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की पार्टी का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भव्य होती होगी। पूरी रात गोवा राज्य में जश्न और पार्टियों का माहौल रहता है। सनबर्न और सुपरसोनिक का आनंद भी जमकर लिया जाता है। आधी रात के समय 12 बजे के इंतजार में जोर जोर से गिनती होती है, नए साल का स्वागत किया जाता है, जमकर पार्टी होती है। डीजे पार्टी, संगीत, नाइट लाइफ बहुत कुछ है यहाँ पर और यहाँ के पार्टी के लिए जो गोवा के बीचेस हैं उन्हें भी एक अलग तरीके से तैयार किया जाता है ताकि यहाँ पर लोग पूरी तरह से भरपूर इस जगह का आनंद ले सकें, एंजॉय कर सकें। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व होता है एक ये गोवा में। इस दिन प्रसिद्ध संत जेवियर की मृत्यु के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गोएंचो साहिबा या गोवा के भगवान के रूप में माना जाता है। और प्रसिद्ध कैथोलिक मिशनरी थे ये, उनका जन्म 1507 में हुआ था। 1500

1952 को चीन की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेंसियस द्वीप पर उनकी उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और ये यहाँ पर शुरू होता है, ये धार्मिक त्यौहार है जो कि 3 या 4 दिसंबर के आसपास शुरू होता है। 9 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है और सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है चर्च में भी एक तरह का पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। बहुत ही अलग तरीके से इस दिन को यहाँ पर लोग मनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शिग्मो त्योहार जो है वो भी यहाँ पे मनाते हैं। शिग्मो वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक यहाँ पर चलता है। शिग्मोत्सव भी कहते हैं इसे और ये त्योहार होली के पावन त्योहार के साथ आता है। इस त्योहार के अवसर पर यहाँ पर बहुत ही अलग तरह से डांस और बहुत अलग अलग आयोजन का जो मजा है वो लिया जाता है। लोग रंगों से भी यहाँ पर खेलते हैं इस दौरान। इसके अलावा साओ जुआओ फेस्टिवल है जो कि वो भी गोवा में काफी फेमस है और ये भी काफी अच्छे से मनाया जाता है। हर साल 24 जून को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन कैथोलिक समुदाय सेंट जॉन बैप्टिस्ट को सम्मान दिया जाता है और अलग अलग तरह के नृत्यों को इसमें शामिल करते हैं जिन्हें सांगोट्स कहते हैं। और इसके अलावा गांव के लोग खासतौर पर युवा पत्ते और फलों से लदे हुए मुकुट पहनते हैं और इस त्योहार की सबसे मजेदार और खास बात यह है कि इस दिन लोग अपने दोस्तों के साथ अपने लोगों से अपने आसपास अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, फल भेंट के लिए लेकर जाते हैं। और भी बहुत से बोड्रम फेस्टिवल है यहाँ का एक जो खास है और इसके अलावा सनबर्न फेस्टिवल है जो बहुत फेमस है। 3 दिसंबर के आसपास ये आयोजित होता है। इसके साथ साथ गणेश चतुर्थी यहाँ मनाई जाती है। गोवा में सांस्कृतिक त्योहार जो है वो भी कल्चरल फेस्टिवल फूड फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है। मैंगो फेस्टिवल यहाँ पर होता है जो गर्मियों के दौरान रहता है और इसके अलावा दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ईद उल फितर को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हर धर्म को यहाँ पर इंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो गोवा की सैर में जब भी आप पहुंचे इस बात को याद रखिएगा कि गोवा आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करेगा। आपको जरूर एक बार तो अपने जीवन में गोवा की सैर करनी ही चाहिए। फिलहाल अब वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से गीत सुना देती हूँ आपको, उसके बाद आगे क्या है जरूर बताऊंगी।

तो भाई गोवा की यात्रा में तो आज इतना ही, लेकिन ये वादा रहा कि फिर किसी और रोज किसी और सफर में आपसे मुलाकात जरूर होगी। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि 24/7 आपका अपना चैनल आपके साथ यूं ही जुड़ा रहता है। वैसे एक मजे की बात पता है क्या होती है रेडियो के साथ, कि आप कहीं भी जाएं फिर भी आप रेडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, घूमते फिरते चलते फिरते जहां भी आप रास्ते में हैं या जहां भी हैं, एंजॉय करते रहिए आपका पसंदीदा चैनल। मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूं आज के लिए आपसे विदा। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का

0: चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust The bench of Justices M.M. Sundaresh and Sheel Nagore questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekhbhal, recognizing the critical importance of the first 3 years of life for child survival, growth, nutrition and early brain development. In Assam, fears of a major flood have intensified in the Himaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Himaji district administration has issued an urgent public advisory and a warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In Jammu and Kashmir, with the annual Sri Amarnath Yatra set to begin on July the 3rd, all preparations have been completed for the smooth conduct of the pilgrimage. Our correspondent reports that a full-scale dry trial run was conducted today to assess security arrangements, convoy movement and overall preparedness before the official commencement of the pilgrimage. Benchmark domestic equity indices were trading in the negative zone during the forenoon session today. The Sensex fell 152 points to 76,948, while the Nifty dropped 26 points to 24,030 when reports last came in. On the sectoral front, weakness persisted across auto, telecommunication and IT, while healthcare, pharma and metal sectors were bucking the trend. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Steven Estakio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. And with that, we end this news bulletin.

लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी कल्पना और आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हमारे पास आपके लिए एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि आपने सबसे पहली भारतीय डिश क्या बनाई और उस पर आपको क्या मजेदार कमेंट मिला था। हमें भेज दीजिए अपने उत्तर। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

और दोस्तों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से दोहे के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल हुए। यानी हमें सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिन्हें सुनकर दूसरे लोग खुश हों और हम भी खुश हों। आज है संत कबीरदास जी की जयंती और उनके विचार आज भी हमें सत्य, समानता और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। कबीर के दोहे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की सीख है। समय का सदुपयोग, आत्मचिंतन, गुरु का सम्मान और मधुर वाणी का महत्व, उनकी ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। सच है ना, हम उनकी सीखों से रोजमर्रा के जीवन में ऐसे बंधे हैं कि उन्हें भूलना या उनसे दूर जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। और चलिए देखते हैं कि हमारे किसी श्रोता ने हमें ईमेल किया है क्या। जी हाँ, बिल्कुल, नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं और उन्होंने हमें ईमेल किया है कि दाल चावल बनाए थे और डैडी ने काफी पसंद किया था और हम दोनों ने काफी चाव से खाया था। अरे वाह, तो जल्दी से आप भी दोस्तों, जो आप कार्यक्रम अभी जिसने सुनना शुरू किया है वो भी, उनके लिए प्रश्न ये है, आपको याद दिला दूं कि भाई आपने पहली भारतीय डिश जो है वो क्या बनाई थी और उस पर आपको क्या मजेदार कॉमेंट्स मिले थे, तो वो आपको हमें ईमेल करना है fmgoldga@gmail.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक शेर सुनाती हूँ कि जिस घर में एक स्त्री हिम्मत से खड़ी रहती है वहाँ उम्मीद हर मुश्किल से बड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों के अपने कठिन संघर्ष रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों से जूझते हुए हर युग में

स्त्रियों ने खुद को मजबूती से स्थापित किया है। एक समय था जब स्त्रियां शिक्षा से भी वंचित रहीं, और तब भी उन स्त्रियों ने पूरी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ अपना घर संभालना सीखा। लेकिन जब समय बदला और स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने लगीं, आत्मनिर्भर बनने लगीं, तब इन स्त्रियों ने संभाला अपना घर भी और दफ्तर भी। बिना कहीं कमजोर पड़े पूरी क्षमता से दोनों जगह 100% जिम्मेदारी निभाई। यानी इन स्त्रियों ने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी जिम्मेदारी संभालने का साहस किया। उन्होंने कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की बजाय अपने सीखने का क्रम बढ़ाया, अपनी क्षमताएं बढ़ाई और हर राह पर बड़े प्यार से आगे बढ़ती चली गई, चलती ही गई।

दोस्तों अभी आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले जी ने। तो चलिए आज आपको एक बहुत अच्छी सी जानकारी देती हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आपको गर्व महसूस होगा। ये राजस्थान के एक गांव की कहानी है। उस गांव ने ये साबित कर दिया कि बेटी जीवन की हरियाली है, घर की फुलवारी है और आंगन की तुलसी है। राजस्थान के पिपलांतरी गाँव के श्याम सुंदर जी ने बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाकर की परंपरा का सूत्रपात किया। तो गांव के अन्य लोग भी इससे जुड़े। ये पहल सिर्फ पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं, बल्कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की सोच भी बनी। समय के साथ इस परंपरा के कारण ही लगभग 3 लाख से अधिक पेड़ लगाकर गांव वालों ने गांव की बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया, जिससे बरसात और पानी का स्तर भी सुधरा। और देखो ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम पहल चलाकर हम सबको प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। और मुझे तो यही लगता है कि शायद असली नारी सशक्तिकरण यही है, जब बेटियों का महिलाओं का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। और मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि माता पिता की जान है अभिमान बेटियां, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान बेटियां, शोभा है दो कुलों की ये बोझा न मानिए, देते हैं भाग्य वालों को भगवान बेटियां।

दोस्तों ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और आइए अब फिर से हम चेक कर लेते हैं, भाई हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं तो हमें मेल कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं। ये ईमेल भेजा है गौरव खारी जी ने, वो लिखते हैं, मैंने सबसे पहले भारतीय खाने में आलू के पराठे बनाने की कोशिश की थी जो कि सिर्फ मैं अकेला ही खा पाया। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे अनुभव भी हो जाते हैं कि फिर बाद में अच्छा बनने लगता है, शुरुआत में तो थोड़ी बहुत भूलचूक हो जाती है। चरणदास जी लिखते हैं, ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और ये भी लिखते हैं कि भारतीय खाना खाकर इनको बड़ा मजा आता है और बनाने का तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, पर चलिए धन्यवाद आप जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भावना शर्मा जी लिखती हैं कि मैंने पहली बार शाही पनीर बनाया था, फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मुझे गाइड किया था और सबकी मम्मी शिकायत करती है मेरे पापा ने मुझे खाना

घर के बगल में एक दादी रहती थी, मैंने सबसे पहले उनके यहाँ चूल्हे पर परांठा बनाया था, लेकिन गलती है कि मुझे बनाना नहीं आता था तो मैं उसे रोटी की तरह सेकने लगी जिससे मुझे डांट पड़ी, लेकिन बाद में सीख गई। अब मैं आलू के पराठे काफी अच्छे बनाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, चलो अब आप सीख गई। तो ऐसे ही हमारे अन्य श्रोता, देखिए राधा शुक्ला जुड़ी हैं तो वो भी कह रही कि भाई हमने दाल चावल बनाया था, तो लग रहा है दाल चावल और आलू के परांठे बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बढ़िया है, आप जो लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं हमारे अन्य श्रोता, वो भी हमें ईमेल करें और भेज दें कि भाई उन्होंने पहली भारतीय डिश क्या बनाई थी, हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और तब तक आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, लेकिन वो किसी वक्त अकेला नहीं होता। तो दोस्तों, कभी कभी थोड़ी देर के लिए एकांत भी चुनना जरूरी है, ताकि खुद को समझा जा सके, खुद से बातें की जा सके। और शायद यही कारण है कि आज के युवाओं को रूम रॉटिंग भारी है। युवाओं के लिए छुट्टी का मतलब अब भागदौड़ नहीं, बल्कि रुकना और आराम करना हो गया है। रूम रॉटिंग में युवा करते हैं आराम। चलिए बताती हूँ कि ये होता क्या है। किसी शांत जगह पर आराम करते हैं, देर तक बिना किसी दबाव के सोते हैं, बाहर जाने का दबाव नहीं लेते, बिना प्लान के दिन बिताते हैं, हल्की फुल्की बातें करते हैं और अपना मनपसंद खाना खाते हैं। आजकल के युवा बहुत तनाव, चुनौतियों और मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ऐसे में रूम रॉटिंग वाली छुट्टी उनके रिकवरी मोड को ऑन कर उन्हें आगे बेहतर करने के लिए तैयार करती है। और कितनी अच्छी बात है कि वे कुछ देर खुद के साथ रहते हैं, बिना दबाव के जीते हैं, शांत रहते हैं और सबसे जरूरी कि फोन और सोशल मीडिया से भी दूरी बना लेते हैं, कुछ घंटे बस खुद के। अच्छी बात तो ये है कि ये युवा प्राकृतिक जीवन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, हर बात में रील फोटो के लिए नहीं रुकते, बल्कि असली पल जीते हैं। कभी बालकनी में घंटों बैठ नजारे देखते हैं, कभी खुद से मनपसंद खाना बनाते हैं, कभी कुछ एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, तो कभी बस बगीचे की सैर से खुश हो जाते हैं। खुद के साथ खुश रखने का ये ट्रेंड खुद से कुछ कहने सुनने का भी अवसर देता है।

श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ श्रोताओं के ईमेल और पढ़ते हैं। गौरी शंकर वर्मा जी ने हमें मेल किया है कि कल्पना बेटा राम राम सन 1974 की बात है, मैं और मेरी बड़ी बहन ने मिलकर हलवा बनाया। माँ कहीं गई हुई थी लेकिन वो खराब हो गया, बाद में फिर माँ ने सिखाया बस अब तो केवल हलवा बना सकते हैं और कोई चीज नहीं। कोई बात नहीं, आप हलवा बनाते हैं तो क्या हुआ, आप मिठास बांटते हैं, ऐसे ही बांटते रहिए। अगले हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं, अग्रसेन यादव जी हैं, और वो लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग सिलेक्शन भी अच्छा है और खाने पीने की बात का तो ये हिट प्रोग्राम है। थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। अक्षिका गोयल ने हमें लिखा है, इन्होंने कुछ शायराना अंदाज में लिखा है कि पहली चाय थी पर यादगार बन गई, मेहनत और प्यार से हर घूट खास बन गई, बहुत अच्छा। और ज्ञानेन्द्र दीक्षित जी हैं, वो हमें लिखते हैं कि डिश का नाम मटर पनीर, सबको बहुत पसंद आई थी और मेरी माता जी को सबसे ज्यादा, क्या कहने। और हमारी जो रेगुलर लिसनर हैं दर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, वो कह रही हैं कि भाई घर आंगन प्रोग्राम उन्हें अच्छा लग रहा है और कह रही हैं हमने भी सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया था और सबने स्वाद से खाया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं और अपने विचार हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमारे जो अन्य श्रोता हैं वो भी हमें बताएं कि उन्होंने अपनी पहली भारतीय डिश कौन सी बनाई थी और उन्हें क्या कॉमेंट मिला था, हमें भेज दीजिए fmgoldga@gmail.com पर। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आंगन कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ आपसे मनोरंजक बातें, मधुर गीत, संगीत ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र भी करते हैं और इसीलिए नई नई काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप रहें सुरक्षित। तो गर्मी का मौसम है तो ऐसे में कई बार हमारा मोबाइल ओवरहीट हो सकता है जिससे हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम भी, इसके लिए कुछ आसान से उपाय आपको बताती हूँ, छोटे छोटे जो करने हैं। आजकल के फास्ट चार्जर जो हैं वो मोबाइल को जल्दी चार्ज तो करते हैं लेकिन बहुत गर्म भी कर देते हैं। ऐसे में फोन को किसी मोटे रबर या लेदर कवर में ढककर बिल्कुल चार्ज न करें बल्कि कवर से निकाल कर चार्ज करें ताकि हीट बाहर निकल सके। नेविगेशन के लिए फोन को सीधे धूप के संपर्क में न रखें, यदि ज्यादा देर रखना पड़े तो ऐसे में एसी वेंट वाले फोन होल्डर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जब जरूरत नहीं हो तो वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और अन्य जो सेवाएं हैं वो बंद रखें, इससे फोन पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन रखें और गेमिंग जो है, हैवी गेमिंग, उससे बचें। फोन जरूरी चीज है, इसके बिना काम तो नहीं चल पाता लेकिन इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें पूरी सावधानी के साथ।

श्रोताओं, ये खूबसूरत संगीत आप सुन रहे थे हिमलता की आवाज में, फिल्म आप तो ऐसे ना थे। और वैसे तो गर्मी की छुट्टियों में सब कहीं ना कहीं घूमकर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप आम के

यकीन है तो दिल्ली हाट जनकपुरी में 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 लगने वाला है मैंगो फेस्टिवल, जहां पर न सिर्फ आम की विभिन्न किस्में मिलने वाली हैं बल्कि आम से बने अलग अलग शेक्स, डेजर्ट्स, स्ट्रीट फूड और कैंडी भी होंगी। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हस्त निर्मित सामान भी होगा जो आप खरीद सकते हैं। समय है दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक। तो 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए एंट्री फ्री है, बाकी सबके लिए 20 रुपये टिकट है। तो परिवार सहित एक बार घूम कर आइए, जनकपुरी ईस्ट उसका निकटतम मेट्रो स्टेशन है अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो। इसके अलावा एक और सूचना यह है कि साथ ही अगर आप ब्यूटी पार्लर या स्किन केयर व्यवसाय से जुड़े हैं या इनमें रुचि रखते हैं तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 29 यानी आज और 30 जून दो दिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक लगा है ब्यूटी एक्सपो, जहां पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर के लाइव डेमो सेशन होंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, साथ ही ब्यूटी उद्योग से जुड़े प्रोफेशनल से भी आप मिल सकते हैं। यहां पर एंट्री के लिए आपको 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क काउंटर पर ही देना होगा। तो जाइए और अपने हुनर को तराशिए ताकि किसी की खूबसूरती में आप 4 चांद लगा सकें।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करेंगे इंडियन सुपर फूड के नाम से पहचान बनाने वाले मीठे रसीले फूल महुआ की। पहले पहल आदिवासी समुदायों द्वारा इसे उपयोग किया जाता था और आज ये महुआ उन परिवारों की आजीविका भी बन रहा है। हाँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा इससे दूर हो चुके हैं, लेकिन अब समय है इसके पास जाने का और इसे अपनी प्लेट तक लाने का। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगलों में मिलने वाला ये फूल अब पारंपरिक उपयोग से आगे पहचान पा रहा है। आदिवासी समुदाय, ग्रामीण स्त्रियां और स्वयं सहायता समूह इसकी मदद से लड्डू, सिरप, कुकीज और अन्य उत्पाद जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। महुआ के फूल, फल, तेल और छाल सहित लकड़ी के भी अपने अलग अलग और विशेष लाभ हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने का काम किया है और खास तौर पर इससे लाभान्वित हो रही हैं हमारी महिलाएं, और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साथ ही जंगल की जो ये उपज है अब जो है ये आधुनिक बाजारों तक भी पहुंच रही है, तो लोगों में भी स्वदेशी उत्पाद खरीदने की जो भावना है वो प्रबल हो रही है। जंगल के इस मीठे मीठे फूल की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब इस मीठे फूल की जानकारी के बाद हम सुनेंगे एक मीठा सा प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं अनपढ़ फिल्म से और जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर जी। तो आज का घर आंगन कार्यक्रम जो है वो हमें यहीं संपन्न करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की सुइयां हमें आगे आपसे बात करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगली मुलाकात आपसे जरूर होगी, जल्दी होगी इसी कार्यक्रम में घर आंगन के साथ। सुनते रहिए इसे और जुड़े रहिए और मुझे दीजिए अनुमति, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्वकप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम एक ऐसे एक्टर की बातें करेंगे, दिल थाम के सुनिएगा, जिन्होंने सिनेमा में सिर्फ काम नहीं किया बल्कि अपने हर किरदार को जिया है। हम बातें करेंगे अभिनेता रघुवीर यादव की, जो कि एक अभिनेता होने के साथ साथ संगीतकार, गायक और सेट डिजाइनर भी हैं और हाल ही में दोस्तों प्रधान जी के नाम से बहुत ही मशहूर हुए हैं।

कुमार सानू की आवाज, आरडी बर्मन साहब का संगीत। ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से, और ये गाना फिल्माया गया था अनिल कपूर मनीषा कोइराला पर। वैसे आपको बता दूं कि रज्जो के पड़ोसी का बहुत ही खूबसूरत सा किरदार निभाया था इस फिल्म में रघुवीर यादव ने, मुन्ना उनका नाम था इस फिल्म में। दोस्तों, रघुवीर यादव उन अभिनेताओं में से एक हैं जो बहुत ही सहजता और सच्चाई के साथ अपने किरदार को निभाते हैं। रघुवीर यादव का ताल्लुक जबलपुर मध्य प्रदेश से है। रघुवीर का जन्म 25 जून 1957 को हुआ था। वो फिल्म और टेलीविजन के जाने माने अभिनेता हैं और थिएटर के एक मंझे हुए कलाकार। आज रघुवीर यादव जिस मुकाम पर हैं, जी हाँ, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बेहिसाब मेहनत की है और एक लंबा वक्त गुजारा है संघर्ष में। बताऊंगी उनके बारे में आपको बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले दुश्मनी फिल्म का ये गाना, कहीं नहीं है जाना।

0: सीधा मुझे इसके शब्द ही नहीं पता थे। बहुत से ऐसे गाने रहे हैं 90s और 20s के जो हम गाया करते थे, लेकिन हमें असल में नहीं पता था कि ये गाना है क्या। आज मैंने बहुत ध्यान से सुना तब मुझे लगा कि मैं तो बहुत गलत गाती रही हूँ अपने बचपन से अब तक इस गाने को। वैसे इस गाने को आवाज दी थी सपना अवस्थी और साथियों ने, दुश्मनी फिल्म का ये गाना है और रघु के किरदार में इस फिल्म में नजर आए थे रघुबीर यादव, जिनकी आज हम बातें कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, रघुबीर यादव के फिल्मों में आने की जो कहानी है वो एकदम फिल्मी सी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनका करियर शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, स्कूल में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो परिवार ने बहुत ही जबरदस्ती उनसे कहा कि तुम्हें साइंस लेनी पड़ेगी, जबकि साइंस स्ट्रीम में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो थोड़े से कमजोर थे इस मामले में। लिहाजा हुआ ये, जिसका उन्हें डर था वो फेल हो गए। और जैसे कि आमतौर पर होता है, हमारे जो भारतीय घर हैं उनमें ऐसा ही होता है कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो डर जाता है और इधर उधर नानी बुआ दादी के यहाँ पे चला जाता है, निकल जाता है। ऐसे ही कुछ रघुबीर ने किया। 6 महीने तक वो घर से दूर रहे अपने दोस्त अनु कपूर के पास। यहां उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया और कमाई भी करने लगे। रोजाना उन्हें 2.5 रुपए मिला करते थे। रघुबीर उस इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि कभी कभी वो 2.5 रुपए उनके दोस्त वगैरह निकाल लिया करते थे और ऐसे में उन्हें कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता था। जी हाँ,
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है,

0: अलका याग्निक और हरी हरन की आवाज में खामोशी द म्यूजिकल फिल्म का ये गीत आपने सुना। इसमें विलेन के किरदार में थे रघुबीर यादव। उनके बारे में और भी ढेर सारी बातें करने वाली हूं मैं, साथ ही बताऊंगी उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन किरदारों के बारे में जो उन्होंने फिल्मों में निभाए। लेकिन उससे पहले बहुत ही छोटे से ब्रेक पर आप जाएं, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाना है, चैनल नहीं चेंज करना है, यहीं पे रहना है, ठीक है?
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो अभी अभी रेडियो ऑन करके बैठे हैं, बहुत गलत बात है, आपको जल्दी से ऑन करना चाहिए। उनको बता दूं कि आज हम बातें कर रहे हैं रघुबीर यादव की। जी हाँ, जाने माने रंगमंच कलाकार हैं, साथ ही साथ फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार उन्होंने निभाए हैं। तो दोस्तों, साल 1967 से 1973 का जो दौर रहा, इस दौर में, इस वक्त में रघुबीर ने बहुत सारे छोटे बड़े नाटकों में काम किया। वो एक पारसी थिएटर कंपनी से जुड़े रहे, इसके बाद लखनऊ के एक मशहूर थिएटर में उन्होंने काम किया। उन्होंने करीब 40 नाटकों के 2000 से ज्यादा शोज किए। एक्टिंग के अलावा रघुबीर नाटकों में म्यूजिक कंपोजर, सेट्स और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रहे। ये अनुभव उनके बहुत काम आए और उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बनने में मददगार रहे। वैसे दोस्तों, एक बात जरा सोच के देखिए कि अपनी फिल्मों में वो एकदम हटके नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। फिल्मों में तो कैसा भी कोई भी किरदार वो निभा जाते हैं और अक्सर वो सीधे साधे ग्रामीण परिवेश वाले किरदारों में ही नजर आते हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, सेट डिजाइन करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड है। चलिए फिलहाल अशोका फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना

शान सुनीता राव और अलका याग्निक के साथ उनके दूसरे साथियों की आवाज में आपने सुना अशोका फिल्म का ये गीत। और अशोका में मौर्य वंश के एक सैनिक के किरदार में नजर आए थे रघुबीर यादव। दोस्तों, रघुबीर के फिल्मी करियर की जो शुरुआत है वो बहुत ही शानदार रही। साल 1985 में एक फिल्म आई थी मैसी साहिब, जिसमें रघुबीर ने फ्रांसिस मैसी की भूमिका निभाई थी। मैसी साहिब जॉयस कैरी के मशहूर उपन्यास मिस्टर जॉनसन पर आधारित थी। शायद आपने सुना हो, बहुत ज्यादा फेमस रहा था ये उपन्यास। फिल्म मैसी साहिब के लिए रघुबीर को कई अवार्ड्स मिले थे, जिनमें से एक था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मिला सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर अवार्ड। इसके अलावा वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी उनको क्रिटिक्स प्राइज फॉर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और हाल ही में एक सीरीज आई है जिसमें उन्होंने प्रधान जी का किरदार निभाया है, और इसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला है। आजकल वो प्रधान जी के नाम से कुछ ज्यादा ही फेमस हैं, इसी नाम से लोग जानते हैं उनको आजकल। वैसे उनकी एक पहचान टीवी से भी रही है, बहुत ही जबरदस्त पहचान। हम सबके बचपन में वो बहुत याद किए जाते हैं। जी हाँ, हमारे बचपन के टाइम के जो उन्होंने किरदार निभाए हैं वो आज भी हमें याद होंगे, लेकिन क्या वो रघुबीर ने निभाए हैं ये हमें बाद में पता चलता है। चलिए बताऊंगी इनके बारे में, लेकिन उससे पहले उस फिल्म से मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ जिसकी म्यूजिकल टीम में रघुबीर थे। जी हाँ, धुने बनाने में भी वो रहे हैं। आइए सुनते हैं।

रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाज में एआर रहमान का कंपोज किया ये बहुत ही प्यार सा गाना गेंदा फूल आपने सुना दिल्ली 6 फिल्म से। और शायद आप जानते हो कि इस फिल्म की जो म्यूजिकल टीम थी उसका हिस्सा रहे हैं रघुबीर यादव। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक रहा कि रघुबीर यादव ने कई ऐसी, जी हां एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सराही गई। उनकी कई फिल्में हैं जो बाहर गई हैं, जी हां देश के बाहर गई हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को वहां पर रिप्रेजेंट किया है। एक फिल्म आई थी 2010 में, शायद आपको याद हो, पीपली लाइव। इसमें जो मुख्य किरदार था बुधिया, वो रघुबीर ने निभाया था। इसके अलावा 2017 में आई थी फिल्म न्यूटन, उसमें लोकनाथ का जो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था वो भी उन्होंने प्ले किया था। इसके अलावा सलाम बॉम्बे, लगान, फिराक, अशोका, पीकू, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत बहुत मशहूर रही हैं और इनमें बहुत ही सशक्त किरदार निभाए हैं रघुबीर यादव ने। और दोस्तों रघुबीर यादव फिल्मों ही नहीं बल्कि टीवी में भी बहुत मशहूर रहे हैं। बचपन में आपने दूरदर्शन पर चर्चित सीरियल देखा होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और मुल्ला नसरुद्दीन भी आपने देखा होगा। दोनों के ही जो लीड एक्टर थे वो रघुबीर रहे और टीवी पर बच्चों और बुजुर्गों दोनों की पसंद बने रहे रघुबीर। मुंगेरी लाल का जो किरदार है वो तो आइकॉनिक रहा है, आज भी याद रहता है। इसके अलावा चाचा चौधरी और अमरावती की जो कहानियां हैं वो भी खासे लोकप्रिय रहे। इनमें भी बहुत ही मजबूत, बहुत ही जबरदस्त वाले किरदार निभाए थे रघुबीर यादव ने। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम में उनके

0: लगान फिल्म का ये बहुत ही उम्मीदों भरा गाना आपने सुना आकाशवाणी फिल्म गोल्ड पर। और ये जो गाना है इसे आवाज दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, श्रीनिवास और साथियों ने। दोस्तों, ऐसी ही जिंदगी जीते हैं रघुबीर यादव भी। आप तो जानती हैं कि उन्होंने फिल्मों में धुनें भी बनाई हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स में वो आवाज भी दे चुके हैं, टीवी के भी कई सीरियल्स में उन्होंने गाने गाए हैं, म्यूजिक कम्पोज किया है, वो सेट डिजाइनर भी रहे हैं। इतनी काबिलियत के बावजूद भी जब आप रघुबीर यादव से मिलेंगे दोस्तों, तो उन्हें बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ पाएंगे। एक बात बहुत ही खास उनके अंदर है कि जब आप उनके संघर्ष की बातें करेंगे तो वो हमेशा यही कहते हैं कि संघर्ष जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा है, इसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, यानी कितना बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है, संघर्ष किया, तो ऐसे हैं रघुबीर यादव। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है मेरे जाने का। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगी। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीकेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाब्तियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में लॉस एंजलिस में खेले गए पहले नॉकआउट मैच में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक 2026 की दिफा की दूसरी तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। वो दिफाई अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस दस्तों और रियासत व मरकज के जेर इंतजाम पुलिस के अमले को बहादुरी के इनामात शाम 5 बजे अता करेंगी। ये इनामात मुसल्ला दस्तों, मरकजी पुलिस फोर्सेज और दीगर हिफाजती एजेंसियों के अमले के बहादुरी के गैर मामूली कारनामों को तस्लीम करते हुए दिए जाते हैं। इन इनामात से पूरे जम्मू कश्मीर, शुमाल मशरक और मुल्क की सरहदों पर दहशतगर्दी, शोरिश पसंदी और मुखासिमाना धमकियों की रोकथाम के लिए भारत की लगातार जद्दोजहद की अक्कासी होती है। नीज एविएशन, समंदरी कार्रवाइयों और इंसानी हमदर्दियों वाले मिशनों में गैर मामूली हौसले के इकदाम उजागर होते हैं। सदर मुर्मू ने इससे पहले इस तकरीब के पहले मरहले में भी बहादुरी इनामात अता किए थे। ये तकरीब राष्ट्रपति भवन में इस माह की 8 तारीख को मुनाकिद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के अपने दौरे के तीसरे दिन आज विक्टोरिया में नवाशक्ति विनय नागर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां भारत निजात अफराद से मुलाकात भी की। बाद में वजीर आजम ने पीस पार्क में वाकई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर गुलाए अकीदत नजर किए। जनाब मोदी सेशल्स का अपना 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद भारत रवाना हो गए हैं। कल वजीर आजम मोदी ने सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने इस तकरीब में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस तरह वो भारत के पहले वजीर आजम है जिन्हें ये एजाज दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस परेड में भारतीय बहरिया और फौज की टीमों पर मुश्तमिल एक मार्चिंग दस्ते ने शिरकत की। इसके अलावा भारत के एक बहरी बैंड ने भी शिरकत की, जिससे भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी शराकतदारी का इजहार होता है। खैर सगाली के खसूसी जज्बे के तौर पर INS तरकश और INS इश्क शाक को पोर्ट विक्टोरिया पर लगनअंदाज किया गया, जिससे सेशल्स के साथ भारत की देरीना दोस्ती का अंदाजा होता है। वजारत खारजा के मुताबिक भारत और सेशल्स के दरमियान देरीना दोस्ती है, जिसकी जड़ें मुश्तरका तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। भारतीय बहरीन खत्ते में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का मकाम भारत के विजन महासागर और आलमी जनूब के तई भारत के अहद में खसूसी हैसियत का हामिल है। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मोदी के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती का इरादा होता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में दोनों मुल्कों के मुश्तरका अहद की भी अक्कासी होती है। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ्फुज और पायदार तरक्की के शोबे में क्यादत पर सेशल्स के आला तरीन एवार्ड गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन से भी नवाजा गया। वजीर आजम ने सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब किया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेशल्स और भारत ऐसी दुनिया के क्याम के ख्वाहिशमंद हैं जहां तरक्की के फायदे सबको हासिल हों और जहां बैन अल-अक़वामी इदारों में असर हाजिर के हकाइक की अक्कासी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मफाद आमा में दायर की गई उस दरख्वास्त पर फौरी समाप्त करने से इनकार कर दिया है, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जानिब से चढ़ावा वसूल किए जाने में मुबैना माली बेजाबतियों की अदालत की निगरानी में तहकीकात और फोरेंसिक ऑडिट कराए जाने की दरख्वास्त की गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की एक बेंच ने हिदायत दी है कि इस दरख्वास्त को उस फहरिस्त में शामिल किया जाए जिस पर गर्मी की तातील के बाद अदालत के दोबारा खुलने के बाद सुनवाई होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के दरमियान पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए जाने के बारे में एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब पाटिल ने कहा कि इस समझौते के तहत पानी को मानसून के दौरान हथनी कुंड बैराज से वेस्टर्न यमुना केनाल सिस्टम के तहत एक जेरे जमीन पाइप के जरिए सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे चोरू, सिकर, झुंझुनू और राजस्थान के पानी के किल्लत वाले दूसरे खित्तों में पीने के पानी की जरूरतें पूरी होंगी। कौमी राजधानी दिल्ली में वोटरों को इलेक्टोरल इनुमरेशन फार्म तकसीम किए जाने का काम कल से शुरू होगा। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओज कल से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाकर इनुमरेशन फार्म तकसीम करेंगे और मजाज वोटरों से पुरकरवा कर वसूल करेंगे। जनाब कुमार ने बताया कि 5 अगस्त और 4 सितंबर के दरमियान दावे और इतराजात पेश किए जा सकते हैं। हतमी वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। उन्होंने बताया कि राय दहिंदगान इनुमरेशन फार्म www.voters.eci.gov.in पर भी ऑनलाइन पुर कर सकते हैं। आला इंतखाबी अफसर ने सभी मजाज राय दहिंदगान से जोर देकर कहा है कि वो बीएलओज के साथ तआवुन करें और मुकर्रर वक्त के अंदर अपने फॉर्म जमा कराएं। ये खबरें आकाशवाणी से नशरी की जा रही हैं। बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले बांग्लादेश वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाईयों, सजाए मौत और अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद वो ये कदम उठाएंगे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी अगराज पर मबनी बताया और मौजूदा हुकाम पर इल्जाम लगाया कि बांग्लादेश के सियासी मंजरनामे से अवामी लीग का वजूद खत्म करने के लिए अदलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने जनविश्वास तरमीमी एक्ट 2026 के जरिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक इम्प्रूवमेंट नोटिस तरीकेकार का आगाज किया है। नए निजाम में पहली बार जाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारियों को ये छूट दी गई है कि वो सजा की कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले खामियों को दूर कर दें। सार्फिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि इसका मकसद रजाकाराना तौर पर जाब्तों की पाबंदी करने और मुकदमात को कम करने की हौसला अफजाई करके कारोबार में आसानी को फरोग देना है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट में राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के सदर नशीं सीपी राधाकृष्णन ने जनाब खड़गे को हलफ दिलाया। अमरीका और ईरान कतर की राजधानी दोहा में इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं और कल से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। इस कदम का मकसद कई दिन से जारी इस फौजी कार्रवाई को रोकना है, जिसकी वजह से जंगबंदी को खतरा लाहक हो गया था और अब नए हुरमुज से मुतालिक तनाजे को हल करना है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमरीका के लॉस एंजल्स में खेले गए मुकाबले में कनेडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। कनाडा के खिलाड़ी स्टेफिनो स्टिकियो ने इजाफी वक्त के दूसरे निस्फ की दूसरी मिनट में फैसला कुन गोल किया। फीफा आलमी कप 2026 के मेजबान मुल्कों से एक कनाडा ने आखिरी मिनटों में मजबूत दिफा का मुजाहरा किया। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बहादुरी से मुतालिक अवार्ड पेश करेंगे। हुकूमत ने कारोबार में सहूलत पैदा करने की गर्ज से तरीकेकार को बेहतर बनाने से मुतालिक एक नोटिस मुतारिफ कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आम्मा की एक अर्जदाश्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें राम मंदिर अतियात के केस में मुबैना माली बेजाबतियों की छानबीन अदालत की निगरानी में कराने की दरख्वास्त की गई थी। हरियाणा और राजस्थान ने आज अमित शाह की मौजूदगी में जमुना के पानी की तकसीम से मुतालिक एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली में वोटरों की जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत वोटरों को इलेक्टोरल फॉर्म्स घर घर जाकर तकसीम किए जाने का अमल कल से शुरू होगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा है कि वो जान से मारने की धमकियों के बावजूद इस साल के आखिर से पहले तक बांग्लादेश लौट जाएंगे। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
0: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current Class 10 batch from three-language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and UT Police at 5 p.m. These awards are given in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The awards reflect India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. President Murmu had earlier conferred gallantry awards at the Defence Investiture Ceremony Phase 1 at Rashtrapati Bhavan on the 8th of this month. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navasakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has since departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi's three-day visit to Seychelles marked a significant step in strengthening bilateral ties. During the visit undertaken at the invitation of President of Seychelles, Dr. Patrick Harmony, the two leaders held wide-ranging talks covering cooperation in healthcare, education, capacity building and maritime security and defense. They also discussed regional challenges in the Indian Ocean region, including illegal fishing, drug trafficking and piracy. Several MOUs and agreements in areas such as UPI, health, agriculture, shipping, space cooperation, extradition, and line of credit were also

0: electoral enumeration forms to voters under Special Intensive Revision SIR in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow till the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. Mr. Kumar said that claims and objections can be filed between the 5th of August and the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October.
1: Around over 13,000 BLOs have been deployed for this exercise and enumeration forms have already been provided to all of them. The BLOs will begin the distribution drive from tomorrow morning. In addition to the physical distribution, electors also have the option of filing and submitting the enumeration form online.
0: In Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha performed the Pratham Puja at the holy cave shrine of Sri Amarnath Ji, marking the ceremonial start of the annual pilgrimage. The annual yatra will officially begin on July the 3rd and is scheduled to culminate on August the 28th. After the special prayers, Mr. Sinha said the administration, Sri Amarnath Ji Shrine Board, army, police, security forces, local community, service providers and volunteers were working in complete synergy to ensure a safe, hassle-free and memorable pilgrimage for the yatris. Mr. Sinha added that the authorities and people of the UT were fully prepared to welcome the yatris and significant facilities have been put in place for smooth conduct of the pilgrimage. In Odisha, the sacred city of Puri today resonated with unparalleled spiritual fervour as lakhs of devotees gathered for the annual Devasnan Purnima, the ceremonial harbinger of the world-famous Rath Yatra. Our correspondent reports on one of the most significant observances in the Jagannath tradition. More from our correspondent.
2: Lakhs of devotees witnessed the sacred Devasnana Purnima of Lord Jagannath at Puri today, marking the ceremonial commencement of this year's Rath Yatra festivities. Amid an atmosphere of profound devotion, Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan were ceremonially escorted in the traditional Pahandi Bijay procession from the Sanctum Sanctorium to the Snana Mandap, accompanied by the reverberating strains of conch shells, cymbals and temple percussion. In accordance with centuries-old temple traditions, the deities were ritually bathed with 108 pitchers of sanctified fragrant water drawn from the sacred Sunakua or golden well within the temple precincts. Following the elaborate ablution, the deities were adorned in the distinctive Gajanana or Hathi Vesa. They will now remain in ritual seclusion during the fortnight-long Anasara period before reappearing for the Navajovana Darsana ahead of the annual Rath Yatra scheduled to commence on the 16th of next month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has said she will return to Bangladesh before the end of this year, despite facing legal cases, a death sentence, and a ban on the political activities of the Awami League. Raising fresh questions over the exclusion of one of the country's largest political parties from the political process. In an interview with a TV channel, Hasina described the cases against her as politically motivated and accused the current authorities of using the judiciary to eliminate the Awami League from Bangladesh's political landscape. Hasina's remarks came as the Awami League observed its 77th founding anniversary amid a nationwide ban on its activities and extensive security measures. China has imposed new export controls on 40 Japanese entities, accusing them of contributing to Japan's remilitarization as tensions between the two countries continue to rise. China's Commerce Ministry placed 20 entities on an export control list. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eustachio of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-hosts Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July the 4th. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. The Met Department also predicted heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe till Wednesday. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Three-decade pending Yamuna water-sharing project between Haryana and Rajasthan gets approval today. Supreme Court refuses urgent hearing on PIL seeking court-monitored probe into alleged financial irregularities in Ram Mandir donations case. CBSE exempts current class 10th batch from free language policy. Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business. SIR set to begin in Delhi tomorrow. And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in first knockout match at Los Angeles. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
6: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
3: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज

0: विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार

समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। उन्नत किसान लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं मंजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौतम कुमार झा का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: हर बार की तरह हम एक नया विषय अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं और आज का जो विषय है वो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा रखने के उपाय जानेंगे। और स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम उपाध्याय जो कि वैज्ञानिक है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और गौतम हम हर बार एक नया विषय लेकर आते हैं और आज का विषय है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता। तो क्या हम हमारे जितने भी श्रोता हैं बहुत उत्सुक रहते हैं कुछ न कुछ जानने के लिए और पूछने के लिए भी, और आज की फोन लाइन अगर हम बात करें तो वो भी खुल चुकी है, तो फोन लाइन के बारे में बताएं।
1: जी मंजीत, जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके जहन में अगर कोई सवाल है हमारे विषय को लेकर, जैसा कि आपने विषय बता ही दिया है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा रखने के उपाय, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो 011 एसटीडी कोड जो दिल्ली का है वो लगाएं, उसके बाद हमारी फोन लाइन है 2342-1081। दूसरा जो हमारा लाइन है वो है 2342-1083। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब जो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीलम उपाध्याय जी, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर साहब मेरे जहन में ये आ रहा है कि खाद्य पदार्थ मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और स्वस्थ जीवन के लिए भोजन का पौष्टिक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले जो मैं जानना चाहूंगा कि गुणवत्ता और सुरक्षा में अंतर क्या है मैम?
2: देखिए, जैसे आज का जो विषय है इसमें दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक है खाद्य सुरक्षा और दूसरा है खाद्य गुणवत्ता। अक्सर हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, पर इन दोनों का अलग अलग तात्पर्य है। सुरक्षा से अगर हम बात करें तो ये है कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो उनमें कोई ऐसी चीज या ऐसे तत्व नहीं होने चाहिए जिससे कि हमें बीमारी हो, जैसे कि उसमें कोई जीवाणु कीटाणु या फिर उसमें कोई भौतिक तरीके का या रासायनिक तरीके का कोई भी उसमें तत्व ना हो तो हमारा जो खाद्य है वो सुरक्षित रहेगा। और दूसरा जो इसमें है वो है खाद्य गुणवत्ता। अक्सर या पहले के समय में जब हम गुणवत्ता की बात करते थे, मतलब डिग्री ऑफ एक्सेलेंस की हम जब हम बात करते थे, तब हम बात करते थे कि वो उसका रंग कैसा है खाद्य पदार्थ का, उसकी सुगंध कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, इन मायनों पर ही हम या इनके इर्द गिर्द ही हम घूमा करते थे। परंतु अब समय आ गया है जब हम गुणवत्ता में एक और आयाम जोड़ देते हैं जो कि है कि में कितने पोषण तत्व हैं। तो अगर बात करें खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता की, तो ये दोनों ही हमें अगर दोनों का मेल हो जाएगा तो हमें एक संपूर्ण आहार मिलेगा। उससे
0: आहार की मैम हम बात कर रहे हैं और आपने जैसे कि बताया गुणवत्ता और सुरक्षा अलग अलग है, तो जानना चाहेंगे गुणवत्ता हम खाद्य पदार्थ के अंदर कैसे बना सकते हैं और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस चीज की हम सुरक्षा, अपने खाद्य पदार्थ की सुरक्षा किस तरीके से घर पर और बाहर भी कर सकते हैं।
2: जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं कि हम हमारे खाद्य पदार्थ को कैसे उसको गुणवान रखें या उसकी गुणवत्ता हम कैसे बनाए रखें, तो हर खाद्य पदार्थ की प्रोसेसिंग जो है, प्रसंस

0: करण है अलग प्रकार से होती है, तो हमें जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस समय ध्यान रखना होगा कि हर खाद्य पदार्थ की जो सुनिश्चित पैमाने हैं उनके अनुसार उनका प्रसंस्करण किया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे, भले ही वो स्वाद या उनकी रंग या फिर उनके पोषण तत्व हैं उनसे संबंधित हो या फिर उसके लाइक पोषक तत्व हो, तो दोनों चीजों की जो गुणवत्ता जो सब एक समावेशी है ये सब चीजें एक साथ मिलेंगी तो उसकी गुणवत्ता रहेगी। जैसे कि अगर आप दूध की बात करते हैं तो आप जैसे हम घरों में उसको उबाल कर पीते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो वो बहुत समय तक चल भी जाता है और उसकी एक गुणवत्ता बनी रहती है। अगर हम फलों या सब्जियों की बात करें तो उसमें देखा आप देखते होंगे कि जैसे अगर आप सेब को काट देते हैं और काट कर आप काफी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो भूरा हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और अगर वो भूरा हो गया तो उसमें अगर हमारे बच्चे हैं या जो भी है, अगर हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं या अदरवाइज भी वो खाने के लिए लोग प्रेरित नहीं होंगे उसको खाने के लिए, तो हमको उसको क्या करना होगा कि अगर हमने उसको काटा भी है तो हमें उसके ऊपर या तो नींबू छिड़क दें ताकि वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उसकी सतह पर ना आए जिससे कि वो ब्राउन ना हो। तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ताकि जो पोषण जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
1: जी मैम, जैसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि खाद्य पदार्थों को अगर सुरक्षित रखने के उपाय के बारे में बात करें तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे शुरू में ही बताया था सुरक्षा का संबंध है कि उसमें कोई भी भौतिक रासायनिक या कोई भी जीव कीटाणु जीवाणु उसमें ना हो, तो हमको सब यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी जो इनका सोर्स है हमको उस सोर्स को कट करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज इसमें ना आए। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा कि दूध उबालते हैं जब हम तो उससे उसमें जो भी जीवाणु कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो दो तरीके से हमें दूध देते हैं, एक होता है पाश्चराइज्ड और एक होता है स्टरलाइज्ड। तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपको कम दिनों के लिए कोई चीज चलानी है तो आपने उसको उतना ही तापमान दिया कि वो दो दिन तक सुरक्षित रहेगा पाश्चराइज्ड दूध जो है, और जब हम स्टरलाइज्ड की बात करते हैं तो हमने उसमें कोई भी जीव जो है वो सबको खत्म कर दिया तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है जो उसका शेल्फ जीवन है वो काफी बढ़ जाता है, 6 महीने या उससे अधिक।
2: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए और आप कहां से बोल रहे हैं?
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: जी अपना सवाल पूछे।
3: जैसे हम लोग सब्जी लाते हैं 3 दिन 4 दिन के लिए स्टोर करते हैं तो उसको किस ढंग से सही ढंग से रखें?
2: जी
0: आपका सवाल मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं ना इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कोविड के समय से। जब कोविड था तो हम सबको एक भय था कि कहीं से जो कोविड का वायरस है वो हमारे घरों में ना आ जाए, तो हमने क्या करना शुरू किया कि जो भी हमारे घर में बाहर से सामान आता था भले ही वो सब्जी हो या फ्रूट्स हो या कोई पैकेज्ड फूड ही क्यों ना हो, तो हम क्या करते थे कि उनको वॉश करते थे, या तो हम लाल दवाई जिसे कहते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं उससे वॉश करते थे, या हम उसको गर्म पानी में हल्का नमक डालकर उसको गर्म पानी से धुलते थे। तो अगर आप ये वाली चीजों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपके अगर शेल्फ लाइफ बढ़ाने का तो सब्जियों का 3-4 दिन का ये है कि आप अगर फ्रिज में भी रख लेते हैं बिना धुले भी तो भी आपकी वो सुरक्षित है, पर उससे थोड़ा सा कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने जो बाहर से आप जीवाणु कीटाणु अपने साथ लाए या मिट्टी के साथ जो भी चीजें आई उनको आपने खत्म नहीं किया। तो मेरा मानना यह है कि बाहर से जो भी चीज हमारे घरों में आ रही है, जो मुझे लगता है कि हमारी दादी नानी या पुरानी जनरेशन जो फॉलो करते थे वो भी हम फॉलो कर सकते हैं कि हमने उनको अच्छे से धुला, धुलकर थोड़ा सुखा दिया और सुखाने के बाद फिर जिसको जिस टेम्परेचर पर जिस तापमान पर स्टोर करना चाहिए उस तापमान पर स्टोर कर देना चाहिए, तो शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल, और लगातार हम अपने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जान रहे हैं और किस तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए, और कोई भी खाद्य पदार्थ हो तो उसके लिए एक स्वच्छता बहुत अहम भूमिका निभाती है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: स्वच्छता का तो देखिए खाद्य पदार्थ के साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है खाद्य जो भी क्लीनलीनेस है। तो अगर हम बात करें कि हमें घर में कैसे ये क्लीनलीनेस बनाए रखनी है तो आप आपको दो तीन अगर अलग अलग प्रकार की चीजें हैं तो आप उनको अलग अलग प्रसंस्करण करें उनका, उनको मिक्स ना करें। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा ही उदाहरण देती हूँ कि अगर आपने एक चाकू से कोई बाहर से आई हुई सब्जियां काटी और धुलकर नहीं काटी, कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जो धुलकर काटी जाती हैं, कुछ होती हैं कि जिनको हम बिना धुले काटते हैं, हालांकि ये करना चाहिए कि आप पहले धुलें और उसके बाद आप काटें, जनरल प्रोसेस यही अपनाना चाहिए। बट अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और फिर अगर मान लीजिए इसके बाद आपने सलाद काट दिया और चाकू नहीं धुला या गलती से नहीं धुला या आप बहुत जल्दी में थे इसलिए आप नहीं धुला, कई कारण हो सकते हैं उसके, तो इससे क्या होगा कि जो आपने बाद में फल काटे या सलाद काटा तो उससे आपको कंटामिनेशन हो जाएगा और उससे आपके शरीर में भी जो जीव है, कीटाणु जीवाणु है, वो प्रवेश कर जाएंगे और फिर आप हो सकता है उससे बीमार भी पड़ जाए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी शादी ब्याह या किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी जाते हैं तो जितना अवॉइड कर पाएं हमें सलाद को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सलाद में बहुत ज्यादा कंटामिनेशन का चांस रहता है।
2: बिल्कुल। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें और कहां से आप बात कर रहे हैं।
4: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी अपना सवाल पूछें।
4: हाँ, पहले तो आप तीनों साहिबान को गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून।
4: कि मैं कुछ चीजों के नाम लूंगा, आप इनकी गुणवत्ता सुरक्षा पर प्रकाश डालें कि कैसे हम देख रखाव करें।
2: जी,
4: एक है गुड़ जी। और एक है चावल, आटा, काली मसर और आपके टमाटर और दही हो गई। तो दही और खास तौर से जो गुड़ होता है, गुड़ दिनों भीग जाता है, हम दुकान से भी लेते हैं, वो भी रख रखाव नहीं कर पाते, तो इसकी केयर हम कैसे करें जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
2: जी बहुत ही बढ़िया सवाल जी डॉक्टर साहब। सभी को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि गुड़ हम अक्सर सर्दियों में लेकर आते हैं और हम लोग स्टोर भी कर लेते हैं और उसमें फंगस भी लग जाती है, एक अहम सवाल। और उसके बाद हम दही की बात करते हैं कि कुछ दिन रखते तो उस पर एक लेयर फंजाई की भी आ जाती है, तो किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसकी सुरक्षा कर सकते हैं।
0: देखिए, ये जो भी आपने बात की, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर खाद्य पदार्थ की अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि वो शेल्फ पर स्टेबल रहे, तो हर खाद्य पदार्थ की अलग अलग लाइफ होती है। दूसरी बात है, हर खाद्य पदार्थ का एक तापमान होता है जिस पर वो सुरक्षित रहेगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दही का जो तापमान है वो गुड़ के जैसा होगा, या दही हमें जिस परिस्थिति में रखना है उसी में ही हमें चावल, आटा या अन्य चीजें रखनी है। तो पहले जैसे दही के बारे में ही बात करूं, तो दही का जो टेम्परेचर है, तापमान है जिस पर उसको स्टोर करना है, वो है फ्रिज के अंदर, मतलब मान लीजिए 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पर। बट फिर भी आप दही से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 15 या 20 दिन चल जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 15-20 दिन नहीं है, वो अगर चलेगा तो हद से हद 1 हफ्ता या 10 दिन। और उसमें भी आपको ये ध्यान देना होगा कि जो क्रॉस कंटामिनेशन है वो ना हो। मान लीजिए आपने दही अगर रखा है और दही के साथ, दही को आपने किसी खुले हुए बर्तन में रखा और उसके साथ साथ आपने कोई एक ऐसी चीज रख दी जिससे कि उसमें कंटामिनेशन आ जाए, तो जो दही है वो निश्चित तौर पर खराब होगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो किस तापमान पर आपको उसको स्टोर करना है, दूसरा है कि वो उसकी एक निश्चित लाइफ है, तो आप उसे उम्मीद ये ना करें कि वो अपनी निश्चित लाइफ के आगे जाकर भी वो उसी तरीके की जो गुणवत्ता है, स्वाद, सुगंध, टेस्ट या फिर उसकी पोषक तत्व, वो सब वो दे पाएगा। फिर जो बात कर रहे हैं हम चावल या आटे की, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इनको स्टोर कर रहे हैं तो हमें एयर टाइट बर्तन में ही इनको स्टोर करना है, ये बहुत जरूरी है। और गुड़ की जो बात करी, गुड़ में भी जैसे अगर ज्यादा गर्मी होगी तो गुड़ पिघल जाता है, तो आपको वो क्योंकि घरों में हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता कि हम हर चीज को फ्रिज में रख पाएं या हर चीज को हम एसी में रख पाएं, तो इस वजह से ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बट इसका एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रख पाएं और कोशिश करें कि आजकल जैसे ना एक और सेफ्टी से रिलेटेड एक और इशू आ रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स का, तो जितना आप अवॉइड कर पाए प्लास्टिक अवॉइड करिए, या तो आप स्टील के बर्तनों में कोई भी चीजें स्टोर करिए या फिर आप कांच की, जो पहले के जमाने में होता था, जितना हो सके उतना कोशिश करिए प्लास्टिक अवॉइड करने के लिए, तो आपको वो सब कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स, वो सब से भी आप बच सकते हैं।
2: बिल्कुल मैम, और लगातार

0: इसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि बहुत सारी चीजें पेरिशेबल होती है और कुछ नॉन पेरिशेबल होती है, तो उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जाए?
1: यही जो अभी हम बात कर रहे थे दही की, या हम दूध की बात करते हैं, तो ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। तो पेरिशेबल आइटम का मतलब ये हो गया, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं तो ये पेरिशेबल आइटम है, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होगी, पर अगर आप इनकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, इनका प्रसंस्करण कर देते हैं, तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो एक तो ये है कि अगर आपको पेरिशेबल आइटम्स हैं, अगर आपको उसी ही जिस तरीके से नेचर ने हमें दिया है, उसी तरीके से प्रकृति के दिए हुए तरीके से ही अगर हमें उसको रखना है, तो उसकी लाइफ लिमिटेड रहेगी। और जो मैंने अभी बताया कि तापमान और जिस कंडीशन में हमें उनको रखना है, वो हम सही रखें, वही रखें, निश्चित जो भी कंडीशंस हैं, तो कम रहेगी। बट अगर आपने इसका प्रसंस्करण कर दिया, जैसे अगर हम दूध की ही बात करें, तो दूध से अगर आपने खोआ बना दिया, लाइफ बढ़ जाएगी। आपने पनीर बना दिया, थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी। तो या अगर आपने जो अब UHT ट्रीटेड मिल्क आ रहा है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, मतलब उसमें क्या होता है, 135 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक टेम्परेचर हम तापमान देते हैं, 1-2 सेकंड्स के लिए बस, तो उससे उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस चीज में रुचि रख रहे हैं, क्या हमको जो प्रकृति ने जिस फॉर्म में हमें दिया है उसी फॉर्म में हमें रखना है उसको, तो उसकी निश्चित तौर पर कम रहेगी शेल्फ लाइफ। अगर हमें उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाकर भी करना है, या मान लीजिए कोई चीज हमें एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर पेरिशेबल भी है आइटम, तो भी हमें उसकी लाइफ बढ़ानी है। तो अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन सब की बात करते हैं, तो पैकेजिंग या उस एंगल से फिर हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। और जो नॉन पेरिशेबल आइटम है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बशर्ते कि आप तापमान और उसकी परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में उसको स्टोर करना है, वो आप मेंटेन करें।
2: जी मैम, एक सवाल और मैं किसान भाइयों की तरफ से पूछना चाहूंगा कि खाद्य पदार्थों की जो पैकेजिंग है, वो कैसे गुणवत्ता को प्रभावित करती है?
1: खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग गुणवत्ता को पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी प्रभावित करती है। कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप पैकिंग कर लेते हैं, तो पैकिंग करने की वजह से क्या होगा कि शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। पर दूसरी ओर कि अगर हम ज्यादा प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, तो खाद्य पदार्थ में नैनो या माइक्रो प्लास्टिक के भी अब बहुत ज्यादा अवशेष ये सब पाए जा रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि भाई आपने शेल्फ लाइफ बढ़ा ली। तो अब आपको ये देखना है कि आप किस कंडीशन में पैकिंग कर रहे हैं। इसलिए आजकल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी आ रही है, कि जिसका एक तो पर्यावरण पर भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और फूड पर भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े।
2: जी मैम, एक और सवाल, जैसे कि खाद्य पदार्थों की समाप्ति तिथि जो है, उसकी जांच करना कितना आवश्यक है?
1: ये बहुत जरूरी है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पाश्चराइज मिल्क की शेल्फ लाइफ होती है 2 दिन,
2: जी,
1: ठीक है। तो आपको ये पैकेट पर देखना होगा जब भी आप खरीद कर आ रहे हैं आइटम, कि अगर 2 दिन है, तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही उसको कंज्यूम करना है। जैसे ही वो 2 दिन का तीसरा दिन होगा, बल्कि मैं जो श्रोतागण है उनसे ये भी कहूंगी कि ये एक ट्राई भी कर सकते हैं, कि तीसरे दिन आप दूध को उबालिए, तो आप पाएंगे कि वो दूध फट गया है।
2: बिल्कुल।
1: और वो इसलिए फट जाता है क्योंकि उसकी लाइफ जो हमने निर्धारित करी है वो 2 दिन है। 2 दिन के बाद उसमें जो जीवाणु है वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर उसमें एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड बनने की वजह से वो कर्डल हो जाता है।
2: जी।
1: तो हमेशा ये तो आपको एक गांठ मारकर रख लेनी चाहिए बात, कि कभी भी आप कोई भी खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, भले ही वो कोई भी हो, तो आपको उसकी शेल्फ लाइफ देखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो एंड डेट उसकी कंजम्पशन की क्या है।
0: बिल्कुल। और ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे खाद्य पदार्थ है, हमारे जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है, तो हमें उसे किस प्रकार से कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद पहुंचे।
1: ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हमें कोई भी खाद्य पदार्थ किस तरीके से कंज्यूम करना है, तो हम उसकी गुणवत्ता को मेंटेन कर सकते हैं, और जो उसमें पोषक तत्व हैं, वो हम सारे के सारे पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कहीं चर्चा हो रही थी कि नेचर ने, प्रकृति ने हमें केला दिया है, तो केले को हम सिंपल छील कर खा सकते हैं, या हमें कोई ऑरेंज या अलग फ्रूट्स दिए हैं। बट अब हमने क्या कर दिया कि हमने प्रकृति का एक तरीके से उसके बियॉन्ड जाकर हम उसकी कटिंग कर और उसको अलग से स्टोर करके पैकेजिंग भी हम

0: बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से हम अब प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने लगे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो आपने उसको काटने के बाद जो भी उसमें एंजाइम है वो एक्टिवेट वगैरह हो जाते हैं, वो आपने एक चीज कर दी, और दूसरा आपने अगर प्लास्टिक में आप उसको पैकिंग कर रहे हैं तो आपने एक और पर्यावरण के लिए एक खतरा खड़ा कर दिया। तो इसलिए तो जरूरी है कि आप किस कंडीशन में कोई भी प्रोडक्ट को आप गुणवत्ता रहते हुए बना रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए सब्जियों की भी बात करें तो आपको उसको उचित तापमान पर, हर सब्जी बनाने का या हर फल फ्रूट का अलग अलग टेम्परेचर है, तापमान है जिस पर उसको बनाना चाहिए, तो आपको वो मेंटेन करना चाहिए। बाकी एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स, ये अगर हम हमारी डाइट में इंक्लूड करें तो हमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। तीसरा एक और बात है कि जो तिरंगा भोजन है
1: जी।
0: तिरंगा भोजन का प्रयोग हमें डाइट में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, ताकि उनको सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, भले ही प्रोटीन हो गया या उसको एनर्जी या प्रोटेक्शन विटामिन्स मिनरल्स, वो सब चीजें डाइट से मिल जाएंगी, तो आपको किसी मेडिसिन के ऊपर या किसी फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी कम निर्भर रहना पड़ेगा।
2: बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि जैसे हम अब केले से हम केले के चिप्स भी बनाते हैं, पैकेजिंग फूड के ऊपर हम आ चुके हैं, और जिससे कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंचता है, तो हमें किस तरीके से इसका सही इस्तेमाल करके इसका फायदा उठाना चाहिए?
0: ये तो ठीक है, क्योंकि देखिए हमें डाइट में ना डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए। हम जो इंसान है हम एक चीज से बोर हो जाएंगे अगर हम सिर्फ केले ही केले खाते रहे, तो ये जरूरी है कि आप केले से चिप्स बनाएं, आप केले से आजकल स्प्रेड भी आता है चॉकलेट और केला डालकर। मान लीजिए कोई बच्चा है जो केला नहीं खाना पसंद कर रहा है, तो इस हिसाब से दिस इज गुड भी है और उसकी आप शेल्फ लाइफ भी बढ़ा रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। या मान लीजिए कि कोई जैसे केरला में केलों के चिप्स या स्नैक्स ये ज्यादा प्रचलित हैं, तो कोई अगर मान लीजिए बच्चा केरला से उठकर नॉर्थ इंडिया में आता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए अच्छा है कि उसको वहां की मिट्टी की एक चीज उसको मिल रही है, तो शेल्फ लाइफ भी बढ़ रही है और बाकियों का जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वो भी हो रहा है, गुणवत्ता भी बढ़ रही है।
2: बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछो, और आप कहां से बात कर रहे हैं?
3: मेरा नाम शशि भूषण है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ
2: जी।
3: हेलो
2: हेलो, अपना सवाल बताएं।
3: सवाल मैडम मेरा ये है कि दिल्ली के एक बहुत बड़े कंपनी से हमने रसगुल्ला खरीदा 1 किलो, जिससे जो एक्सपायरी डेट था 1 साल का था
2: जी।
3: उसकी सेल्फ लाइफ भी 3 महीने बचा हुआ था, हमने ले लिया, उसके बाद जब उसको पैकिंग खोले तो रसगुल्ला बिल्कुल खराब था, तो उसके बारे में बताएं कि जब उसकी डेट 1 साल थी तो फिर वो खराब कैसे हो गया
2: जी?
0: देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने बताया कि एक तापमान होना चाहिए जिस पर कोई भी चीज स्टोर करनी है, तो ये जो आप रसगुल्ले की बात कर रहे हैं, जब कंपनी ने बनाकर इसको सप्लाई किया होलसेल में, होलसेल से ये रिटेल में गया, रिटेल से ये आपके पास आया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो या तो तापमान टूटा, वो जो एक चेन है तापमान मेंटेन करने की वो टूटी, या ये भी हो सकता है कि जो आपने अगर कैन में लिया होगा, क्योंकि कैंड में ही आता है जहां तक मैं समझ पा रही हूं ये, तो हो सकता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं से छेद हो रखा हो, तो वो जो कंडीशन अंदर की थी एनारोबिक कंडीशन थी जिसमें हवा नहीं प्रवेश कर सकती है, उसमें हो सकता है कि हवा ने प्रवेश कर लिया हो। तो इन कारणों से क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ कंपनी ने दे रखी है उससे कम लाइफ पर भी कोई चीज खराब हो जाती है। पर ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि जो कैन है, कैन पर एक कस्टमर केयर या फीडबैक का एक नंबर या ईमेल आईडी दिया होता है आपको, जैसे आपने उसकी तुरंत फोटो खींचकर आप वहां अपडेट कर सकते हैं, तो जो भी उचित होगा वो आपके लिए किया जाएगा। तो ये उपभोक्ता फोरम जो है ये बहुत सक्रिय हो गया है अब हमारे देश में, तो ये बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और मैम हम लोग उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, तो खाद्य सुरक्षा में उपभोक्ताओं की क्या भूमिका है?
0: खाद्य सुरक्षा में उपभोक्ताओं की ही भूमिका है, क्योंकि अल्टीमेटली वही कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, और जो कंपनीज बना भी रही हैं वो भी उस हिसाब से ही टारगेट कर रही हैं कि उनका कितना उपभोक्ता, कितना उनके कस्टमर्स हैं, मान लीजिए कि छोटे कस्टमर्स हैं या छोटी एज के कस्टमर्स हैं, विमेन हैं या मिडिल एज हैं या एल्डरली पीपल हैं, तो उनके अनुसार ही आजकल जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिसको बोलते हैं

0: एक स्पेशल फूड की इस पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो कस्टमर्स की बहुत ज्यादा भूमिका है
1: जी। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा मैम कि भोजन के दूषित होने में मुख्य कारण क्या है? जैसे एक अभी बात आई थी कि तापमान का चैन कहीं ना कहीं टूट गया, तो और इसके अलावे क्या कारण हो सकते हैं कि भोजन दूषित हो जाए?
0: एक तो तापमान सबसे जरूरी है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कैन फूड में जो कंडीशन होती है उसमें हवा बिल्कुल नहीं होती, ऑक्सीजन जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, तो अगर वो ऑक्सीजन जरा भी चली गई तो वो आपने कहीं ना कहीं कंडीशंस दे दी कि उसमें जीवाणु कीटाणु पैदा हो जाएंगे और वो फिर फूड को खाएंगे तो फिर फूड में भी चेंजेस आएंगे
1: जी।
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट है तापमान, तापमान के अलावा हवा जो उसमें है वो, और एक आरएच भी इम्पोर्टेंट है। आरएच होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में ब्रेड भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जो कि अब इस तापमान में इतनी ज्यादा खराब नहीं होगी। तो ये तीनों चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है कि टेम्परेचर, तापमान हो गया, हवा हो गई और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। बाकी पैकेजिंग या कोई फूड है जो हमने पैकिंग करके रखा है अच्छे से, कोई है जो हमने हवा में ऐसे ही छोड़ रखा है, तो इन सब चीजों का बहुत महत्व है जब हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षित भी रहे, गुणवत्तापूर्ण भी रहे और उसमें कोई दूषित चीजें ना प्रवेश करें।
1: जी
2: बिल्कुल। और मैम ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कई बार अगर हम किसानों की बात करें, फसल अच्छी हो जाती है, अगर टमाटरों की जैसे कि बात कर रहे थे कि ज्यादा फसल हो गई तो उसका हम अन्य पदार्थों की तरह हम यूज करते हैं, हम उसको प्रोसेसिंग करके उसकी सॉस बना लेते हैं, उसको अब आजकल पाउडर की फॉर्म में भी कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर हम घर पर भी अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो किस तरीके से हमें उसे स्टोर करना चाहिए?
0: ये जो आप बात कर रही हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको सुरक्षित रखें, मतलब कि आपको अगर हम टमाटर की ही बात करें तो आप टमाटर आपके अच्छे से धुले होने चाहिए, जो इस पर काम कर रहा है उनके हाथ पूरा अच्छे से उन्हें धोकर स्टरलाइज कर फिर उनको जो बर्तन वो यूज कर रहे हैं बनाने के लिए वो सब स्टरलाइज होने चाहिए, अच्छे से साफ सुथरे धुलकर फिर सूखे हुए होने चाहिए। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग तो अब छोटे स्तर पर बल्कि अपने घर के ही स्तर पर चीजें बनाकर और बेच भी रहे हैं, तो बस यही है कि अगर आप ये वाला भी कार्य शुरू करते हैं कि अगर आप खुद भी बनाकर बेचते हैं तो आपको एक मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए भी ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हुए फिर चीजें करें। और जो मैंने छोटी छोटी बातें कही कि आप अगर आप चाकू यूज कर रहे हैं या अगर आप श्रेडर कद्दूकस यूज कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, मिक्सी यूज कर रहे हैं, तो आपको हर चीज साफ सुथरे तरीके से धुलना होगा, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो उसका भी ध्यान रखना होगा, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल। और बहुत ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है, मगर उससे पहले ये भी जरूर हम जो हमारे जितने भी लिसनर हैं वो जानना चाहेंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं बस ये संदेश देना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, खाद्य की गुणवत्ता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं, दोनों के दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर आप सुरक्षा की बात करें तो आपको साफ सफाई उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, गुणवत्ता बनाए रखने की बात करें तो भी साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको किस तापमान या किस कंडीशन में, पूरी की पूरी कंडीशंस की बात करें अब हम, तो किस कंडीशन में आपको उसका प्रसंस्करण करना है, फिर आपको उसको पैकिंग करना है, फिर आपको उसको स्टोर करना है। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जितनी जल्दी पका हुआ खाना जितनी जल्दी कंज्यूम कर लें वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा ना करें कि सुबह का दोपहर में खा रहे हैं, दोपहर का शाम, शाम का अगली सुबह खा रहे हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ये प्रचलन, तो हमें कहीं ना कहीं इस पर भी रोकथाम करनी चाहिए अगर हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, और जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और फिर आप रेस में भी आगे दौड़ पाएंगे, कौर से ही दौड़ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नीलम उपाध्याय जी, आप स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर आपने दी, तो निश्चित तौर से जो हमारे लिसनर हैं, श्रोता हैं, वो लाभान्वित होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: बिल्कुल, और आज का जो विषय था आप सभी ने आधे घंटे तक किस पर चर्चा करी, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा रखने के उपाय जाने और किस तरीके से उसे हमें अपनी जीवन शैली में अपनाना है। और आज का जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं वो है शिवनंदन लाल और प्रस्तुति है तुषार पराशर। मैं हूं मंजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौतम कुमार झा का नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथिनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि बार बार नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी और उपभोक्ता हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:11 हुए हैं और आप हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है मन भावन। मन भावन कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों को आप तक पहुंचाने का। जी हां, फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हम तक ईमेल के जरिए भेजकर। ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। स्पेल आउट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। ये है मनभावन और मनभावन में आपके साथ मैं हूँ आज नईम अख्तर, आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाने के लिए। और इसकी शुरुआत हम आज पहले ही गीत से करने वाले हैं। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हवस का, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत की। तो आप सबकी पसंद का ये गीत हम सुना रहे हैं अपने सभी श्रोताओं के लिए और सभी श्रोताओं से गुजारिश कर रहे हैं अपनी पसंद का गीत हम तक भेजने के लिए। सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड।

0: कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो।
1: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
2: मेरा दिल।
1: क्या?

चटके हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:23:15 हुए हैं और मन भावन कार्यक्रम के लिए आज तो हम यही कहेंगे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले से ही आने शुरू हो गए थे आपके मैसेजेस, ईमेल्स, और ये ईमेल्स जो आ रहे हैं उनके उनमें आपकी पसंद हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आखिर तक करते रहेंगे। लेकिन एक बात से हम अपने बहुत सारे श्रोताओं से नाराज हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मैसेजेस अभी तक हम तक आए हैं उनमें ज्यादातर मैसेजेस में ये लिखा है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किसी भी गीत में हमारी पसंद शामिल कर लीजिए। तो दोस्त ऐसे मत लिखिया कीजिए ना, देखिए अच्छा नहीं लगता हम बार बार आपको ये बात कहें कि आप अपनी पसंद लिख के भेजिए। कोई भी गीत तो हम किसी भी कार्यक्रम में सुनवाते ही है ना, ये सिर्फ आपकी पसंद का कार्यक्रम है, अपनी पसंद लिख कर भेजिए ना, ताकि आपकी पसंद हम आपको भी सुनवाएं, अपने बाकी श्रोताओं को भी सुनवाएं और खुद भी सुने। तो प्लीज बाकी सभी श्रोताओं से जो इस तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है, ऐसे मैसेजेस मत लिख कर भेजिए। और अभी जो गीत आपने सुना था फिल्म सावन भादो का, रेखा की पहली मूवी, मोहम्मद रफी की आवाज में, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, तो ये गीत सुनने की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम ने। आप सभी की फरमाइश हमने आप तक पहुंचा दी है। अगला गीत हम जिन श्रोता की पसंद का सुनवा रहे हैं वो है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, इन सभी ने हमें लिखकर भेजा है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और ये सब उजाला फिल्म का जो गीत सुनना चाहते हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपना ईमेल आईडी अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो सुनिए ये गीत उजाला फिल्म का।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

3:37, 30 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। कार्यक्रम है मन भावन और कभी रात दिन हम दूर थे दिन रात का अब साथ है। फिल्म आमने सामने फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश हम तक ईमेल की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। आप सभी की पसंद का गीत तो आप तक पहुंच ही गया है। बाकी हमारे वो सभी श्रोता जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं उनके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर हमें आप ईमेल कीजिए। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद हमारे बहुत सारे साथी अभी तक वही लिखकर भेज रहे हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किसी भी गीत में हमारी फरमाइश शामिल कर लीजिए। क्यों दोस्त, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये रिक्वेस्ट शो है, आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। अपनी पसंद लिख के भेजिए और फिर देखिए हम तक अगर आपकी पसंद पहुंचती है और हमारे पास वो गीत हुआ भी तो हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि देखिए एक तो मुश्किल से नंबर आता है, आपका ईमेल हम खोलें उसके अंदर फिर आप ऐसा कुछ लिख के भेजें जो हम मतलब पहले हम अगर ये सोचेंगे कि हम कौन सा गीत सुनवाएं तो इससे अच्छा हम इतनी देर में तो दूसरा किसी श्रोता का खोल करके उनकी पसंद पहुंचा देंगे। तो आप अपना टाइम और अपनी मेहनत खुद ही तो एक तरह से देखा जाए तो वेस्ट कर रहे हैं ना। तो मत कीजिए, अपनी पसंद हम तक पहुंचाइए और लिख के भेजिए कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी 100% कि हम आप तक पहुंचाएं आपकी पसंद का गीत। खैर अभी जो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो है ये क्या है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इन सभी ने लिखकर भेजा है संगम फिल्म का ये गीत। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना और साथ ही

लिख कर भेजा है, मेरी पसंद वाला गीत आपको भी अवश्य पसंद आएगा। बिल्कुल दोस्त, आप सभी की पसंद के गीत हमें बहुत बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आप हैं ना हमारे एफएम गोल्ड के ही तो श्रोता हैं। आप सुन रहे हैं मन भावन नई मख्तक के साथ, सुनते रहिए और अपनी पसंद ईमेल करते रहिए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:47 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में अभी जो गीत आपने सुना, उस गीत की फरमाइश हम तक भेजी थी गौरी शंकर वर्मा ने नांगलोई से। ये फिल्म थी नमस्ते जी। जी आपको भी नमस्ते। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन सीरियस नोट पर हम सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि आप भले ही नमस्ते करें या ना करें, आदाब करें ना करें, लेकिन अपनी पसंद का गीत हम तक ईमेल करके जरूर पहुंचाएं। और ईमेल करने के लिए आप जानते ही हैं तरीका क्या है। ईमेल आईडी हमारी fmgoldairdelhi@gmail.com है। इस ईमेल आईडी पर अपनी पसंद का गीत हम तक ईमेल कीजिए और सुनिए मन भावन में। अगला गीत हमारे जिन श्रोता का है, की पसंद का है, फरमाइश का है, वो है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। इन सभी ने हमको भेजी है अपनी फरमाइश। जैन मंदिर गली से, कुरावली नगर से। तो आप सभी की पसंद का गीत ये लीजिए।

कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरशबद सिंह राहुल ने ये गीत सुनना चाहा था भीगी पिलकें फिल्म का और हमारे दोस्त अभी तक अपनी ही धुन में हैं। एक दोस्त ने लिखकर भेजा जरा एक नजर हमारे मैसेज पर भी डाल दें इनायत होगी शुक्रिया जमशेदपुर से। देखिए कितनी दूर से इन्होंने मैसेज भेजा है पर लेकिन ये नहीं लिखकर भेजा कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। और ऐसे ही एक और मैसेज हमारे पास आया है ये भी बहुत दूर से आया है महाराष्ट्र कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं कि कोई मोहम्मद रफी साहब का गीत सुनवा दीजिए। जी जनाब अभी तक हमने कार्यक्रम में कम से कम 8 गीत सुनवाए हैं और 8 में से 5 गीत तो मोहम्मद रफी साहब के ही हैं। आप अपनी पसंद का गीत लिखकर भेजते ना और ये जो आखिरी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज वो हम तक फरमाइश भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन ने इन सभी ने ये घर फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है। आप सभी भी इसका लुत्फ लीजिए और नईम अख्तर को दीजिए मनभावन से इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों पर सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने, नवाचार को समर्थन देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखलाओं की गहराई बढ़ाने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने की योजना के अंतर्गत 5 संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। औषधि विभाग ने बताया कि आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना और चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना MDCSS नामक 2 उप योजनाओं के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रस्ताव अगले 23 अगस्त या उससे पहले विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान की कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल

4:55 100.1 MHz पर आकाशवाणी FM गोल्ड और लीजिए नईम अख्तर फिर से एक बार हाजिर है आपकी खिदमत में आपके लिए लेकर कुछ और फिल्मी नगमे। तो आइए आगाज करते हैं, सुनते हैं कुछ गीतों को और आनंद लेते हैं संगीत का।

0: qualifications, experience requirements and application forms available on the official website. Kindly do refer to www.nepa.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। मुंबई पत्तन प्राधिकरण में प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले उपनिदेशक वर्ग एक के एक पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी विवरण मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर उपलब्ध हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। वेबसाइट का पता फिर से सुन लीजिए, www.mumbaiport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आमंत्रित कर रहा है TGT समाज विज्ञान पद के लिए आवेदन। पद नियमित है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.sainikschoolkorukonda.org। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट Grade 1, टीचिंग असिस्टेंट Grade 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन रजिस्ट्रार का एक पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना चाहता है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार पात्रता की नियम और शर्तों, वेतनमान, आरक्षण और अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in और आवेदन कर सकते हैं। ईमेल का पता है dsadmin-cic@cic.nic.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, वैज्ञानिक बी, सी और डी वर्ग, प्रबंधक प्रशासन, हिंदी अधिकारी, कार्यकारी सहायक, हिंदी अनुवादक और एसोसिएट प्रशासन। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.c.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो करिश्मा, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अस ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is, of course, my co-host Karishma Rai. Well, listeners, he's celebrated as a Bengal tiger and a historical luminary because of three primary reasons. Firstly, because he was known for his fierce academic integrity. Secondly, he had an uncompromising stance against the British colonial authorities. And lastly, for his unmatched visionary leadership in transforming the University of Calcutta into a world-class center for indigenous research and higher learning. Yes, he's the man known for his courage and strong character. He is the pride and the tiger of Bengal. Yes, he's none other than Sir Ashutosh Mukherjee. And today we are celebrating his birth anniversary. And we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening.
0: हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे को की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली.
1: सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट हियरिंग ऑन पीआईएल सीकिंग कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इनटू अलेज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन राम मंदिर डोनेशंस केस.
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी.
1: Government introduces improvement notice mechanism to promote ease of doing business.
0: दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू.
1: And in FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in the first knockout match at Los Angeles. Yes, now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Camera Day and National Statistics Day. Well, Karishma, Roger Kingston very famously said, "A camera is a safe button for the mind's eye." Yes, and today we are celebrating something that helps us freeze our happiest moments forever, National Camera Day.
0: बिल्कुल, और श्रोताओं, चाहे कोई पारिवारिक समारोह हो, जन्मदिन की पार्टी हो, स्कूल का कोई कार्यक्रम हो या दोस्तों के साथ ली गई कोई आम सी सेल्फी, तस्वीरें खींचना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है.
1: एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू. एंड टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन हैज अ कैमरा राइट इन द पॉकेट, द स्मार्टफोन. बट डिड यू नो दैट ओवर 100 इयर्स अगो व्हेन द फर्स्ट कैमरा वाज इन्वेंटेड, पीपल वर अमेज्ड बिकॉज दे कुड फाइनली प्रिजर्व मेमोरीज फॉरएवर.
0: और यह सफर कितना शानदार रहा है, कागज पर छपी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से लेकर एकदम साफ डिजिटल इमेज और तुरंत ली जाने वाली सेल्फी तक कैमरों में जबरदस्त बदलाव आए हैं.
1: एग्जैक्टली करिश्मा, दैट्स व्हाई एवरी ईयर ऑन June 29th कैमरा लवर्स सेलिब्रेट नेशनल कैमरा डे.
0: तो कैमरा सिर्फ तस्वीरें ही नहीं लेता, ये उन भावनाओं, कहानियों और यादों को भी कैद करता है जिन्हें हम जीवन भर संजो कर रखते हैं.
1: एंड हियर्स अ फन फैक्ट. The word photography comes from the Greek words meaning drawing with light. Isn't that beautiful, Karishma?
0: बिल्कुल, और हम सभी को तस्वीरें खींचना तो पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे की कहानी असल में कहां से शुरू हुई?
1: Yes, that's a great question. We use cameras every day, but the journey of this amazing invention goes back hundreds of years. So are you ready for a quick trip through history, listeners?
0: बिल्कुल, और इसकी कहानी आधुनिक फोटोग्राफी के बहुत पहले शुरू हुई थी. कैमरे जैसे सबसे पहला उपकरण अरब विद्वान इब्न अल हथम ने बनाया था और इसे कैमरा ऑब्स्कुरा कहा जाता था.
1: यस, कैमरा ऑब्स्कुरा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम, बट व्हाट एग्जैक्टली डिड इट डू, करिश्मा?
0: खैर, आज के कैमरों की तरह ये तस्वीरें नहीं खींचती.

0: था, बल्कि इसके बजाय इसने दिखाया कि कैसे रोशनी किसी सपाट सतह पर तस्वीर बना सकती है। यह रोशनी से जुड़ी एक प्राकृतिक घटना पर आधारित था और आधुनिक कैमरों की नींव बना।
1: सो करिश्मा, इन अ वे इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फोटोग्राफी। That's fascinating indeed.
0: बिल्कुल। और फिर एक और अहम पड़ाव आया 1816 में। फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ नाइसफरोफ ने सबसे शुरुआती कैमरों में एक बनाया जो फोटोग्राफ को सुरक्षित रखने में सक्षम था।
1: Yes, and in 1829, Alexander Walcott introduced a more advanced camera that produced photographs which didn't fade as easily.
0: और उस सुधार ने बेहतर फोटोग्राफी का रास्ता साफ किया जिसने आगे चलकर आज हमें जो हाई क्वालिटी वाले कैमरे और स्मार्टफोन हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे बन पाए।
1: फ्रॉम द सिंपल कैमरा ऑब्स्कुरा टू टुडेज पावरफुल डिजिटल कैमरास, वन थिंग इज रिमेन द सेम, द डिजायर टू प्रिजर्व मेमोरीज।
0: और भारतीय सिनेमा हमेशा से अपनी शानदार कहानी कहने की कला, संगीत, डांस और भावनाओं के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन हर यादगार सीन के पीछे एक कैमरा होता है जो उसे जादू को कैद करता है। 1930 और 1940 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्मों से लेकर आज की शानदार विजुअल्स वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक कैमरे ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है।
1: एंड इन द अर्ली डेज फिल्म मेकर्स वर्क्ड विद बल्की manually operated cameras that had many limitations. Shooting a film required patience, precision and a great deal of effort. Despite these challenges, legendary classics laid the foundation for the Indian film industry.
0: और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, कैमरे हल्के और ज्यादा भरोसेमंद हो गए और उनमें रंगीन फिल्में शूट करने की क्षमता भी आ गई। इस बदलाव ने भारतीय सिनेमा में जान डाल दी जिससे दर्शक शानदार कॉस्ट्यूम, मनमोहक नजारे और भव्य म्यूजिकल सीक्वेंस का आनंद ले पाए। डायरेक्टर भारत की खूबसूरत जगहों पर शूटिंग कर सकते थे, कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर केरल के बैक वाटर्स और राजस्थान के रेगिस्तान तक।
1: Absolutely, and the digital revolution was another turning point. Digital cameras reduced production costs and allowed filmmakers to review scenes instantly instead of waiting for film to be developed. And this made filmmaking faster, more efficient and more accessible to new directors and independent creators.
0: बिल्कुल। और आजकल भारतीय फिल्मों की शूटिंग एडवांस डिजिटल कैमरों से की जाती है जो 4K और 8K जैसे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। ये कैमरे हर बारीक डिटेल को कैप्चर करते हैं जिससे एक्शन सीन, डांस परफॉर्मेंस और इमोशनल पल ज्यादा असली और शानदार दिखाई देते हैं।
1: एंड मॉडर्न कैमरा टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्रोन्स, गिम्बल्स एंड कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरास, एंड दीज इनोवेशन अलाउ फिल्ममेकर्स टू कैप्चर स्पेक्टेकुलर एरियल views, smooth tracking shots and thrilling action sequences. Whether it's a historical epic, a sports drama or a regional film, today's visuals are more immersive than ever.
0: और कैमरा टेक्नोलॉजी में भी विकास ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने में मदद की है। शानदार सिनेमेटोग्राफी और एडवांस विजुअल इफेक्ट्स की वजह से भारतीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और वे दुनिया भर में दर्शकों तक पहुंच पाई हैं।
1: एवरी क्लिक टेल्स अ स्टोरी, एवरी फोटोग्राफ कैप्चर्स एन इमोशन एंड एवरी मेमोरी बिकम्स टाइमलेस।
0: तो तस्वीरें खींचते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि कैमरे का इतिहास हमें याद दिलाता है कि एक बहुत साधारण सा विचार भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है।
1: ऑन दिस नेशनल कैमरा डे वी पे ट्रिब्यूट टू होमाई वियारावाला, इंडियाज फर्स्ट वुमन फोटो जर्नलिस्ट हुज कैमरा बिकेम अ विटनेस टू हिस्ट्री।
0: और अपनी शानदार तस्वीरों के जरिए उन्होंने हिम्मत, लगन और बारीकियों पर असाधारण नजर के साथ भारत की आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के सफर के अहम पलों को कैद किया।
1: हर लेगेसी रिमाइंड्स अस दैट अ कैमरा इज नॉट जस्ट अ डिवाइस, इट्स अ पावरफुल टूल फॉर प्रिजर्विंग हिस्ट्री, टेलिंग स्टोरीज एंड इंस्पायरिंग जनरेशंस। सो हैप्पी नेशनल कैमरा डे।
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मना रहे हैं जो हर साल 29 जून को मनाया जाता है।
1: दैट्स राइट। एंड डू यू नो व्हाई दिस डे इज सो स्पेशल? इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलानोबिस, फॉन्डली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स।
0: तो सुनने में सांख्यिकी भले ही सिर्फ नंबरों वाला विषय लगे, लेकिन असल में यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर ऐसे असर डालता है जिनका हमें अक्सर पता भी नहीं चलता।
1: एब्सोल्युटली, वेदर इट्स प्लानिंग स्कूल्स, हॉस्पिटल्स,

0: transport, or even understanding population trends. Statistics help governments make informed decisions.
1: और असल में भारत सरकार ने प्रोफेसर महालनोबिस और सांख्यिकी तथा आर्थिक योजना में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया था.
0: एंड दिस अचीवमेंट्स आर ट्रूली रिमार्केबल. ही फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI इन कोलकाता in 1931, which has become one of the world's leading centers for statistics, mathematics and data science.
1: उन्होंने 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई, जिससे परिवारों और देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भरोसेमंद डेटा इकट्ठा करना संभव हो सका.
0: एंड दैट्स नॉट ऑल. एज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन ही इंट्रोड्यूस्ड द फेमस महालनोबिस मॉडल व्हिच फोकस ऑन डेवलपिंग हैवी इंडस्ट्रीज टू स्ट्रेंथन इंडियाज इकोनॉमी.
1: और इसके साथ ही अभिषेक, हमारे श्रोताओं के लिए एक मजेदार सवाल भी है. क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूलों को कैसे पता चलता है कि कितने क्लासरूम बनाए गए हैं या किसी शहर को कितने बसों की जरूरत होती है?
0: द आंसर करिश्मा इज स्टेटिस्टिक्स. Numbers help planners understand people's needs and make better decisions.
1: और प्रोफेसर महालनोबिस ने मशहूर महालनोबिस डिस्टेंस भी विकसित किया था, जो एक सांख्यिकीय तरीका है जो आज भी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और वैज्ञानिक रिसर्च में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है.
0: Yes, and the principal scientific advisor to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, today underlined the growing importance of leveraging data generated through administrative processes for evidence-based policy making and governance. He said this while addressing an event held in New Delhi to mark the 20th Statistics Day. Mr. Mishra underscored Prime Minister Narendra Modi's vision that India must become an expert in data-driven decision making so that policy design and implementation become more accurate.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें याद दिलाता है कि हर अहम फैसले के पीछे सटीक डेटा और सोच समझ कर किया गया विश्लेषण होता है.
0: So the next time you hear numbers in the news, remember they are more than just figures. They tell the story of a nation.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा. परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे.
0: एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम लिसनर्स कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskAIR.
1: और इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Dev Snan Jatra or the Snan Jatra or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra has been observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath temple. We have more from a correspondent.
2: Lakhs of devotees witnessed the sacred Devasnana Purnima of Lord Jagannath at Puri today, marking the ceremonial commencement of this year's Rath Yatra festivities. Amid an atmosphere of profound devotion, Lord Jagannath, Lord Balabhadra, Devi Subhadra and Lord Sudarshan were ceremonially escorted in the traditional Pahandi Bijay procession from the Sanctum Sanctorium to the Snana Mandap, accompanied by the reverberating strains of conch shells, cymbals and temple percussion. In accordance with centuries-old temple tradition, traditions, the deity is ritually bathed with 108 pitchers of sanctified fragrant water drawn from the sacred Sunakua or golden well within the temple precincts. Following the elaborate ablution, the deities were adorned in the distinctive Gajanana or Hathi Vesa. They will now remain in ritual seclusion during the fortnight-long Anasara period before reappearing for the Navajovana Darsana ahead of the annual Rath Yatra scheduled to commence on the 16th of next month. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: बढ़ते आगे बात करते हैं नागपुर की। हाल ही में नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत जीएमआर समूह को औपचारिक हस्तांतरण किया गया। इस पहल को नागपुर और पूरे विदर्भ के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी विषय पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
3: डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और विस्तार मध्य भारत के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डे का संचालन जीएमआर समूह को सौंपा गया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आधुनिक हवाई अड्डे से विदर्भ में व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक, खनन और निवेश को नई गति मिलेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने नागपुर की देश के भौगोलिक मध्य स्थित रणनीतिक स्थिति का उल्लेख करते हुए इसे मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्र बनने की क्षमता रखने वाला शहर बताया।
4: नागपुर एक जीरो माइल है और नागपुर की विशेषता ये है कि नागपुर से चारों मेट्रो सिटी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली ये सवा घंटे डिस्टेंस पर है। नागपुर में नेशनल हाईवे भी उसका भी जीरो में नागपुर में है, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता का। और विशेष रूप से नागपुर की जो विशेषता है वो नागपुर में लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में भी अब नागपुर डेवलप हो रहा है।
3: गडकरी ने नागपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि इससे वैश्विक व्यापार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
0: The Northeast Infrastructure Summit was held on the 15th and 16th of this month in Shillong. Several sessions were held with focus on discussions relating to tourism, connectivity across the region, and also aviation. We have more from a correspondent.
5: The recently concluded Northeast India Infrastructure Summit in Shillong sent out a positive message that the Northeast region is steadily moving from the periphery to the center of the country's development story. Held on the 15th and 16th of this month, the summit brought together policy makers, industry leaders, and investors to explore new opportunities in infrastructure, connectivity, and investment. While road connectivity remained a key focus, discussions also covered aviation, waterways, digital infrastructure, and tourism. Addressing the summit, Union Minister Nitin Gadkari stressed that improved infrastructure is essential to unlock the region's economic potential. He also announced and dedicated several national highway projects worth over 3,000 crore rupees in Meghalaya. This is aimed at improving connectivity, reducing travel time, and facilitating trade. The summit also highlighted the importance of stronger public-private partnerships and greater investment to harness the Northeast region's strategic location. As the curtains came down on the event, the focus has now shifted from deliberations to implementation, with infrastructure expected to become a key driver of growth, employment, and regional integration. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani Shillong.
1: गोवा को अगले 3 वर्षों में नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ पुलिस ने विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। सुनते हैं रिपोर्ट।
6: ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने की दिशा में गोवा पुलिस ने कदम बढ़ाया है। अगले 3 वर्षों में राज्य को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें कार्रवाई के साथ साथ जन जागरूकता पर भी बराबर जोर दिया जाएगा। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर तालगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। करीब 800 लोगों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। सेना, तटरक्षक बल और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों की भागीदारी ने इस अभियान को और व्यापक बनाया। इस अवसर पर गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि
7: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगले 3 साल में नशा मुक्त भारत का एक रोड मैप तैयार हुआ है और उसके तहत गोवा पुलिस आगे 3 साल में नशा मुक्त गोवा का एक रोड मैप बना रही है। पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 900 से ज्यादा केसेज रजिस्टर किए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों को ड्रग के केसेज में अरेस्ट किया है, 1000 kg से ज्यादा ड्रग सीज भी किया है और बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी किया है। लेकिन केवल एनफोर्समेंट से ड्रग के खिलाफ की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, इसके लिए कम्युनिटी आउट हुई फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पे भी हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि नशा मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार हो सके।
6: गोवा पुलिस का मानना है कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी और लगातार जन जागरूकता से ही नशा मुक्त गोवा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: और श्रोताओं, चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया।
0: And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. The Sensex fell 372 points to close at 76,728. The Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
8: हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था।
9: लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा।
8: लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा।
9: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया।
8: लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए।
9: काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए।
8: दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। हालांकि जब काकोरी मामला शुरू हुआ तो लाहिड़ी को साजिश रचने में सहयोगी पाया गया और सुनवाई के लिए उन्हें सेल्युलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
9: यहां अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने की तय तारीख से 2 दिन पहले ही, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भय था कि ये क्रांतिकारी जेल से भाग निकलेंगे।
8: लाहिड़ी की फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो।
9: इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन।
0: Yes, and we also remembering Michael Madhusudan Dutt, who passed away on this day in 1873. He was a celebrated 19th century poet and dramatist, widely regarded as a father of modern Bengali poetry. He revolutionized Indian literature by breaking away from traditional rigid poetic forms and introducing Western literary structures. His legacy in shaping South Asian literature rests on several groundbreaking achievements. Firstly, he was a pioneer of the blank verse and used it in his first Bengali

0: द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
2: This distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
1: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए, दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
2: टोटल ऑफ 105 अवार्ड्स विल बी कॉन्फर्ड टू द अवार्डीज टुडे, अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट ऑनर्स आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
1: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंडमास्टर हैं महारेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसी चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह
1: की। महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान।

0: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय VSM द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला अपने सैनिक परिधान में कोर ऑफ इंजीनियर्स के आप अधिकारी हैं और अपना सम्मान प्राप्त करके राष्ट्रपति जी का सैल्यूट करते हैं।
0: हरबिंदर सिंह बांद्रा सेना मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह YSM SM सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हैं।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी saluting the president and marching towards the dais.
1: आर्टिलरी के अधिकारी हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अति विशिष्ट सेवा मेडल और ये सैल्यूट।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Lieutenant General Shamshir Singh, we are here receiving Ati Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
0: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal, Vishesh Seva Medal.
1: The Brigade of the Guards ke Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi, Sena Medal aur Vishesh Seva Medal prapt kar chuke hain jaate hue Rashtrapati ji ke samne aur अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।

0: Lieutenant General Chiyarath Gopalan Muralidharan.
1: Lieutenant General Chiyarath Gopalan Muralidharan, the Army Medical Corps.
2: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन। भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
0: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा, recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, the Brigade of the Guards, to receive his Ati Vishesh Sena Medal.
2: Brigade of Guards ke Lieutenant General Puneet Ahuja VSM प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया। पुत्री और पत्नी
0: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Vice Admiral Anand Y. Sardesai, Vishesh Seva Medal, will receive his Ati Vishesh Seva Medal.
2: Nau Sena ka Adhikari Vice Admiral Anand Y. Sardesai, VSM prapt kar chuke hain, aaj bari hai Ati Vishesh Seva Medal ki. Bharatiya Nau Sena ki safed wardi aur is waqt prapt karte hue Ati Vishesh Seva Medal.
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर
2: जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है, नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
2: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
2: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
2: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
1: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
2: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें वीएसएम मिल चुका है, आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी, एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: Mehtab Singh Deswal, flying pilot receiving the Vishisht Seva Medal.
1: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev, Vishisht Seva Medal.
2: Air Marshal Kondan Kolangara Abu Ahmed Sanjeev, VSM, Aeronautical Engineering Mechanical के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल नाउ एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, विशिष्ट सेवा मेडल। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के एयर वाइस मार्शल, अब एयर मार्शल हैं आप, सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी राष्ट्रपति जी को।
1: अपर महानिदेशक डॉनी माइकल, प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, तटरक्षक मेडल।
0: एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉनी माइकल, पीटीएम टीएम।
2: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डॉनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए।
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
0: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, सेवा मेडल, VSM, रिटायर्ड।
2: नारी शक्ति का प्रतीक सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करती हुई महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल, VSM, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, VSM, द इन्फेंट्री, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल सुजीत, मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, SM, VSM, द आर्मी एयर डिफेंस।
2: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
1: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल।
0: मेजर जनरल आशीष शाह, सेना मेडल, द आर्मर्ड कॉर्प्स, मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष शाह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अमर राम दसानी, युद्ध सेवा मेडल, द इन्फेंट्री।
2: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर राम दसानी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल विकास चौधरी, युद्ध सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल विकास चौधरी।

0: Youth Seva Medal the Infantry to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
1: सैल्यूट करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल आर्टिलरी का अधिकारी राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
0: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: मेजर जनरल वूदेव परिदा विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
1: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhein pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
0: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
1: Armored Corps के अधिकारी Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. अब राष्ट्रपति जी ने प्रदान करेंगी अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
1: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए
0: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे द इन्फेंट्री।
2: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडवाल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
1: Infantry ka adhikari Major General Kuleshwar Singh Datwal, Vishesh Seva Medal se alankrit ho chuke hain aur aaj alankrit honge Ati Vishesh Seva Medal se. Ye ek aur khushi ki baat kyunki putri
2: Major General Vivek Narang.
0: Major General Vivek Narang from the infantry saluting the President.
1: Infantry ke adhikari hain Major General Vivek Narang. Rashtrapati ji ke theek samne apna padak grahan karte hue Ati Vishisht Seva Medal. Garvili muskan unki putri aur patni taaliyan bajakar
2: Major General Paranveer Singh Punia Sena Medal Vishisht Seva Medal.
0: Major General Paranveer Singh Punia Seva Medal, Vishesh Seva Medal will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
1: Infantry ke ek aur adhikari Paranveer Singh Punia Vishesh Seva Medal Ati Vishesh Seva Medal prapt karenge Rashtrapati ji se.

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSMSM रिसीविंग राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग राष्ट्रीय विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा।

0: Major General Avinder Pal Singh Bal, Seva Medal.
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स्ट्रा रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब आ रही है नौसेना के अधिकारियों की रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
2: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
0: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी मेरिकल to receive the अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल इज एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ VM फ्लाइंग पायलट।
1: अबारी भारतीय वायुसेना के इस पायलट की एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ अति विशिष्ट सेवा मेडल आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वडपल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान VM फ्लाइंग पायलट
2: अब भारतीय
1: रिसीविंग दति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह।
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह। आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल आपकी सेवाओं के लिए।
0: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा

0: IAM Flying Pilot is the next recipient of Ati Vishisht Seva Medal.
1: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिढा की. आप एक पायलट हैं.
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे विशिष्ट सेवा मेडल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे VSN रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
0: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर्ड इज रिसीविंग ताती विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल संदीप कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट रिटायर हो चुके हैं. अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी के कर कमलों से और सैल्यूट.
2: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख सेवानिवृत्त.
0: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रिटायर्ड इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग.
1: आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर उड़ान पायलट सेवानिवृत्त.
0: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड.
1: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर. आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से.
2: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
0: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर VSN एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिटायर्ड रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
2: ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल.
0: ब्रिगेडियर पवन धुल VSN द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स.
1: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से. अब बारी सैल्यूट की.
2: सुबेदार एच होकाटो सेमा 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित.
0: सुबेदार एच होकाटो सेमा 9 असम रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स.
1: सुबेदार होकाटो सेमा कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं. 9 असम के राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे. युद्ध संघर्ष युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है. आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर्स सदन कमांड का नेतृत्व करते हैं. उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से.
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ PVSM AVSM रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट.

0: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल मनीष खन्ना एवीएसएम वीएम फ्लाइंग रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव एवीएसएम एसएम द पैराशूट रेजिमेंट टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
1: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ। अति विशिष्ट सेवा मेडल पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत एवीएसएम वीएसएम रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर एवीएसएम वाईएसएम फ्रॉम द असम रेजिमेंट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: द असम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम एंड वाईएसएम फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ एवीएसएम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती एवीएसएम वीएसएम।
1: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की, आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम

0: युद्ध सेवा में रहो।
1: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, एयर कॉमोडोर प्रभात मलिक।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, उड़ान पायलट।
0: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर, फ्लाइंग पायलट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: अब परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
3: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग इज वाइस एडमिरल संजय बात्सायन, एवीएसएम, एनएम।
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल, नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
3: वाइस एडमिरल अजय कोचर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: वाइस एडमिरल अजय कोचर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए वाइस एडमिरल अजय कोचर, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एवीएसएम, वीएम, वीएसएम, फ्लाइंग पायलट, इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
3: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेवा मेडल, फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरे

0: ईश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
1: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली UYSM, AVSM, SM, VSM from the infantry to receive the Param Vishisht Seva Medal.
0: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Rashim Bali Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Manish Mohan Eri Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal.
2: Lieutenant General Manish Mohan Eri YSM, AVSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
0: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही UYSM, AVSM, YSM, SM फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग इज लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा AVSM SM फ्रॉम द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा, सेना मेडल फ्रॉम द आर्मी एयर डिफेंस रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मी एयर डिफेंस के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर आइवन डिकुन्हा अप्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
1: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अबारी नारी शक्ति की वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं।

0: परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल सूरज सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
2: The next recipient of Param Vishesh Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
0: भारतीय वायु सेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिटायर्ड।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिटायर्ड।
0: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवा

0: Vishesh Seva Medal from the Regiment of Artillery, receiving the Param Vishesh Seva Medal from the Honorable President.
1: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
2: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान, अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल, इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
2: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा PVSM AVSM CM फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड।
1: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं। प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
3: मेडल। एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: एयर मार्शल नगेश कपूर PVSM AVSM VM फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई UISN अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी।
1: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल।
0: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
3: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह PVSM AVSM NM रिटायर्ड।
1: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
3: सेवाएं दी थी। नर्मदेश

0: सर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल सेवानिवृत्त
1: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: The next recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, retired.
2: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को। और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
2: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी।

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण ये था जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
2: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: दिन कारोबारी खबरें, शेयर बाजार से जुड़े समाचार और उसके अलावा अर्थनीति से संबंधित बातचीत के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए। आप भी समझना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल, तो निसंकोच डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0464 या फिर 2371-7106। ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से संबंधित सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वो देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवाल। दीपशिखा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: नमस्कार मनोज जी, नमस्कार लालिमा जी,
2: नमस्कार दीपशिखा, एंड अ वार्म वेलकम येट वंस अगेन टू मार्केट मंत्रा।
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग
2: जी। थैंक यू मनोज। Yes, friends, let's begin right away. Benchmark domestic indices decline. Sensex falls 372 points. Nifty settles below 24,000. Most Asian stock market indices end on a positive note. And India's industrial output rises by 5.1% in May this year.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई बिकवाली, प्रमुख सूचकांक घाटे में रहे। सेंसेक्स 372 अंक फिसला, निफ्टी 24,000 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। एशिया के अधिकांश प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी दर्ज की गई और देश का औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष मई में 5.1% बढ़ा।
2: And before we move on, here's a disclaimer for all our listener friends. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली तेज रही। प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% घाटे में रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 372 अंक नुकसान के साथ 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक घाटे के साथ 23,946 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% के आसपास घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% से अधिक की कमी आई।
2: Benchmark domestic equity indices ended almost 0.5% down today. The Sensex fell 372 points to close at 76,728. The Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index shed nearly 0.4% and the Small-Cap 100 Index declined over 0.6%. Earlier, the markets opened on a flat note and swung between gains and losses during the first half of the session. However, both indices edged lower in the latter half of the choppy trading session amid profit booking and lingering geopolitical uncertainties.
0: सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो आज 30 में से 17 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे। घाटा उठाने वालों में सबसे अधिक कोटक बैंक को नुकसान हुआ। इसके शेयर 3.2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.8% घाटे में रहे। मारुति को 2.1% का नुकसान हुआ। उधर मुनाफा कमाने वालों में प्रमुख रही एटर्नल कंपनी, जिसके शेयर 1.4% लाभ में रहे। ट्रेंट और बीईएल दोनों के शेयर 1.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। एनटीपीसी को 1.1% का फायदा हुआ।
2: इन द सेक्टरल इंडिसेस ऑन द बीएससी 18 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन नेगेटिव जोन। अमंग द की डिक्लाइनर्स ऑटो फेल 2.1%, फोकस्ड आईटी लॉस्ट ओवर 1.5% एंड ऑयल एंड गैस स्लिप्ड 1.4%। In contrast, healthcare gained nearly 1%, mid-small private banks quality tilt index added 0.6%, and metal rose over 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,629 companies declined, 1,712 advanced, and 218 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ, 94 रुपए 54 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख

0: मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 101.24 पर चल रहा था।
1: एंड नाउ वी हैव ऑनलाइन अनिल कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद। जी अनिल जी, सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी।
2: मैम मेरा सवाल ये था कि आई एम ए सीनियर सिटीजन 64 इयर्स ओल्ड और मेरा LIC से LIC से मेरा 20 लाख आया था, तो जिसको मैंने सीनियर सिटीजन स्कीम में पहली मार्च में डाल दिया था। अब मेरे एक्चुअली है क्या कि सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख डाल सकते हैं, बट आई एम हैविंग 10 लाख मोर बट इन फॉर्म ऑफ FD जो कि मेरी अराउंड 25 की है, आइदर इन PPF और 10 लाख इन म्यूचुअल फंड्स। तो मेरा ये था कि 8.2 और FD में मुझे 6.9 मिलता है, तो क्या मैं FDs को ब्रेक करके सीनियर सिटीजन स्कीम में डालूं या म्यूचुअल फंड से कैन आई विड्रॉ माई मनी फॉर 10 लाख और PPF, दो आई एम स्टिल अर्निंग एंड आई एम डिसेंट इनकम पर मंथ एंड नो लाइबिलिटीज नथिंग, तो प्लीज टेल।
1: अनिल जी, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने पोर्टफोलियो में वो किस तरह का कर रखा है, जो आपका टोटल सेविंग्स है या जो इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर आप रखेंगे सब कुछ मिला करके तो वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, जो आपकी जरूरत है जरूरतों के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपका क्या जरूरत है, तो उस हिसाब से आप अपना स्टैगर कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जो सेविंग स्कीम्स हैं सरकार के, उनमें थोड़ा बेहतर आपको रिटर्न मिलता है और उनमें टैक्स सेविंग भी मिलती है। उसके अलावा भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं जहां पे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलें।
0: हमारे साथ दिल्ली से ही एक श्रोता हैं, हम आग्रह करेंगे पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल समझना चाहेंगे आपका। अपना नाम बता दें। अनस जी हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दें फिर उसके बाद सवाल पूछें।
3: मेरा नाम अनस है जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।
1: जी गुड इवनिंग,
0: बहुत बहुत स्वागत आपका अनस जी, सवाल पूछें।
3: व्हाई आर IT एंड एनर्जी सेक्टर सफरिंग फ्रॉम प्रेशर?
1: अनस जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी भी उसको लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है, हमें पता नहीं है कि हालांकि एक समझौता हुआ है लेकिन अभी भी जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ही ड्यूरेबल समझौता है वो, तो वो एक प्रेशर है जो हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में। और IT क्षेत्र में कुछ समय से ये चल रहा है प्रेशर, और ये प्रेशर जो है क्योंकि AI का जो असर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका कंपनीज के ऊपर, खास तौर से टेक कंपनीज के ऊपर जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं ट्रेडिशनली US मार्केट्स को लेकर के, तो वो उनका बिजनेस जो है किस हद तक असर कर पाएगा, वो AI में कितना अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, तो इस सब का मिला जुला प्रभाव है जो टेक स्टॉक्स पर दिखाई दे रहा है।
4: ऑलराइट, वी नाउ हैव शोभित ऑनलाइन कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। यस शोभित जी, जी सवाल पूछे।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
4: गुड इवनिंग जी।
5: एंड माय क्वेश्चन इज दैट आई एम हेविली bought on FMCG and good tech companies. Even the FMCG I'm holding are the premier companies. But in the last 5 years, I've seen no growth, rather negative returns. Though I get good dividends, but the return is negative. And as you know, IT stocks are also seeing a lot of beating. So what should be my strategy from here on for maybe another couple of years? Thank you.
1: Shobhit ji, एक जो portfolio में आपको देखना चाहिए कि आप again आपने churn कितना आप कर पा रहे हैं अपने portfolio का। जैसा कि आपने कहा कि आपने ब्लू चिप जो टॉप कंपनीज हैं उनमें निवेश किया हुआ है, तो निवेश इस हिसाब से उनमें आपको डिविडेंड तो जरूर दिया गया होगा, और बाजार में हालांकि रिटर्न अगर आपका फ्लैट

0: रहा है, आप कुछ समय और उसको देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है अभी इन कंपनीज पर आए, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है उस लिहाज से ये कंपनीज जो हैं आगे जाके बेहतर ये क्षेत्र कर सकता है।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजीव। राजीव जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या कहते हैं आईटी सेक्टर में सुधार आएगा अभी या नहीं। और एक दूसरा सवाल मेरा, जैसे आज सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा कम गिरा है मगर मेरे अकाउंट में बहुत असर पड़ा है।
0: राजीव जी देखिए आईटी और टेक क्षेत्र में कुछ समय तक अनिश्चितता बनी रहेगी जब तक कि बहुत क्लैरिटी नहीं हो जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह का असर जो है हमारी टेक कंपनीज पर आएगा, वो खुद एआई के क्षेत्र में क्या कर सकती हैं और कितना वो काम बढ़ा रही हैं। तो ये अभी दुनिया में हम देख रहे हैं कि टेक क्षेत्र में, बाकी भी बाजार अगर आप देखेंगे कोरिया ताइवान वहां पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, तो कुछ समय तक ये थोड़ा सा रहेगा उतार चढ़ाव।
3: All right, we are now joined by Jitendra, and Jitendra ji is calling us from, we have Ranjay. Ranjay ji is calling us from Faridabad. Ji, sawal puchhiye. Haan ji.
4: Hi, like I'm new in this, so like I'm a student right now. Uh-huh. I have 1 lakh in my bank account, so where should I invest it?
0: Ranjay, welcome to the program, and for you as an investor, you are a young investor, you have more risk taking capability, so you can look at equities, you can look at making some interesting bets in the market, some of the sectors which show promise of the future. You have defense, you have infrastructure, you have capital goods, which are typically long term stocks which can get you good returns in the long term when you will require funds.
1: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमित। अमित जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए।
5: नमस्कार सभी को।
1: नमस्ते
0: नमस्ते
5: मैडम। नमस्कार।
0: नमस्ते अमित जी।
5: हाँ मैडम, मेरा ये प्रश्न था, जब यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ था मैम, तो क्रूड ऑयल की कीमत $72 बैरल की समथिंग चल रही थी अराउंड, ठीक है मैम
0: जी।
5: और एकदम से वो पीक आ गई थी मार्च के महीने में, $120 तक चली गई थी, ठीक है मैम। तो उस दौरान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की शेयर की जो प्राइस थी वो एकदम से डाउन हो गई थी लाइक 20-30% तक, बट अब दोबारा से $120 से क्रूड ऑयल 72 के अराउंड में ही आ गई है। तो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज के शेयर हैं उनमें कुछ खास क्या कहते हैं सुधार नहीं दिख रहा है, तो कब तक होगा मैडम? धन्यवाद।
0: देखिए अमित जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, हालांकि सुधार हो गया है, अगर आप देखें प्राइस जो है कम हुआ है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जब प्राइस पीक पे चल रहा था तो उस दौरान भी खरीदारी की थी, तो उनकी बुक्स में अभी भी वो लॉस है काफी हद तक, तो वो एक ओवरहैंग है। और दूसरा चीज, अगर आप देखें लड़ाई को लेके अभी भी अनिश्चितता सी बनी हुई है, करार हुआ है लेकिन वो थोड़ा मारामारी वहां चल ही रही है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर अभी इस क्षेत्र पर रहेगा कुछ समय तक।
3: राइट, वी नाउ जॉइन बाय जितेंद्र जी फ्रॉम जयपुर। जी सवाल पूछिए। हाँ जी हाँ जी सर
0: जी जितेंद्र
6: मैडम, हमारा दो प्रश्न है। एक तो जैसे जैसे मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी पे ओवरड्राफ्ट ले रखा है, ठीक है, किसी ने ले रखा है, तो क्या उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट से 5-6 हजार रुपया हर एक मंथ जो है निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाना चाहिए या एनपीएस में लगा सकता है क्या? क्योंकि अभी तक भाई कर्जी है, कर्ज लेके लगाना तो क्या मतलब, जैसे कुछ ठीक है निफ्टी 50 बस उसी के इर्द गिर्द।
0: जितेंद्र जी, ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक एडवेंचरस स्ट्रैटेजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो हालांकि कहा यह जाता है कि कर्ज लेकर के आप बाजार में रिस्क मत लीजिए, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो हर किसी की अलग अलग होती है।
1: और खास तौर से यदि उम्र बढ़ जाए और प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसके डूबने और उसका अंदेशा अधिक हो, तो ये चलन एक निश्चित आयु के बाद, 60 वर्ष से अधिक की आयु के बाद प्रॉपर्टी को लेके उस पर कुछ लोन लेकर उसको निवेश कर जोखिम उठाने की भूख देखी जाती है कुछ लोगों में। तो यदि

0: जोखिम उठाने की क्षमता है और उस भार को वहन कर सकते हैं तो उस दिशा में बढ़ें, नहीं तो अपना घर फूंक कर बाजार में निवेश करना थोड़ा सा असुरक्षित साबित हो सकता है।
1: बिल्कुल, मतलब आपकी क्षमता है रिस्क लेने की, तो जिगर बड़ा है तो कीजिए।
0: आइए चले मुंबई, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे नियमित श्रोता रत्नाकर, स्वागत आपका, सवाल पूछें।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग रत्नाकर जी,
2: मेरा सवाल है कि ये जो हम इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं
1: जी,
2: तभी वो हम 26A रेफर करते हैं, तो 26A रेफर करना ही ठीक है कि उसके साथ वो AIS और TIS का भी हमने मैचिंग करना चाहिए? पर मैचिंग करना है तो एग्जैक्ट उसमें AIS और TIS से 26A में क्या देखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन। थैंक्स।
1: देखिए, जब आप ITR भर रहे हैं रत्नाकर जी, तो आपको ये देखना होगा कि आपने कहाँ आपका पेमेंट कहाँ कहाँ से आया है और कहाँ आपका TDS कटा है या कहीं आपकी कोई लायबिलिटी है वो तो नहीं है। तो जब आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप तो जानते हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, उसमें अगर आप रिटर्न में अपना आपका रिफंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, आजकल प्रीफिल्ड रिटर्न्स आ जाते हैं अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसमें आपको अपनी जो भी आपका TDS कटा है वो आपको नजर आ जाएगा, तो वो आपको टैली करना होता है, तो वो आप सही टैली करके उसको फिर भरिए।
0: हमारे साथ कई श्रोता फोनलाइन पर हैं, खासतौर से मुंबई से के शुक्ला और नोएडा से पंकज, आप दोनों से आग्रह कि हमारे साथ फोनलाइन पर बने रहें। हम कुछ खबरें, क्योंकि समय भी है और आपके सवाल भी लगातार आ रहे हैं, तो खबरों का संतुलन और आपके सवालों का संतुलन बना के पहले हम आपको एशियाई बाजार लिए चलते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। एशियाई शेयर बाजारों में आज कुल मिलाकर तेजी रही है। हांगकांग का हैंगसेंग 1.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2%, ताइवान का ताइएक्स लगभग 1% ऊपर आकर बंद हुए। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.1% से अधिक की तेज आई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.3% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। उधर दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिकवाली के दबाव में 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय जोन में समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था, प्रमुख शेयर बाजार में सम्मिलित। फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की गिरावट थी। लंदन का फुटसी 100 0.2% से अधिक ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डैक्स में भी 0.1% की वृद्धि थी। और अब नोएडा से पंकज, बहुत बहुत धैर्य के लिए आपका, आपकी सराहना हम करते हैं, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद, आपकी सारी टीम को हमारी तरफ से नमस्कार।
1: नमस्कार पंकज जी।
3: मैं मैडम ये पूछना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इंडियन मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर में कितना परसेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और फॉरन के हैं विदेश के, उनका परसेंटेज क्या है, और आने वाले समय में हमारा परसेंटेज तो फिर बढ़िया ही होता जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं मैडम।
1: पंकज जी देखिए, कुछ समय पहले ऐसा होता था कि ये कहा जाता था बाजार में कि अगर अमेरिका को छींक आई तो बाकी सबको सर्दी लग जाती थी, तो ये काफी हद तक हमारा जो मार्केट है वहां पे डोमेस्टिक जो निवेशक हैं उन्होंने काफी हद तक अपना निवेश बढ़ाया है, और हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि FPIs जो है वो पुल आउट कर रहे थे अपना निवेश, नेट जो है वो नेगेटिव में चल रहा था जो अभी चल रहा है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा फ्लोज जो है वो आना शुरू हुआ है, लेकिन पुल वो अभी भी कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं AI को लेकर के वहां पे पैसा IPOs आ रहे हैं बड़े बड़े, तो वहां पे वो पैसा लगाना चाह रहे हैं। दूसरा US ट्रेजरीज का अगर आप देखें तो यील्ड्स बहुत बड़ा है, तो यहां से हमारे बाजार से पैसा काफी विथड्रॉ हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोनों मिक्स रहेगा, देश के भी निवेशक रहेंगे और विदेश के भी निवेशक रहेंगे, तभी तो हमारा शेयर बाजार मजबूत रहेगा।
4: राइट, वी नाउ जॉइन बाय KK शुक्ला जी फ्रॉम महाराष्ट्र जी, सवाल पूछे।
5: नमस्कार।
1: नमस्कार शुक्ला जी।
5: KK शुक्ला गोरा महाराष्ट्र से। मेरा क्वेश्चन था कि क्रूड ऑयल और गोल्ड और फर्टिलाइजर, ये तीनों हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, और डॉलर या अदर करेंसी कैसे मिलता है, और सेकंड क्या गोल्ड का रेट डॉलर या डॉलर के थ्रू यहाँ क्लियर होता है क्या?
1: शुक्ला जी देखिए,

0: हम काफी हद तक आपने जो बताया कच्चा तेल, सोना और फर्टिलाइजर खाद जो है इसके लिए आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं। और हम सोना जो है जो निर्यात जो करते हैं, हम ज्वेलरी निर्यात करते हैं बनने के बाद में। कच्चे तेल में भी हम उसको लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर हम निर्यात जो होता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। फर्टिलाइजर में अभी निर्यात थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि हमारी अपनी खपत बहुत ज्यादा है और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि फर्टिलाइजर में भी हम आत्मनिर्भर बने, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार का, तो इस पर काम किया जा रहा है। तो ये जब उतार चढ़ाव होता है और आयात का बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, अगर आप देखें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है या बीओपी हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव जा रहा है, तो उसका प्रेशर जो है वो करेंसी पर आता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने आप में डॉलर में खुद जो है अप्रिसिएशन था, जिसका असर विश्व की बहुत सारी करेंसीज पर हुआ, हमारे देश की करेंसी पर भी हुआ।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी पर आधारित यह वृद्धि दर अप्रैल में 4.9% दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि सरकार ने औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को मापने के लिए वर्ष 2022-23 को नए आधार वर्ष के रूप में संशोधित किया गया है। नए संशोधित सीरीज में एक अद्यतन उत्पाद बास्केट को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विभिन्न उत्पादों को आवश्यकता अनुसार महत्व देते हुए व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते मई के दौरान बिजली और गैस आपूर्ति उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.9% दर्ज हुई। वे निर्माण के साथ जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में 5.5% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1.6% की गिरावट दर्ज हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई के आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए कहा कि आधार वर्ष के रूप में 2022-23 के साथ नई आईआईपी श्रृंखला के लिए डिफ्लेटर के रूप में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI को बदल दिया गया है। मंत्रालय ने इस महीने की पहली तारीख को जारी WPI आधारित श्रृंखला का स्थान लेते हुए आउटपुट PPI का उपयोग करके संपूर्ण 2022-23 आधारित IIP श्रृंखला को संशोधित किया है। यहां पर यानी कई सवाल, पहला सवाल तो ये कह लें कि ये जो नया आधार वर्ष बदला गया उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे। दूसरा, डिफ्लेटर के रूप में जो एक नया फैक्टर जोड़ा गया है WPI को हटाकर, उसका क्या औचित्य है। और तीसरा कि कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं मई के वो क्या दर्शा रहे।
0: मैं पहले सवाल से शुरू करती हूँ जो आपने कहा।
1: हाँ हाँ, ऐसा जवाब से पहले मोहन जी आप हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आप लाइन पर बने रहें, पहले इस सवाल का जवाब, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें
0: जी। देखिए तो आखिरी सवाल जो था आपका कि इस महीने का जो है जो परफॉर्मेंस है मई महीने का वो कैसा रहा, तो ये अगर कहना चाहिए थोड़ा सा मॉडरेशन है
1: जी।
0: लेकिन परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल देखा जाए तो वो ठीक है। अगर आप देखें खासतौर से अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें जिसमें मॉडरेशन है
1: जी,
0: IIP ओवरऑल जो है अप्रैल में 4.9 था, तो उससे तो इम्प्रूवमेंट आया है। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मॉडरेशन भी जो है वो बहुत लिमिटेड है मॉडरेशन
1: जी, जी।
0: तो ओवरऑल अगर असेसमेंट देखें तो ये कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में अभी इस समय ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा असर वेस्ट एशिया का दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी हुई है
1: जी, जी।
0: कुछ उन क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो ये जो आंकड़ा है ये अर्थव्यवस्था की जो गति है, उम्मीद की जाती है कि आगे भी खासतौर से FMCG कंज्यूमर सेगमेंट्स जो हैं, एल नीनो की वजह से आशंका है कि उन पर शायद असर पड़े, तो वो असर ना रहे। आपने कहा कि ये जो नए पीपीआई डिफ्लेटर और ये सब जो लाए गए हैं ये बेसिकली

0: इसलिए लाए गए हैं कि हमारा डेटा जो है उसे और रोबस्ट किया जाए।
1: जी जी।
0: असल में प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको क्या असर होता है इन्फ्लेशन का, उनका आंकड़ा लेकर के उसको इस्तेमाल किया
1: जी
0: जाए।
1: जी। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धैर्य के साथ आप बने हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और स्वागत। सवाल पूछें।
2: थैंक यू सर, आप सभी टीमों के सादर प्रणाम।
3: प्रणाम
0: प्रणाम मोहन जी।
2: जी मुझे जानकारी, मैं अभी नए नए अभी स्टॉक मार्केट में मैं इंट्राडे करता हूं मैम। मुझे जो है इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर इसमें डिफरेंट क्या है ये मुझे इसके विषय में जानना चाहिए सर।
0: मोहन जी आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो एक वो है उसके लिए एक बहुत लंबा प्रेजेंटेशन लगेगा, लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, आपने निवेश अभी ही करना शुरू किया है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है ये इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है। इसमें बहुत रिस्क हैं इस मार्केट में, आपने देखा है कि सेबी ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ी कॉशन किया है, तो बहुत ध्यान से इस क्षेत्र में घुसिए।
1: यानी इंट्राडे ट्रेडिंग खतरे से खाली नहीं है, और नए है तो उससे बचें, ये सीधी सलाह।
3: वेल, यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी टुडे सेड दैट इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इफेक्टिवली शील्डेड द एनर्जी कंज्यूमर्स फ्रॉम एनी नेगेटिव इम्पैक्ट इवन एज द वर्ल्ड फेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस एंड डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन्स।
1: और अब कमोडिटी मार्केट।
3: Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 0.8% up at $72.58 per barrel.
1: नजर डालते हैं सर्राफा बाजार पर। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1,43,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.6% घटकर 2,22,400 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। एमसीएक्स पर भी अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% घटकर 1,42,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.6% से अधिक घटकर 2,22,000 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बहुत संक्षेप में, सोना ऊपर जाता दिख रहा, नीचे आता दिख रहा, बहुत संक्षेप में
0: अनिश्चितता बनी हुई है, और जो सेंट्रल बैंक है वो खरीदी बरकरार रखे हुए हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि अनिश्चितता के रहते बढ़ेगा।
1: बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: ऑलराइट, थैंक यू दीपशिका फॉर ऑल योर व्यूज एंड रिव्यूज। फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर इज अ लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स 372 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,000। मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड on a positive note, and India's industrial output rises by 5.1% in May this year. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pashak, signing off for now. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।

0: हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। यह वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सूलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu presented the gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney, Lieutenant General Vikas Rohela, Lieutenant General Harbinder Singh Vandra and Lieutenant General Mohinder Pal Singh were awarded Ati Vishisht Seva Medal. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of the armed forces were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said his visit to Seychelles has been full of substantive outcomes that will boost India-Seychelles friendship. In a social media post, the Prime Minister said, during the past 50 years, the relationship between the two countries has been marked by deep trust and shared progress. While the next 50 years will be defined by innovation, sustainability and shared prosperity. He also expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, the government and the people of Seychelles for the affection. India's industrial output growth, as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MoSPI, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% in the last month. Manufacturing, as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. However, the mining and quarrying sector proved to be a laggard, decelerating by 1.6%. Along with the May IIP data, the Ministry has replaced the Wholesale Price Index with the Output Producer Price Index as a deflator for the new IIP series, with 2022-23 as a base year. Union Minister of Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda today said the government has significantly strengthened the country's healthcare system by expanding primary, secondary and tertiary healthcare services. Mr. Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi. Addressing the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi, Mr. Nadda said 1.86 lakh Ayushman Arogya Mandirs have been established as the first point of contact between citizens and the healthcare system.
2: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country, and incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
1: Delhi Cabinet today approved the Delhi Electric Vehicle EV policy, set for a phased four-year rollout starting from the first of next month. The ambitious framework commits a massive fiscal outlay of 15,000 crore rupees to completely transition the national capital towards zero-emission transit by 31st March 2030. Iran and Oman have held the first meeting of the newly established Joint Hormuz Committee in Muscat. Iran's Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs, Kazem Gharibabadi, said the meeting focused on current developments in the Strait, the sovereign rights of the Gulf coastal states, and possible frameworks for its future administration. The discussions were held with Omani Minister of State for Foreign Affairs, Abdulaziz Al-Hinai, and follow an agreement reached last week between Tehran and Muscat to establish the joint committee. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest-ranked side in the ICC men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked the places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympic Games. Cricket will return to the Olympic Games at Los Angeles 2028 after a gap of 128 years, with six teams each competing in the men's and the women's T20 events. And that is the end of this news bulletin.
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे, और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था, और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशेल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
5: देखिए, भारत और

0: सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में, उसमें भी हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही है। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी अगर हम लिस्ट ऑफ एमओयूज को देख ले या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है, और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स के संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं, और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
1: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
0: एमओयूज की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे एमओयूज में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार मुझे लगता है किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
1: बिल्कुल,
0: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए ना सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस एमओयू के तहत, बल्कि वो तमाम जेनेरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन एमओयू के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है उसमें भी एक बहुत जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है, तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा, जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन awareness reflect our shared commitment to a safer and more

0: your region. I met President Albany, Topath, this morning. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
2: देखिए, भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में, भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि यह क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में, सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया, तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़े मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड, पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे?
2: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, एनआरआईज हैं, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे, लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ एनआरआईज को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहां के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन्स आए जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे, उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही और इसमें सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक

0: संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
1: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश है, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश है, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के, IEUU जिसे कहते हैं, उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी हैं, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता, जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं, ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित, दवाओं से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर, ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है उसमें हमेशा यह होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को, अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा assertively कह सके, और इसके लिए इनकी capacities को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं, और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
0: बिल्कुल, प्रोफेसर राहुल मिश्रा बहुत धन्यवाद। भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम अपने सुनहरे रंग बिखेरती है तो कुछ पुराने नगमे दिल के सबसे करीब आ बैठते हैं। ऐसे ही खूबसूरत गीतों के साथ आज साज ढले की इस महफिल में हम फिर निकल पड़े हैं यादों की उस खूबसूरत दुनिया में जहां मोहब्बत भी है, शायरी भी है

और सुरों का जादू भी। आज के साथ चले की इस महफिल में मैं हूं आपके साथ विभा, शुभ संध्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो आज भी इश्क का सबसे खूबसूरत इजहार माना जाता है।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ और अब बारी है एक ऐसे गीत की जहां मोहब्बत में अदब भी है और अपनापन भी। ये गीत है साल 1963 की फिल्म ताजमहल से। यूं तो फिल्म ताजमहल के सभी गीत अपने जमाने में भी काफी हिट थे और आज भी क्लासिक माने जाते हैं और इस फिल्म का संगीत भी नौशाद साहब ने ही तैयार किया था, मगर इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसकी दिलचस्प बात यह है कि इस गीत में प्रेम का इजहार बेहद शालीनता और सम्मान के साथ किया गया है और शायद यही वजह है कि 6 दशक बाद भी इसकी मिठास बिल्कुल वैसी ही है जैसे तब थी। चलिए सुनते हैं।

और अब एक ऐसा गीत जो मोहब्बत के बिछड़ने को भी बेहद खूबसूरती से बयां करता है। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन गजलनुमा रचनाओं में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस गीत को पहले मोहम्मद रफी से गवाने का विचार था, मगर संगीतकार रवि ने इसे महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया और फिर यह गीत महेंद्र कपूर जी के गाए यादगार गीतों में शामिल हो गया। फिल्म है गुमराह, बोल साहिर लुधियानवी के और संगीत रवि का। और गीत कौन सा है, लीजिए सुनवा रही हूं।

अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, बस हर सुनने वाले के साथ उनकी नई यादें जुड़ती चली जाती हैं। और इन्हीं यादों के पिटारे के साथ आज सांझ चले में बस इतना ही। आपको बता दें कि 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 8:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, और 8:10 पर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी लेकर मधुलिमा। और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। तो मुझे यानी विभा को थोड़ी देर के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए।
6: राष्ट्रपति द्वारा ये अलंकरण 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा, 30 परम विशिष्ट सेवा, 12 उत्तम युद्ध सेवा और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक कर्मियों को उनकी असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए गए हैं। ये सम्मान देश में आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। एयर मार्शल तरुण चौधरी को अति विशिष्ट सेवा पदक, वाइस एडमिरल तरुण सोपती को उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं परम विशिष्ट सेवा पदक से लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
5: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, शून्य कार्बन उत्सर्जन और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
7: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
8: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन

0: सौम्या शरण।
1: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रिपल आईटी में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूट कैंप के ग्रैंड फिनाले और इनोवेशन शोकेस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम श्री स्कूलों के विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी, कृषि, आपदा प्रबंधन और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर 20 नवाचारी तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किये।
2: समारोह के दौरान शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अंतर्गत श्री स्कूलों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा अन्य उभरती तकनीकों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री सूद ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और उन्हें नवाचार आधारित कार्यबल के रूप में तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अलका सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: श्री कुमार ने कहा कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दाखिल की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में आज सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में सहकारिता जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर सप्ताह भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
4: सहकार से समृद्धि सहकारिता सप्ताह 2026 के शुभारंभ के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सहकारिता सामाजिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का सशक्त माध्यम है। वहीं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह सहित दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी उपस्थित रहे। श्री सिंह ने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली में जागरूकता अभियान, सेमिनार, पैनल चर्चा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिताएं तथा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नरेला, द्वारका, रोहिणी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनियमन और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
0: Applications launch is going to play a very important role.
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा

0: डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
1: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली विधानसभा में कल डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी के संकलित भाषण नामक विशेष स्मारक ग्रंथ का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहेंगे। इस स्मारक ग्रंथ में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के संसदीय भाषणों का पहली बार एक संकलित संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी अब तक कुल 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल सबूत और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी झारखंड के जामतारा और देवघर सहित राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी पीड़ितों को व्हाट्सएप द्वारा एपीके फाइल भेजकर उन्हें इंस्टॉल करने के लिए उकसाते थे, जिससे पीड़ित की बैंक से जुड़ी जानकारी आरोपी को हासिल हो जाती थी। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1392 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले 9 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों को जाम वाली मुख्य जगहों पर लक्षित कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं गलत दिशा में गाड़ी चलाने और बिना अनुमति पार्किंग जैसे उल्लंघनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने पुलिसकर्मियों से स्थानीय निवासियों के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और क्षेत्र के हिसाब से समाधान विकसित करने के लिए नागरिक केंद्रित प्रोजेक्ट संगम का भी उल्लेख किया। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स एशियन जूनियर चैंपियनशिप में वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए युवा जिम्नास्ट अक्षत बजाज को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि अक्षत बजाज की मेहनत, अनुशासन और समर्पण देशभर के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक और पद्म विभूषण डॉ प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ महालनोबिस की दूरदर्शी सोच ने आंकड़ों को प्रभावी नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बनाया। राजधानी में आज दिनभर तेज धूप रही और शाम के समय हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है और शाम के समय हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने आज साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और शासन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग के बढ़ते महत्व पर बल दिया। श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में 20वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज सहकारिता सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थ तस्करी मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। भारत और सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल तथा कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसेन अल फदली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य के नियंत्रण और समुद्री प्रबंधन को लेकर नवगठित संयुक्त होर्मुज समिति की पहली बैठक मस्कत में आयोजित की गई। बैठक में ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी और ओमान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री अब्दुल अजीज अल हिनाई शामिल हुए। ईरान और अमरीका के बीच ताजा झड़पों और जल डमरू मध्य में नौवहन व्यवस्थाओं पर असहमति के बाद समुद्री यातायात को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के बीच ये बैठक हुई है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मधुरिमा में आज आपके साथ है विभा, नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग का एक अपना समय, एक अपना रंग और एक अपना भाव होता है। आज की इस संगीतमय शाम हम समर्पित कर रहे हैं एक ऐसे राग को जिसे रागों का राजा भी कहा जाता है, यानी राग यमन। राग यमन संध्या का राग है। सूर्यास्त के बाद जब दिन की चहल पहल धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है, तब यमन के स्वर मन को सुकून, प्रेम और आध्यात्मिकता से भर देते हैं। यही कारण है कि हिंदी फिल्म संगीत के अनेक कालजयी प्रेम गीत इसी राग पर आधारित हैं। तो आइए राग यमन की मधुर छाया में डूबते हैं।

पता है फिल्म अनुरोध में राजेश खन्ना ने एक गायक की भूमिका निभाई थी। इस गीत में नायक अपने श्रोताओं से सीधा संवाद करता है, इसलिए ये गीत श्रोताओं के साथ साथ रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं का भी बेहद प्रिय गीत रहा है। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूं वो राग यमन की शुद्धता और सरलता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। कौन सा है वो गीत, लीजिए सुनिए।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभाग के साथ और बात चल रही है राग यमन की और इसी कड़ी में आज का हमारा अगला गीत है साल 1983 की फिल्म मासूम से। इस फिल्म से हमने जो गीत लिया है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि बिना किसी जटिल आलाप के

ही ये राग ये मन की आत्मा को पूरी गरिमा के साथ उभार कर सामने लाता है। ऊपर से गीतकार गुलजार के सरल मगर गहरे शब्द इस धुन को और भी यादगार बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं आरती मुखर्जी की आवाज में इस गीत को।

आज की इस संगीतमय यात्रा में हमने महसूस किया कि कैसे एक ही राग अलग अलग रूपों में हमारे दिल तक पहुंच सकता है। कहीं प्रेम बनकर, कहीं प्रतीक्षा, कहीं स्मृतियां, तो कहीं जीवन दर्शन, यानी एक ही राग मगर अनगिनत भाव। फिर किसी रोज होगी मुलाकात और तब करेंगे किसी और राग की मधुर दुनिया की सैर। नमस्कार।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में ब्राजील का सामना जापान से, वहीं देर रात जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वालिफाई किया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के उप विजेता रहे। FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कांस्य पदक विजेता पुरुष वॉलीबॉल भारतीय टीम को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। वहीं कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: पहले नॉकआउट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका शुरुआत से ही कनाडा पर हावी नजर आई और लगातार आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए दबाव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कुछ अच्छे मूव जरूर देखने को मिले, लेकिन टीम इन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सकी।
2: मिक्सचर ऑफ मैन टू मैन एंड ज़ोनल मार्किंग हियर फ्रॉम द साउथ अफ्रीकंस। द हेड इज डाउन एंड ऑलमोस्ट इन। गुड फॉलो अप सेव फ्रॉम विलियम्स। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेबी गोलकीपर एंड

0: का गोलकीपर रोनविन विलियम्स सफलतापूर्वक बचाव करने में सफल रहे।
1: Now Canada, can they find a route to goal now? And it's going to drop, surely no, brilliant defending, absolutely outstanding defending.
0: पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कोई भी गोल नहीं हो पाया। दूसरे हाफ में दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले कनाडा की टीम ज्यादा आक्रामक अंदाज में खेलती हुई नजर आई। टीम ने दक्षिण अफ्रीका के गोल पर एक के बाद एक हमले किए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के मजबूत डिफेंस ने कनाडा की एक नहीं चलने दी। मैच के 75वें मिनट में कनाडा की ओर से स्टार खिलाड़ी अल्फोंजो डेविस मैदान पर आए। डेविस ने मैदान पर आते ही अपनी रफ्तार और बेहतरीन ड्रिब्लिंग के दम पर विपक्षी टीम के डिफेंस पर दबाव बना दिया। रोमांचक मुकाबलों के अंतिम मिनटों में कनाडा के कप्तान स्टीफन यूस्टाक्वियो ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाते हुए निर्णायक विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही कनाडा ने अंतिम सुलह में अपनी जगह पक्की कर ली है।
1: This is dropping nicely. Estequio! Steven Estequio! And it is elimination for Bafana Bafana. But Canada in uncharted waters are sailing into the last 16.
0: कनाडा की जीत के साथ ही इस विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर अब समाप्त हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन की कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में एक घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू ली यांग से 15-21, 21-16, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं फाइनल मुकाबले का हाल।
3: विश्व रैंकिंग में 38वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सत्र का अपना पहला फाइनल खेल रहे श्रीकांत की गलतियों का फायदा उठाकर यांग ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 7-2 की बढ़त बना ली। श्रीकांत ने वापसी करते हुए अगले 11 में से 8 पॉइंट जीते और स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया। हालांकि ब्रेक के बाद चीनी ताइपे के शटलर ने वापसी करते हुए 17-12 से बढ़त बना ली। यांग ने इसके बाद 6 गेम पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया लेकिन फिर शटल को बाहर मार दिया, जिससे यांग ने 17 मिनट में पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में श्रीकांत ने लगातार 3 पॉइंट जीतकर 7-4 की बढ़त बना ली, लेकिन चीनी ताइपे शटलर ने जल्द ही 8-8 से बराबरी कर ली। श्रीकांत ने एक शानदार बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट शॉट से 10-8 की बढ़त बनाई। उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए उसे 18-13 कर दिया और फिर 7 गेम पॉइंट हासिल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में यांग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 4-1 की बढ़त हासिल कर ली। श्रीकांत ने इस बीच गलतियां की, जबकि चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखते हुए बढ़त को 15-7 तक पहुंचा दिया। श्रीकांत के एक और वाइड रिटर्न के बाद यांग ने 12 मैच पॉइंट हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों ने 1 पॉइंट बचाया लेकिन वो अपना संघर्ष जारी नहीं रख पाए और श्रीकांत के प्रतिद्वंदी ने अपने करियर का पहला BWF विश्व टूर खिताब जीत लिया। मैच के बाद श्रीकांत ने इस मुकाबले का अनुभव साझा किया।
4: I should have maybe played a little better in the opening set. I just

0: श्रीकांत ने पिछले वर्ष मलेशिया मास्टर सुपर 500 और सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैट।
1: उधर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का अभियान आज क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-2 से मिली हार के साथ समाप्त हो गया। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी प्रो लीग के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। निर्धारित 60 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया। संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: मैच की शुरुआत इंग्लैंड ने आक्रामक अंदाज में की। पहले ही क्वार्टर में मेजबान टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशि कुमार ने शानदार बचाव करते हुए टीम को शुरुआती झटके से बचा लिया। भारत की ओर से पहले क्वार्टर में सबसे अच्छा मौका अभिषेक को मिला, लेकिन वो भी इसे गोल में तब्दील करने में नाकाम रहे। दूसरे क्वार्टर में जर्मनप्रीत सिंह ने शानदार शॉट लगाते हुए गोल करने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने बचाव करते हुए भारत को बढ़त लेने से रोक दिया। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अधिक आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन गोल करने में असफल रही। तीसरे क्वार्टर में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने एक बार फिर शानदार बचाव किया। चौथे और अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा दम लगा दिया, लेकिन कोई भी टीम गोल न कर सकी। इसके बाद मैच का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया, जहां भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल किए, जबकि भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया। संजय ने डिफेंस में अपने खेल से टीम को जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मोहित शशि कुमार और सूरज करकेरा दोनों गोलकीपरों ने अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव और टीम को जीत दिलाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैंट।

0: दोनों गोलकीपरों ने अहम मौकों पर बेहतरीन बचाव और टीम को जीत दिलाई। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैंप।
1: और अब बात वॉलीबॉल पर। पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने कल ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के साथ भारत FIVB विश्व रैंकिंग में 42वें पायदान पर पहुंच गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय खेल जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक है। सरकार ने प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और एथलीट सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इंतजाम किए हैं और उनकी योजना बनाई जा रही है वो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। कप्तान जेरोम विनित चार्ल्स की अगुवाई और सर्बिया के ड्रैगन मिहाइलोविच की कोचिंग वाली भारतीय टीम ने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पुल स्टेज में अजय रहा और कांस्य पदक प्लेऑफ में बहरीन को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार पोडियम में जगह बनाई। और अब बात एथलेटिक्स पर। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुई 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में रोहित यादव ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही रोहित ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है।
2: रोहित इस सीजन में भारत की ओर से सबसे लंबी दूर का थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वो श्रीलंका के रमेश अथरंगा पथिरगे के 92.62 मीटर के बाद दुनिया के टॉप थ्रोअर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में रोहित ने न सिर्फ अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि मीट रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन किया, जो पहले 84.35 मीटर था। रोहित यादव ने 5 थ्रो किए लेकिन पांचवा और अंतिम प्रयास सबसे शानदार रहा। उन्होंने 87.05 मीटर का थ्रो कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं लॉन्ग जंप स्पर्धा में केरल के मुरली श्री शंकर एम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8.38 मीटर की दूरी तय की। खास बात ये रही कि उनकी सभी वैध छलांगे 8 मीटर से अधिक रही। श्री शंकर ने कहा कि यह मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी था जिससे उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिली।
3: आई फील दैट इज अ मैग्निफिसेंट फीट इंडियन एथलेटिक्स के हिस्ट्री में। वी कैन काइंड ऑफ राइट इट डाउन दैट दिस 2026 ईयर 4 लॉन्ग जंपर्स हैव जंप्ड अबाउट 820 इन दिस वन सीजन। सो दैट शोज द डेप्थ ऑफ लॉन्ग जंप इन इंडिया एंड रियली हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू दैट पार्ट। आई ऑल्सो हैव अ वाइल्ड स्टैट आई वाज जस्ट काउंटिंग। This was my 60th jump above 8 meters in just competitions, like all together. We hope to continue that moment.
2: इसी प्रतियोगिता के अलग अलग स्पर्धाओं में एथलीटों में शानदार प्रदर्शन कर एशियन गेम्स का टिकट पक्का कर लिया। पुरुष वर्ग में विशाल टीके, मनु टीएस, अभिषेक पाल, बालकिशन, सचिन यादव और श्री शंकर एम शामिल रहे। वहीं महिला वर्ग में प्राची, सीमा, अंकिता और पूजा ने भी क्वालिफाई किया। रुबीना अजीज, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात एशियाई युवा टेबल टेनिस पर। बैंकॉक में आयोजित एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की अंडर 19 लड़कों की टीम ने हांगकांग को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ टीम ने कांस्य पदक और अगले वर्ष की विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जगह पक्की कर ली है। अब सेमीफाइनल में भारतीय लड़कों का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन से होगा। हालांकि भारतीय अंडर 19 लड़कियों की टीम क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से 1-3 से हारकर पदक राउंड तक नहीं पहुंच पाई। बात क्रिकेट पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। हालांकि पुरुष टीम को सीधे क्वालिफाई करने के लिए इस वर्ष के अंत तक आईसीसी T20 रैंकिंग में एशिया के सर्वोच्च स्थान हासिल करना होगा। और अब बात T20 विश्व कप पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। इस हार के साथ ही भारतीय टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर रहते 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। एलिस परी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस बीच कल बेलफास्ट में ही आयरलैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में भारत को 1 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी। जय मुंद्रा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हालांकि

0: Aberdeen, and they become the unbeaten team to hold the trophy. 50th win for Rohit Sharma as captain in T20s, and the first captain to do so.
1: Congratulations to India, led by Rohit Sharma. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024.
2: Since the time we have come to India, it's been wonderful. The reception we have got here tells you the kind of enthusiasm, the kind of waiting that people had. So this trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation. You know,
3: वहीं इस बीच विम्बल्डन टूर्नामेंट में यानिक सिनर का मुकाबला मियोमीर कैकमनोविच से जारी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे कल फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
5: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने

असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा।

0: कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2-पहिया, 3-पहिया, 4-पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या

0: प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रूपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश। आपका स्वागत है डॉ रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूले। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि

0: सेक्टर से जुड़े हुए
1: जी
0: हैं, और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है, यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
0: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं, और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है वहां उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है,
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी, और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है, और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंट होती है तो वो आम आदमी की होती है, पता नहीं लगता अभी किस टाइम

0: लोन आएगा तो पता करने जाए तो गराट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
2: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है पीएमएस, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहां गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे सीजीटीएमएससी से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया सीजीटीएमएससी का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो सीजीटीएमएससी जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
2: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
3: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेने का, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
2: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं।

0: बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
1: जी।
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहां पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम। मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं।
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस वजह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
4: जी मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस में कितने निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, किसके जो मजदूर काम करते हैं उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती है?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी

डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आप

0: आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग कि एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो हैं वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत

0: सकती थी। और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमाशंकर वाजपेयी जी।
2: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
2: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं। और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1800-1806-7-6-3 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
3: हेलो
1: जी। हाँ, अपना सवाल पूछें।

0: एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
1: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमई को मिलता है। और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
1: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था। ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
0: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को ₹15,000 का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
0: दी, तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
3: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए।

0: हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कल रात अफगानिस्तान सीमा के पास हवाई हमले किए। इनमें पक्तिका और कुनार प्रांतों के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva medals, 30 Param Vishisht Seva medals, 12 Uttam Yudh Seva medals and 56 Ati Vishisht Seva medals at the ceremony. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh along with other union ministers and senior officials of the armed forces were also present on the occasion. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi today. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved nearly 3-decade-old water-related dispute faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to Rajasthan.

0: एकताओं को प्रतिबिंबित करें। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ान सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। उड़ान संचालन अभी सीमित है और सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं। ईरान का इमाम खमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9 जून को फिर खुल गया, जिसके बाद कई एयरलाइंस चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान संचालित कर रही हैं। इसराइली रक्षा बल आईडीएफ ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के 3 कमान केंद्रों पर हमले किए हैं। उसने इसे हिजबुल्ला के युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के जवाब में उठाया गया कदम बताया। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में आईडीएफ ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह और मायफादौन क्षेत्रों में हिजबुल्ला के 3 कमान केंद्रों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने एक लॉन्चर पर भी हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला कथित तौर पर इसराइली बलों पर हमले करने के लिए कर रहा था। आईडीएफ ने कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम लेबनान में हिजबुल्ला की एक भूमिगत सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। इस 200 मीटर से अधिक लंबी और 50 मीटर गहरी सुरंग में सैकड़ों हथियार और लॉन्च शाफ्ट थे, जिसका कथित तौर पर इसराइल के नागरिकों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शुक्रवार को इसराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच झड़प की घटनाएं जारी हैं। शनिवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये समझौता संघर्ष समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है और दोनों देशों के बीच शांति समझौते का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 36 आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की यह खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। ये पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीमा पार हिंसा जैसी हताशापूर्ण हरकतों के उसके व्यर्थ प्रयास दिखाता है। भारत ने पाकिस्तानी हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले अफगान परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने आज कहा कि इस तरह की बातचीत न तो नई है और न ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। विदेश सचिव ने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इस तरह के आयोजनों में उसकी कोई आधिकारिक भागीदारी, समर्थन या संलिप्तता नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट।

0: इटली में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1,300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: इस बीच दुबई सरकार ने गर्मियों के लिए आवर फ्लेक्सिबल समर नाम की नई योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई ये पहल 29 जून से 10 सितंबर 2026 तक चलेगी और इसमें दो तरह के कार्य व्यवस्था पेश किए गए हैं, जो कर्मचारियों की जरूरतों और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहली व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक प्रतिदिन 7 घंटे और शुक्रवार को 4.5 घंटे काम करेंगे। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत सोमवार से गुरुवार तक 8 घंटे काम करने की अनुमति है। इसमें शुक्रवार को अवकाश का दिन निर्धारित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रभावी रूप से 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलासी ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और जीवन की गुणवत्ता प्रदर्शन की कीमत पर नहीं आती, बल्कि इसके विपरीत ये संस्थागत सफलता और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रमुख कारकों में से है। ये पहल संयुक्त अरब अमीरात के परिवार के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए पेशेवर, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच स्वस्थ संतुलन का समर्थन करती है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: भारत और सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सोहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल तथा कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फदली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। अमरीका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमला रोकने की सहमति के बाद संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर शुरू। पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई देशों में तापमान का नया रिकॉर्ड दर्ज। और अब से थोड़ी देर में फीफा विश्व कप में अमेरिका के ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन एहसासों की जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर आते हैं तो कभी आंखों में ठहर जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज जिसे हर दिल अपने अपने अंदाज में समझता है। किसी के लिए पहली मुस्कुराहट तो किसी के लिए आखिरी याद, किसी के लिए साथ चलने का वादा तो किसी के लिए अधूरी कहानी। आज की शाम में हम प्यार के हर रंग से होकर गुजरेंगे, चाहे वो इश्क हो, इंतजार हो, दर्द हो, जुदाई हो और फिर उस उम्मीद के साथ जिसके लिए हर दिल यूं ही ठहरता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

वो कहते हैं ना कि मोहब्बत कभी बताकर नहीं आती, वो बस धीरे धीरे किसी की आदत बन जाती है। सुबह की पहली याद, रात की आखिरी दुआ, और फिर एक दिन एहसास होता है कि हमारा दिल हमारा अपना नहीं रहा, बल्कि वो किसी और का हो गया है।

दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर साथ सच्चा हो तो मुश्किल रास्ते भी छोटे लगने लगते हैं। साथ सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम नहीं, बल्कि साथ वो भरोसा है जो कहता है, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हर पल में हूं तुम्हारे साथ। वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस सुकून देते हैं, और वही सच मानिए सबसे खूबसूरत रिश्ते होते हैं।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, हर कहानी मंजिल तक नहीं पहुंचती, कुछ रिश्ते बस सफर बनकर रह जाते हैं। जुदाई सिर्फ दूर रहने का नाम नहीं, कभी कभी एक ही शहर में रहकर या एक ही घर में रहकर लोग बहुत दूर रहते हैं दूसरे से, और कभी कभी दूसरे शहर में लोग रहकर भी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं।

तो दोस्तों, आज की इस महफिल में हमने मोहब्बत की बात की, साथ की बात की, दर्द को महसूस किया, जुदाई को समझा और उम्मीद को फिर से जी लिया। याद रखिए, जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, लेकिन जिंदगी में आने वाला हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में आपसे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में टेक्सास में ब्राजील और जापान के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। मैच में जापान ने 1 गोल की शुरुआती बढ़त ले ली, लेकिन हाफ टाइम के बाद ब्राजील ने बराबर

का गोल दागकर मैच में अभी एक एक गोल की बराबरी कर ली है। इस नॉकआउट मुकाबले में पराजित होने वाली टीम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सच कहूं तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है तो केवल तुम तक।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 22 सेकंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा जी की आवाज के साथ।

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं, और वैसे भी दिल अगर किसी के प्यार में धड़क रहा हो तो पैरों में घुंघरू खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। प्रोग्राम के साथ साथ मौसम भी खुशनुमा है, और ऐसे में फिर से एक और मीठा गीत सुन लिया जाए। अगला गीत आशा जी की आवाज में।

कुछ गानों की उम्र कभी खत्म नहीं होती है ना, जब भी वो सुनाई देते हैं दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। आशा जी ने इस गाने को जिस सादगी से और खूबसूरती के साथ गाया है वो सीधे दिल में जगह बनाता है। इस सुरीले सफर को यूं ही आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। अगला गीत

वैसे एक बात तो सच है, मोहब्बत में एक दौर ऐसा भी आता है जब आपके लिए दुनिया के सारे नज़ारे, सारी बहारें, सारी खुशियां बस एक ही इंसान बन जाता है। फिर हम जहां भी देखें, जो भी सोचें, हर तरफ बस वही एक शख्स नजर आता है। आपको पता है, प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि ये हमें किसी एक इंसान का बना देता है। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, अभी के लिए।

जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया उसमें भी मौजूद हो तुम, और अदृश्य की तरह मौजूद हो तुम हर तरफ, जैसे दूरी में बहुत दूर, जैसे जिंदगी में ना की बिंदी, इश्क का आधा क्षय और इंतजार में एक ही मात्रा की तरह। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:40 और 2 सेकेंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत रफी साहब की आवाज में।

जब तारीफ इतनी खूबसूरत और जादुई हो तो सुनने वाले का दिल ना खिले, ऐसा कैसे हो सकता है। जब दिल खिल चुका है तो फिर उसे महकना भी चाहिए। अगला गीत लता जी की आवाज में।

कितनी अजीब बात है ना, खुशबू को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई कहता है कि हमने देखी है ना आंखों की महकती खुशबू, तो समझ आता है कि इश्क पर एक नया रंग उतर आया है और जरूरत है उस रंग को महसूस करने की, समझने की और शायद अपनी जिंदगी में उतारने की भी।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि यह समिति शादी, तलाक और गोद लेने जैसे कुल 9 विषयों पर अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी का सामना पैराग्वे से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच देर रात 2 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गीत सुहाने यानी कि एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज देता है, हमें पुकारता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

अभी आप सुन रहे थे साल 1962 की सुपरहिट फिल्म असली नकली का ये सदाबहार गीत, और आवाज थी लता मंगेशकर की, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इस गीत के बोल लिखे थे यानी गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, और ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आम इंसानों की जिंदगी पर फिल्में बनाते थे, लेकिन असली नकली की कहानी बाकी सभी फिल्मों से जो उन्होंने निर्देशित की थी उससे थोड़ी अलग और दिलचस्प थी। और अब हम सुनवाते हैं अगला गीत फिर से लता जी की आवाज में।

पारस मुन्नी से सुना आपने ये गीत लता जी की आवाज में। गीतकार थे असद भोपाली और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी और ये एक संगीतमय फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने। बाबू भाई मिस्त्री वही जिनके बारे में कहा जाता है, जिन्हें सिनेमाई प्रभावों का जनक भी कहा जाता है। ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस फिल्म का संगीत काफी सराहा गया। फिल्म को तमिल में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज किया गया। और अब अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, फिल्म उजाला से।

साल 1959 की फिल्म उजाला का ये सदाबहार गीत सुन रहे थे आप, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना अपने दौर में रहा था। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर। और अब अगला गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:47 और 25 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, यानी एक ऐसा दौर जो इतिहास और स्मृतियों से हमें आवाज देता है अपने संगीत के लिए, अपने गीतों के लिए। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत जगजीत कौर की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे साल 1964 में आई फिल्म शगुन से ये गीत जगजीत कौर की आवाज में। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आर्थिक रूप से बहुत सफल फिल्म नहीं रही, लेकिन इसके गानों को दर्शकों द्वारा खासा सराहा गया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, निवेदिता और कमलजीत साहब ने। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था खयाम साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत रफी साहब की आवाज में, फिल्म मदर इंडिया से।

दिया। गीत सुहानी प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। 2 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 2:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण

0: चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान कानून के पालन के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि यह समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार संहिता तैयार करेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि कानून का शासन न तो कोई कल्याणकारी योजना है और न ही कोई आर्थिक नीति है, बल्कि यह सत्ता के इस्तेमाल को अनुशासित करता है ताकि कोई भी व्यक्ति मनमानी करने वाली सरकार का शिकार न बने। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में ये बात कही। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबू धाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच खतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि खतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। फीफा विश्व कप में ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 1-2 गोल से हरा दिया। राउंड ऑफ 32 के एक अन्य मैच में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals are awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of the armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his three-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund, NIIF, has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. The Ministry of Women and Child Development convened the third preparatory meeting of the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and the key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman Sarathi chatbot, Ayushman app, eSushrut clinic, National Health Claims Exchange and health standards to strengthen India's digital public infrastructure for health. The health minister also addressed the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi yesterday.
3: Applications launch is going to play a very important role. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, many new initiatives have taken place in the past 12 years. The National Health Authority and PM Jai Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has expanded the health facility and made it accessible and affordable throughout the length and the breadth of the country. And incorporates 62 crore people. And now India is the world's largest digital public infrastructure healthcare.
2: President Draupadi Murmu will embark on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony of the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Viryanagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapuram on Wednesday. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran has requested a meeting and that it would take place in Doha, without providing further details on the agenda or level of representation. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi today. The Met Department further predicted that heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. And that is the end of this news bulletin.

और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा, और इस तरह हर बार प्रेम करते वक्त कुछ ना कुछ छूटता रहा, और हर बार उसके दूर चले जाने पर लगता रहा, जितना भी प्रेम किया कम ही तो किया, जिसे भी दिया प्रेम कम ही तो दिया। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 5 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के सुरों को, रात के जज्बात को, रात के एहसास को अपने गीतों से, अपनी बातों से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ।

वाकई कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं हैं बल्कि दिल पर ठहर जाती हैं, दिल पर अपनी जगह बना लेती हैं। इस गीत में मोहब्बत का वो एहसास शामिल था जहां किसी की मौजूदगी ही दुनिया की सबसे बड़ी पनाह लगने लगती है। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज में।

बातों की खूबसूरत सफर के साथ साथ गीतों का खूबसूरत सफर चालू है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है ना, जब साथ कोई अपना होता है तो रास्ते लंबे नहीं लगते, बल्कि इस रास्ते ही मज़ेदार होते हैं। मंजिल उतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि जब साथ कोई अपना होता है तो हर मोड़ एक धुन बन जाता है। अगला गीत आप ही के लिए।

कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ बहुत होता है कि दिल की बातें आंखों से कही जाएं तो कुछ और बात होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर भाषा कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, ठहर जाते हैं, वहीं पर निगाहों का निशाना बहुत दूर तक जाता है। क्या कहते हैं आप, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर, कुछ कहानियां अधूरी रह गईं, कुछ को छोड़ दिया गया अधूरा जानबूझकर। दोनों ही भटकती रहती हैं, अधूरा सा खालीपन, खाली सा अधूरापन लेकर एक अंत की खोज में। और इस भटकाव में एक रोज मिल जाती हैं दो अधूरी कहानियां और बनती हैं एक और अधूरी कहानी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:40 और 29 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात के सुरों को, रात के दर्द को अपनी कुछ बातों और गीतों से समझने की कोशिश, और इसी कड़ी में सुनते हैं हम अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

ख्वाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ नींद में आते हैं, नींद में आते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो नींद खुलने के बाद भी आंखों में ठहर जाते हैं। शायद इसलिए रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो दिल की सबसे खूबसूरत मुलाकातों की गवाह भी बन जाती है। और जब रात इतनी हसीन हो तो गीतों का सिलसिला, बातों का सिलसिला थमें कैसे। आइए इसी खुशनुमा एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: मोहब्बत में धीरे धीरे बोलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि मोहब्बत को कभी भी ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। दिल की बातें हमेशा धीरे धीरे ही कही जाती हैं ताकि दुनिया नहीं सिर्फ वही शख्स उन बातों को सुन पाए जिसके लिए वो बात कही गई है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

जब प्यार हो ही गया है तो फिर उसे इजहार किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए और अपने व्यवहार से उस प्यार को साबित भी किया जाए। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे आप सुनेंगे समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे, विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने कहा कि यह समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में असम और आसपास के इलाकों में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का पारगमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक मुकाबले में पैराग्वे 1-0 से आगे है, वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the phase 2nd of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. The West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Bill 2026 and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill 2026 have been passed in the State Legislative Assembly. Under the provisions of the Public Safety Bill, a person can be detained for a maximum of 12 months under preventive arrest norm for antisocial activities, which may cause disturbance to public safety and disturb public peace and order. The Maintenance of Public Order Amendment Bill, the original Act of 1972, has been amended with the objective to impose payment of compensation on individuals committing arson, vandalism and damage to public and private properties. The governments of Haryana and Rajasthan signed an agreement for the construction and implementation of the Yamuna Water Project in the presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, the Home Minister said the agreement has resolved the nearly three-decade-old water-related problem faced by the people of Haryana and Rajasthan. Under the agreement, approximately 580 million cubic meters of water will be supplied from the Yamuna Canal to the Rajasthan through these underground pipelines from the next month to October. The Ministry of Women and Child Development convened the third preparatory meeting on the BRICS Women Track under India's BRICS chairship virtually in New Delhi yesterday. The meeting focused on advancing discussions on the priority areas and key outcomes, including the digital repository of best practices and the BRICS Women's Safe Capacity Building Guidelines. During the event, BRICS member countries shared their valuable inputs and reaffirmed their commitment to collaborative and consensus-based outcomes. President Draupadi Murmu will embark on a two-day visit to Andhra Pradesh from today. The President will attend the first convocation ceremony of the Central Tribal University of Andhra Pradesh at Viryanagaram today. Later, the President will attend the first convocation ceremony of the Central University of Andhra Pradesh at Ananthapuram on Wednesday. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will be on a two-day visit to the Northeast from today. Mr. Chauhan will hold a high-level review meeting in Guwahati in Assam. The meeting will review the impact of the floods on crops, villages and critical infrastructure in Assam and adjoining areas, assess the progress of ongoing relief operations and discuss the requirements of further assistance and intervention. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar today. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha, without providing further details of the agenda or level of representation. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over parts of Northeast India, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. And that is the end of this news bulletin.
2: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल. आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही.

रात के 3:11 और 13 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं, मगर जब लफ्जों को संगीत का साथ मिल जाए तो वो सीधे रूह में उतर जाते हैं। मोहब्बत का दौर चाहे कोई भी हो, लेकिन जो बात 60 और 70 के दशक के गानों में थी, वो बात ही कुछ अलग थी। उस समय इजहारे मोहब्बत में आंखों से सवाल होते थे और धड़कनों से जवाब मिलते थे।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मोहब्बत में जब महबूब थोड़ा दूर दूर रहता है तो दिल की बेताबी और बढ़ जाती है। फिर दिल खुलकर तो नहीं कहता, लेकिन आंखों ही आंखों में एक प्यारी सी शिकायत करता है कि देखिए हुजूर, मुझसे रह के दूर दूर।

0: तुझे प्यार से।
1: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तू नहीं और सही से।

ये गीत आपने अभी सुना। दोस्तों, जब दिल में कोई उतरता है तो ढोल नगाड़े नहीं बजते, बल्कि आंखें चुपके से इशारे करती हैं। और फिर क्या होता है, सुनिए।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कश्मीर की कली से आपने अभी ये गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम राही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म दोस्ताना से।

रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, रफ्तार में वो जादू है कि दिल ठहर जाता है, जब वो सामने से गुजरते हैं तो समा ठहर जाता है। आइए इस मीठी सी तकरार और मोहब्बत की नोकझोंक को सुरों के इस खूबसूरत सांचे में ढालते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सारंगा से अभी आपने गीत सुना। नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, नजर का नजर से मिलना ही कमाल नहीं होता, मोहब्बत में हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये तो दिलों के तार हैं जो चुपके से जुड़ जाते हैं, इस प्यार की जादूगरी के आगे फिर कोई पहरा नहीं होता। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कोहिनूर से ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म संजोग से अभी आपने गीत सुना। ए मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, ए मोहब्बत तुझसे वाकिफ करा गई, वो खूबसूरत नजर हमें इश्क सिखा गई।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अभिलाषा से अभी आपने ये गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से भी अब हमारा लौटने का वक्त आ गया है और इसी के साथ ही अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री

0: मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अनुसूचित जनजाति, कुर्मी और प्राचीन मूल समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान असम के गुवाहाटी में बाढ़ से फसलों और गांवों में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अबुधाबी से आए 25 साल के एक यात्री को 2,38,00,000 रुपए मूल्य के लगभग 7 किलो गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले आरोपी मोइन खान को एयर खुफिया इकाई ने खास जानकारी के आधार पर पकड़ा। नशीली दवा और मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मूज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में जर्मनी और पैराग्वे के बीच मुकाबला जारी है। दोनों टीमें अभी 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। वहीं ब्राजील राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। अब रविवार को न्यूजर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड में राउंड ऑफ 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. The medals were awarded to the personnel for distinguished service of an exceptional order. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity. Government's total commitment to the National Investment and Infrastructure Fund has now reached 60,000 crore rupees. This undertaking shows the centre's investment commitment for infrastructure and other nationally important sectors. The Union Cabinet last week approved an additional investment commitment of 30,000 crore rupees in the fund to accelerate infrastructure investment and catalyse institutional capital into the country. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda launched a series of digital initiatives for the health sector in New Delhi yesterday. The launch includes Arogya Setu 2.0, Ayushman

सुबह के 4:11 और 16 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया एक मेला है और यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो आपको दुआएं ही देगा। और जिसके पास आज के समय में बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं हैं, उसके पास सब कुछ है।

गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म माँ बाप से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी है तो सुख दुख तो चलेंगे ही, सुख आए तो उसमें सहज रहिए और दुख आए तो उसमें बिना घबराए उसका मुकाबला कीजिए।

किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म पाप को जलाकर राख कर दूंगा फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर कुछ फुर्सत के पल मिल जाएं तो कितना सुकून मिले ना दोस्तों। आइए सुनते हैं इस गीत के द्वारा कि सुकून कैसे मिले।

लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म मौसम से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म बूट पॉलिश से।

बिल्कुल दोस्तों, तकदीर भी तभी साथ देती है हमारी जब हम अपनी मेहनत करते हैं, और जब हमारा लक्ष्य यानी मंजिल साफ हो, निश्चित हो, तो हमारा पूरा ध्यान उसी सफर पर रहता है और फिर जिंदगी में भटकाव खत्म हो जाता है। आइए सुनते हैं नाग मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत।

मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह नदिया बिना कुछ इधर उधर देखे अपनी ही धुन में चलती रहती है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य के लिए बिना रुके हुए आगे बढ़ते जाना है।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि दिल बार बार नहीं धड़कता, पर जब ये पुराने गीत और बीते दौर की यादें सामने आती हैं तो ये दिल एक बार फिर से बच्चा बन जाता है। तो चलिए, दिमाग के सारे दरवाजे बंद कीजिए और इस संगीत के सफर में दिल दे के देखो।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दिल दे के देखो से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज़ से।

दोस्तों, जिंदगी के सफर का इसी तरह आनंद लेते रहिए और अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल का मसौदा पेश किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। श्री अधिकारी ने बताया कि ये समिति 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि श्री अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति

सुबह के 5:11:10 हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की पहली किरण हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह देती है, और इसी के साथ अगर प्रभु का स्मरण हो जाए तो सोने पे सुहागा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है सुभाष जैन ने।

बीत गई जो रात अंधेरी, लाया सवेरा नई उमंग। बीत गई जो रात अंधेरी, लाया सवेरा नई उमंग। चलो सवारे अपनी सुबह, लेकर मन में एक नई तरंग।

0: ओए रात अंधेरी
1: मोर सुहानी
2: खुशी का तराना आया अपना जमाना जी।

आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म रंगीला राजा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, मांझी जिस तरह अपनी नाव को बिना रोके आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही अपनी हिम्मत को कायम रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप भी इसी तरह ही आगे बढ़ते जाएं।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं चितालकर की आवाज में फिल्म अलबेला से।

दोस्तों, बचपन के दिन भी कितने प्यारे थे ना, जब ना किसी तरह की कोई टेंशन थी, सिर्फ अपनी ही धुन में घूमते रहना, खेलना, थोड़ा पढ़ना और फिर सो जाना। आइए महसूस करते हैं अपने बचपन को इस गीत के द्वारा, जो गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। फिल्म है मैम दीदी।